सुप्रभात, ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन है शुक्रवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह के 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58:20 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा, और हमारी आज की सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।

ये आकाशवाणी का कुछ ही क्षणों में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने

0: कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, 6:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसानी। आज इसमें हमें बीजोपचार का महत्व, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं अनीता तिर्की।

बीजों को खेत में बोने से पूर्व बीज में अनुशंसित रासायनिक को निश्चित मात्रा में मिलाना ही बीज उपचार है। बीज उपचार नहीं करने से फसल के उत्पादन में 15 से 20% तक की हानि देखी गई है। बीज उपचार मुख्यतः 3 विधियों से की जाती है। पहली है सूखी विधि। इस विधि में सीधा सीधा सूखे बीज में अनुशंसित सूखा रसायन ही मिलाना है। इसके लिए बीज यदि अधिक मात्रा में हो तो बीजोपचार ड्रम, थोड़ी मात्रा के लिए हो तो घड़ा या पॉलीथीन सीट या थैला लिया जाता है। इन पात्रों में 1/3 बीज लेकर अनुशंसित मात्रा की रसायन को धीरे धीरे डालकर अच्छी तरह से तब तक मिलाते हैं जब तक हर बीज के ऊपर एक परत ना चढ़ जाए। इस विधि में

धान, मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन इत्यादि बीजों का प्रयोग किया जाता है। यानी धान, मक्का, गेहूं, दलहन और तिलहन का यदि बीज उपचार करना है तो सूखी विधि को अपनाते हैं। दूसरी विधि है गीली विधि। इस विधि में थोड़ी मात्रा की छोटे दानों के बीज जैसे सब्जी, दलहन, तिलहन इत्यादि के

0: उसके बाद बुआई करते हैं। और तीसरा जो है वो घोल विधि है। इस विधि में कंद वाली बीज, धान या तना आदि के बीजों का उपचार किया जाता है। इसमें पानी की मात्रा के अनुसार अनुशंसित दवा को पानी में मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। बीजों को घोल में 2 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद बीजों को निकालकर 6 से 8 घंटे के लिए छाया में सुखाते हैं। इसके बाद खेतों में इसकी बुआई करते हैं। बीज का उपचार ये मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन कुछ और भी विधियां हैं जो सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे सूक्ष्म परजीवी या जीवाणु उपचार या गर्म जल द्वारा या फिर सूर्य के ताप द्वारा बीजों का उपचार किया जाता है। बीज के उपचार के लिए कई रसायन हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे कार्बेंडाजीम जो बाज़ार में बेविस्टिन, धनुष्टिन, हिस्टास्टिन, डेरोसोल के नाम से बिकती है। इसी प्रकार विटावेक्स पावर, साफ सिक्सर आदि के नाम से उपलब्ध है। इसकी मात्रा होगी 2 ग्राम 1 किलो बीज के लिए। प्रति लीटर पानी की दर से बीज का उपचार करते हैं, यानी 1 किलो यदि आपने बीज लिया, इसमें 1 लीटर पानी देना है और जो दवा की मात्रा है वो सिर्फ 2 ग्राम होगी। ट्यूबोकोनाजोल, इसकी मात्रा है 1 ग्राम प्रति किलो बीज की मात्रा। परजीवी में ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास आदि से भी बीज का उपचार आप कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर उपचारित करना है। बीज उपचार सिर्फ रोगों के निदान के लिए ही नहीं, लेकिन कीटों के उपचार के लिए भी है। फिर पोषक तत्वों के लिए भी उपचारित किया जाता है। इसमें कीटनाशक दवा जैसे क्लोरपाइरीफॉस 20 EC, जो कि बाजार में ट्राइसेल, डर्मेट, धनुषवान, रडार आदि को 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर उपचारित किया जाता है। रोगनाशी कीटनाशी पोषक तत्वों से यदि कराना है तो सबसे पहले रोगनाशी का उपचार करना है, इसके 2 घंटे बाद कीटनाशी से करना है, इससे 8 घंटे बाद सूक्ष्म पोषक तत्व से करना है और इसके 2 घंटे के बाद राइजोबियम से आप कर सकते हैं। इस तरह रोग कीट जनित बीज के निदान के साथ पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा किया जा सकता है।
1: अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी, जिसमें आज हमें अनीता त्रिकी ने जानकारी दी बीजोपचार का महत्व इस विषय पर। श्रोताओं, यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं चिंतन।

खराब आदतों को त्यागना ही विसर्जन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं, और जब हम इनका त्याग करते हैं तो यही विसर्जन है। साथ ही जहाँ खुद का ध्यान ना रहे, यानी इस आत्म तत्व को जब तक हम उस परम तत्व में विलीन कर देते हैं, तो हम स्वयं का विसर्जन करते हैं। कोई भी मनुष्य ना तो संपूर्णतः अच्छा है और ना ही कोई 100% खराब। प्रत्येक मनुष्य में अच्छी और खराब दोनों आदतों का समावेश होता है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के जीवन का ध्येय यही होना चाहिए कि वो विकारों से दूर रहे। हमें हमेशा खराब आचरण को दूर करके सदा आचरण को अपनाना चाहिए। बहुत से लोग नए साल में या किसी अन्य विशेष दिवस पर प्रण करते हैं कि वे अपनी समस्त खराब आदतें त्याग देंगे, लेकिन उनका प्रण 2-4 दिन में ही टूट जाता है। इसका कारण उनका मन है, जिसे वे साध नहीं पाते, और यही मन उन्हें विचलित कर देता है। इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति भी दृढ़ करनी चाहिए। उसे मन से दृढ़ता पूर्वक ये मानना चाहिए कि निश्चित तौर पर खराब आदतें दूर हो सकती हैं। खराब आदतें मनुष्य का चरित्र नहीं, बल्कि उसका स्वभाव है, और वो

0: से छुटकारा पा सकता है। विसर्जन का मतलब यही है कि ब्रह्मांड से हम आत्म तत्व के रूप में आए और फिर उसी में विलीन हो गए। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आत्मा क्या है और मनुष्य के मरने के बाद ये कहाँ चली जाती है। कबीरदास जी ने कहा कि जैसे घड़े में आप पानी रखिए और उसे तालाब में रख दीजिए, तो घड़े और तालाब का पानी अलग अलग होगा, लेकिन जैसे ही घड़ा फूटता है वैसे ही भीतर का पानी तालाब में मिल जाता है। इसी तरह हमारा शरीर भी एक घड़ा है, आत्मा इसके अंदर जल के समान है। जैसे ही शरीर से ये निकलती है तो वो सागर रूपी ब्रह्मांड में मिल जाती है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है ये सब प्रभु की संरचना है और इसमें हम मात्र एक खिलौने हैं। हम केवल अपनी भूमिका निभाने आए हैं और अपने हिस्से का अभिनय करके चले जाएंगे। जब आपको हमेशा इस बात का ज्ञान और आभास रहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एक धोखा है और इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है तथा सभी कुछ अस्थाई है, तभी मनुष्य स्वयं को विसर्जित कर पाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन और वाचन स्वर दिनेश कुमार लाल का था। आइए अब शामिल होते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में और सुनते हैं सबसे पहले यह देशभक्ति गीत।

इस देशभक्ति गीत के बाद आइए अब करें अपने ईश्वर को याद और करें ईश्वंदन, ताकि अपने दिन को सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक बिताने का एक भरोसा कायम कर सके अपने ईश्वर को याद करते हुए।

भक्ति का असली अर्थ भगवान से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि उनसे प्रेम करना और जुड़ाव महसूस करना है। यह हमें जीवन जीने का एक ऐसा नजरिया देता है जो मन को शांति और सकारात्मकता से भर देता है। और सही बात है, हमें ईश्वर से कुछ मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ अपने कर्म करने चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर हमें जो देंगे वो हमारे लिए उचित होगा, क्योंकि ईश्वर बहुत ही कृपालु है और बहुत ही दयामय है।

सच्ची भक्ति दिखावे के लिए नहीं होती है, बल्कि मन की शुद्धता के लिए होती है। इससे हमारा ही मन शुद्ध और साफ होता है। एक पल का भी सच्चा स्मरण अगर हम अपने ईश्वर के प्रति कर ले तो हमारे जीवन को बदल सकता है। मीरा और कबीर जैसे संतों ने बताया है कि जब आप हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगते हैं तो वही सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ही हम सभी प्राणियों का निर्माण हुआ है। तो सभी प्राणियों में अगर हम ये समझे कि ईश्वर का वास है तो हमारे सारे कर्म भी अच्छे होंगे और हमारा सोच भी अच्छा होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वर का नाम जपते रहें और उन्हें याद करते हुए ही अपने सारे कर्मों को करें।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा

कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

अभी आप श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको आज दिन भर प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से क्रमशः संस्कृत

7:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में भेंटवार्ता होगी सफेद दाग घबराए नहीं, इस विषय पर भेंटवार्ता कर होंगे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। 7:15 का समय होगा फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली का। 7:45 पर आप सुनेंगे गांधी कथा, संकलन गौरव शिखर राय की होगी और प्रस्तुति होगी गौरव पांडे की। 8:00 से पुनः हम आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से समाचार प्रभात तथा मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण किया जाएगा। 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का।

8:45 पर आप सुनेंगे संथाली लोकगीत मितोन सुरेन और उनके साथियों की आवाजों में लोकरंग के अंतर्गत। 9:00 का समय होगा फिल्मी गीत संगीत के कार्यक्रम रस रंजन का। 9:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। आज के हमारे कलाकार होंगे पंडित मनोज कुमार केडिया, तबले पर संगत देंगे सृजित चटर्जी।

सुबह के 10 बजे आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसमें आज चर्चा होगी कलम और किताब न कि मजदूरी बेहिसाब, इंसानियत का एक खतरा जिंदगी का सहारा, शायर अदीब और मुजाहिदे आजादी पंडित गोपबंधु दास की जयंती पर। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। 10:30 पर आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची। 11:30 का समय होगा आपकी फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। दिन के 12 बजे आप सुनेंगे महिलाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

12:30 पर आप पुनः सुनेंगे फिल्मी संगीत। 1 बजे हम आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, इसे आप सुन पाएंगे 1:20 पर। आज के हमारी कलाकार होंगी सिप्रा बोश। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में कुछ गजलें। श्रोताओं, ये थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से क्रमशः संस्कृत तथा हिंदी में समाचार का रिले किया जाएगा बस कुछ ही क्षणों में।

0: क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-उत्तरैकशततम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य सम्बद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिन्तां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मन्त्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक सन्धेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामि क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतत्पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानन्दः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता सफेद दाग घबराए नहीं। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
4: मित्रों, जब शरीर व्याधि मुक्त होता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसी शरीर पे कुछ दाग धब्बे निकल आते हैं तो फिर हम चिंता का शिकार हो जाते हैं, मन कुंठित होने लगता है। तो शरीर के जो धब्बे हैं, हमारा इशारा सफ़ेद दाग की ओर है। यदि हो जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई मन में भ्रांतियाँ नहीं पालें। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि सफ़ेद दाग क्यों हो जाता है, लोगों में जो गलत अवधारणा है इसे मन से निकालने की ज़रूरत है और चिंता मुक्त रहना है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए

0: आज आमंत्रित हैं रिम्स रांची के हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्किन और वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्र। सर स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: इस बीमारी के प्रति लोगों में गलत धारणा है, यदि इस बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं तो वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। ऐसा होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
1: हम जानते हैं कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण है। अंदर में कोई पीड़ा है, लीवर खराब है, किडनी खराब है, सामने दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन त्वचा पर अगर कुछ धब्बे आ जाएं, चाहे कालीमा आ जाए या सफ़ेद धब्बे आ जाएं, किसी तरह के बिखर गया, तो साफ साफ वो दिखने लगते हैं धब्बे, और इस जिसके चलते वो व्यक्ति घबरा जाता है कि लोग हमको देखकर क्या सोच रहे होंगे, चिंता का विषय यही हो जाता है। तो अब जैसे सफ़ेद दाग की एक बीमारी होती है, उसमें क्या है कि त्वचा पर बिल्कुल ही सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, पूरा सफ़ेद, कोई उसमें संशय नहीं कि ये उजला है, सफ़ेद है, बिल्कुल सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। हो सकता है वो चेहरे पर भी आ जाए, यानी दिखाई पड़ने वाले स्थलों पर आ जाए जो कि सामने से दिख रहा हो, तो इसमें व्यक्ति घबरा जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हम कैसे इस गोष्ठी में जाएँ, कैसे लोगों के बीच में जाएं?

0: तो इससे ये संदेश गया कि सफ़ेद दाग कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे घबराने की ज़रूरत है, बल्कि अपना मनोबल और हौसला कायम रखें और वो हर काम आप कर सकते हैं जो दूसरे लोग कर सकते हैं। इसीलिए 25 जून चूंकि माइकल जैक्सन के निधन का दिन है, उसी दिन उनका निधन हुआ था, तो उनकी स्मृति में एक रख दिया गया है पूरे विश्व में कि हम लोग हर वर्ष 25 जून को सफ़ेद दाग के बारे में जागरण करेंगे, लोगों को बताएंगे कि इससे घबराना नहीं है, कैसे होती है बीमारी, कैसे चिकित्सा होती है और मानसिक कुंठा में नहीं जाना है। इसीलिए 25 जून को विश्व सफ़ेद दिवस मनाया जाता है।
1: ऐसे लोग जिनको ये बीमारी हो गई है उन्हें कुंठा से ग्रसित नहीं होना है। समाज में गलत भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं, लोग कुंठा का शिकार हो जाता है जैसे आपने बताया, तो ये बीमारियाँ का इलाज किस प्रकार किया जाए, यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो क्या सावधानियाँ रखें, और दूसरी बात कि ये बीमारियाँ जब आपको हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई आपको परहेज करना है ना आपकी जान जानी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो इसको सच पूछिए तो बीमारी में हम लोग नहीं गिने तो ज़्यादा अच्छा। आप तो बताते हैं मरीजों को कि इसको बीमारी समझिए ही नहीं, कुछ नहीं, बस एक सफ़ेद हो गया है, रंग सफ़ेद हो गया ना, वहाँ जो जिस रंग का निर्माण होता है सामान्य रूप से त्वचा में जो रंग मौजूद रहता है जिसे मेलानिन कहते हैं, उसका बनना थोड़ा कम हो जाता है, उसमें उसकी जो कोशिकाएं हैं जो रंग बनाती हैं और थोड़ी क्षति कोशिकाओं को पहुंचती है अंदरूनी कारणों से। कोई फैलने वाली भी बीमारी ये नहीं है कि किसी को हो गया उसके संसर्ग में कोई आ रहा है तो एक से दूसरे में फैल रही है बीमारी, संक्रामक बीमारी भी नहीं है, छूत से फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो रंग बनना केवल वहाँ कम हो जाता है या कुछ कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त होती हैं जिसके चलते ये होता है। तो आनन फानन में कहीं इधर उधर इलाज नहीं कराना चाहिए, कोई हर्बल दवा या देहाती दवा या कुछ और भी नुकसान करने वाली दवा का लेप नहीं लगाना चाहिए, किसी नीम हकीम के पास नहीं जाना चाहिए घबरा कर, नहीं तो जो नहीं है और भी वहाँ बीमारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मन में ये धारणा कभी न लाया जाए कि हमको लोग देख रहे हैं तो देख कर क्या सोचेंगे, इसको तो भयंकर कुष्ठ रोग हो गया है, इसको तो बहिष्कार करना चाहिए, इसके पास नहीं जाना चाहिए। तो यही तो समझने की बात है कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है और ये कोई कुष्ठ रोग भी नहीं है। कुष्ठ रोग तो एक जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होता है वो कुष्ठ रोग, और वो भी कुष्ठ रोग रहता है तो उसका भी इलाज संभव है। इसलिए कुष्ठ रोग का नाम देकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सफ़ेद दाग सिर्फ है जहाँ पर रंग केवल कम हो गया है और ये इलाज से ठीक होता है, ऐसा भी नहीं है कि लाइलाज है। हाँ ये बात सही है कि कई कई रूप में यह बीमारी आ सकती है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग रूप लेती है, किसी को एक दो धब्बा होकर रह गया, किसी को बहुत सारे धब्बे हो गए, कोई चिकित्सा से जल्दी ठीक हो जाता है, कोई देर से ठीक होता है, किसी किसी का कभी कभी क्या होता है कि पूरा ठीक हो जाता है लेकिन दोबारा फिर 6 महीने बाद साल भर बाद होने लगता है। तो हर दशा में घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिकित्सक के पास जाइए, वही बताएंगे क्या उपाय करना है। और अगर एक दवा चलाने से ठीक हो गया फिर आ रही है बीमारी तो हम लोग फिर दूसरी तरह की दवाएं देते हैं उसमें, और साथ ही साथ सतर्क रहते हैं कि इसका जो साइड इफेक्ट दवाई का हो सकता है उससे भी कैसे हम मरीज को बचाएं। तो समाज में हम यही देखते हैं कि जिसको भी सफ़ेद दाग हो गया लोग उससे मिलने से कतराने लगते हैं, संपर्क बनाने से कतराने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके घर के किसी व्यक्ति से, लड़के लड़की से शादी वाला संबंध रखने में भी लोग कतराते हैं, हिचकते हैं। तो यही गड़बड़ बात है। हमें तो वैसे मरीजों को और भी सहानुभूति देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और उन्हें सही चिकित्सा के लिए सही चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, और कुछ की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि ये शादी विवाह जो सोचते हैं लोग कि ना करें, हाँ वो भी गलत बात है, ये भी भ्रांति एक है। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद एकाध व्यक्ति को उस परिवार में होने लगे, वरना किसी को भी हो सकती है ये बीमारी। और सचमुच तो बीमारी ये तो है नहीं, बस केवल धब्बा दिखता है और उसका भी इलाज संभव है।
1: कोई भी सफेद दाग क्या सफेद दाग ही है?
0: बिल्कुल सही सवाल आपका है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सफ़ेद दाग के नाम से जो बीमारी जानी जाती है ना, वो बिल्कुल ही सफ़ेद, बिल्कुल ही वाइट दिखता है, लेकिन अन्य बीमारियां भी हैं जो सफ़ेद दाग के रूप में हल्का सफ़ेदी लिए हुए वो तो उत्पन्न होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आम भाषा में जिसको आप सिहुली की बीमारी कहते हैं, वो फंगस से होता है, तो छोटे छोटे छोटे छोटे धब्बे हल्का हल्का सफ़ेद रंग के लिए हुए वो आते हैं, उनका पूर्ण इलाज संभव उनका भी है। छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे कि गाल पे सफ़ेद दाग आ जाते हैं, जिनको कि रुस्सी भी रहता है सिर में, ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, ऐसे बच्चों को गाल पर सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं।

0: जाते हैं। तो ये आम बीमारियां हैं शिशुओं की, बच्चों की, जो धीरे धीरे चली जाती हैं केवल उस पर कुछ मॉइस्चराइजर फेस पर लगाने के लिए हम लोग देते हैं। तो ये हो गया। और ऐसे तो एक कालाजार की बीमारी है जो आप देखेंगे उत्तर बिहार में कालाजार बहुत ज़्यादा होता है, एक प्रकार के मच्छर काटने से होता है। तो कालाजार की जब चिकित्सा ठीक से नहीं हो पाती है तो उसमें भी सफ़ेद दाग उत्पन्न हो जाते हैं त्वचा पर। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जिनसे ये संदेह होता है कि सफ़ेद दाग वाली ही बीमारी है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि अपने से इलाज नहीं करना है, फैसला नहीं लेना है, उचित चिकित्सक के पास ले जाएं, वो बताएंगे सफ़ेद दाग है या नहीं है और उसका भी इलाज संभव है।
1: बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये कोई बीमारी इसको हम नहीं मानते
0: बिल्कुल
1: हैं। और बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। और जो मन में गलत धारणा निकल कर सामने आती है उससे दूरियां बनाइए, खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, जिंदा दिल बनिए और जिंदगी को हंसते मुस्कुराते हुए निकालिए।
0: बस आपने सही कहा, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई जानमारू बीमारी तो है नहीं, बीमारी तो है ही नहीं। अगर है भी तो चलिए धब्बा है, जानमारू बीमारी है नहीं ना। तो इसमें आपका लीवर खराब हो रहा है, ना किडनी खराब हुआ है, ना कोई हार्ट की बीमारी है, कोई सीरियसनेस, कोई गंभीरता की बात बिल्कुल नहीं है, ना कोई परहेज करना है। और जैसा कि हमने नाम गिना है कि सफ़ेद दाग है, तो एक और मैं मॉडल का नाम गिनाऊँगा, वो कनाडा की मॉडल है विटनी ब्राउन। वो देखिए फैशन वाले काम में पूरा आगे बढ़ रही है, वो जो मॉडल बोलते हैं मॉडल काम करी और पूरा वो शख्सियत बन गई है, पूरी मशहूर हो गई है। तो बस मनोबल कायम रखें कि मुझे कुछ भी नहीं है, कोई खतरा इस बीमारी से नहीं है और आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, जीवन में किसी भी सफलता की चोटी तक पहुंच सकते हैं, यही मेरा संदेश है।
1: और दाग तो चांद पे भी है लेकिन चांद हमेशा अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्र साहब, आज आप ऐसे कार्यक्रम में आए। और मित्रों, रोज की तरह हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार
0: जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में आपने सफेद दाग घबराएं नहीं इस विषय पर जानकारी हासिल की। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम सुबह सुरीली बस कुछ ही देर में।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम सुबह सुरीली में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत संगीत, जो सुनने में आपको बहुत ही मधुर लगे, बहुत ही सुरीली लगे। तो इस कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गाना। पहला गाना हमने लिया है फिल्म 20 साल बाद से। संगीत दिया है हेमंत कुमार ने, इस गाने को आवाज भी दी है हेमंत कुमार ने और इस गाने की शब्द रचना की है शकील बदायूनी ने। आइए सुने ये प्यारा सा गाना।
4: D2 experts D3

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आइए सुनते हैं अगला गाना फिल्म पेइंग गेस्ट से। संगीत एस टी बर्मन का और धुन तैयार किया है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ।
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: इस विराम के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुरीली में। यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। किशोर कुमार की आवाज में आइए सुनते हैं तीन देवियां फिल्म से यह गाना। संगीत एस टी बर्मन का है और धुन तैयार किया है मजरूह सुल्तानपुरी।

0: अभी आपने सुना फिल्म साथी से मुकेश की आवाज में ये प्यारा सा गाना। संगीत नौशाद का था और धुन तैयार किया था मजरूह सुल्तानपुरी ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म 20 साल बाद से हेमंत की आवाज में शकील बदायूनी द्वारा लिखा गया ये गीत, संगीत भी हेमंत कुमार का।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

श्रोताओं, आइए अब सुने इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना फिल्म घर से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और शब्दों में पिरोया है गुलजार ने।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं गांधी कथा। संकलन गौरव शिखर राय का है और प्रस्तुति है गौरव पांडे की।
1: आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति है गौरव शिखर राय की, वह वाचन स्वर है अवनीश कुमार सिन्हा का।

1915 में अफ्रीका से भारत वापसी के उपरांत पुणे में श्री गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के उपरांत गांधी जी शांति निकेतन गए। उनका विचार वहां कुछ समय रहने का था, परंतु एक हफ्ते ही हुए थे कि श्री गोखले के देहावसान की सूचना मिली। शोक में डूबे गांधी जी ने पत्नी और मगनलाल गांधी को साथ ले पुणे के लिए प्रस्थान किया। इसके लिए वे वर्धमान पहुंचे।

प्रस्तुत है वर्धमान से आरंभ पूना की उनकी यात्रा का विवरण स्वयं गांधी जी के शब्दों में उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से। सवेरे मुगलसराय स्टेशन आया। मुगललाल ने तीसरे दर्जे में जगह कर ली थी। मुगलसराय में मैंने तीसरे दर्जे में गया। टिकट कलेक्टर को मैंने वस्तु स्थिति की जानकारी दी और उससे इस बात का प्रमाण पत्र मांगा कि मैं तीसरे दर्जे में चला आया हूँ। उसने देने से इनकार किया। मैंने अधिक किराया वापस प्राप्त करने के लिए रेलवे के उच्च अधिकारी को पत्र लिखा। उनकी ओर से इस आशय का उत्तर मिला, प्रमाण पत्र के बिना अतिरिक्त किराया लौटाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, पर आपको मामले में हम लौटा दे रहे हैं। वर्धमान से मुगलसराय तक का डेढ़ा किराया वापस नहीं किया जा सकता। इसके बाद के तीसरे दर्जे की यात्रा के मेरे अनुभव तो इतने हैं कि उनकी एक पुस्तक बन जाए। शारीरिक असमर्थता के कारण तीसरे दर्जे की मेरी यात्रा बंद हो गई। यह बात मुझे सदा खटकी है और आगे भी खटकती रहेगी। तीसरे दर्जे की यात्रा में अधिकारियों की मनमानी से उत्पन्न होने वाली विडंबना तो रहती ही है, पर तीसरे दर्जे में बैठने वाले कई यात्रियों का उजड़पन, उनकी स्वार्थ बुद्धि और उनका अज्ञान भी कुछ कम नहीं होता। दुख तो यह है कि अक्सर यात्री यह जानते ही नहीं कि वे अवशिष्टता कर रहे हैं अथवा गंदगी फैला रहे हैं अथवा अपना ही मतलब खोज रहे हैं। वे जो करते हैं वह उन्हें स्वाभाविक मालूम होता है। हम सभ्य और पढ़े लिखे लोगों ने उनकी कभी चिंता ही नहीं की है। थके मादे हम कल्याण जंक्शन पहुंचे, नहाने की तैयारी की। मंगल

काल और मैंने स्टेशन के नल से पानी लेकर स्नान किया। पत्नी के लिए कुछ तजवीज कर रहा था कि इतने में भारत समाज के एक भाई कॉल ने हमें पहचान लिया। वे भी पूना जा रहे थे। उन्होंने पत्नी को दूसरे दर्जे के स्नान गृह में स्नान कराने के लिए ले जाने की बात कही। इस सौजन्य को स्वीकार करने में मुझे संकोच हुआ। पत्नी को दूसरे दर्जे के स्नान घर का उपयोग करने का अधिकार नहीं था, इसे मैं जानता था। सत्य के पुजारी को यह भी शोभा नहीं देता। पत्नी का वहां जाने का कोई आग्रह नहीं था, पर पति के मुंह रूपी सुवर्ण पात्र ने सत्य को ढांक लिया। पूना पहुंचने पर गोखले की उत्तर क्रिया आदि संपन्न करके हम सब इस प्रश्न की चर्चा में लग गए कि अब सोसाइटी किस तरह चलाई जाए और मुझे उसमें सम्मिलित होना चाहिए या नहीं। मुझ पर भारी बोझ आ पड़ा। गोखले के जीते जी मेरे लिए सोसाइटी में दाखिल होने का प्रयत्न करना आवश्यक न था। मुझे केवल गोखले की आज्ञा और इच्छा के वश होना था। यह स्थिति मुझे पसंद थी। भारतवर्ष के तूफानी समुद्र में कूदते समय मुझे एक कर्णधार की आवश्यकता थी और गोखले के समान कर्णधार की छाया में मैं सुरक्षित था। अब मैं अनुभव किया कि मुझे सोसाइटी में भर्ती होने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। मुझे यह लगा कि गोखले की आत्मा यही चाहेगी। इस समय सोसाइटी के लगभग सभी सदस्य पूना में उपस्थित थे। मैंने उन्हें मनाना और मेरे विषय में जो डर था उसे दूर करना शुरू किया, किंतु मैंने देखा कि सदस्यों में मतभेद था। एक राय मुझे दाखिल करने के पक्ष में थी, दूसरी दृढ़तापूर्वक मेरे प्रवेश का विरोध करती थी। हमारी चर्चा मीठी थी और केवल सिद्धांतों का अनुसरण करने वाली थी। विरुद्ध पक्ष वालों को लगा कि अनेक विषयों में मेरे और उनके विचारों के बीच उत्तर दक्षिण का अंतर था। इससे भी अधिक उन्हें यह लगा कि जिन ध्येयों को ध्यान में रखकर गोखले ने सोसाइटी की रचना की थी, मेरे सोसाइटी में रहने से उन ध्येयों के ही खतरे में पड़ जाने की पूरी संभावना थी। स्वभावतः यह उन्हें असहाय प्रतीत हुआ। लंबी चर्चा के बाद हम एक दूसरे से अलग हुए। सदस्यों ने अंतिम निर्णय की बात दूसरी सभा तक उठा रखी। घर लौटते हुए मैं विचारों के भंवर में पड़ गया। बहुमत से दाखिल होने का प्रसंग आने पर क्या वैसा करना मेरे लिए इष्ट होगा? क्या वह गोखले के प्रति मेरी वफादारी मानी जाएगी? अगर मेरे विरुद्ध मत प्रकट हो तो क्या उस दशा में मैं सोसाइटी की स्थिति को नाजुक बनाने का निमित्त न बनूंगा? मैंने स्पष्ट देखा कि जब तक सोसाइटी के सदस्यों में मुझे दाखिल करने के बारे में मतभेद रहे, तब तक स्वयं मुझे को दाखिल होने का आग्रह छोड़ देना चाहिए और इस प्रकार विरोधी पक्ष को नाजुक स्थिति में पड़ने से बचा लेना चाहिए। उसी में सोसाइटी और गोखले के प्रति मेरी वफादारी है। ज्यों ही मेरी अंतरात्मा में इस निर्णय का उदय हुआ, त्यों ही मैंने शास्त्री को पत्र लिखा कि वे मेरे प्रवेश के विषय में सभा बुलाए ही नहीं। विरोध करने वालों को मेरा यह निश्चय बहुत पसंद आया। वे धर्म संकट से बच गए। उनके और मेरे बीच की स्नेह गांठ अधिक दृढ़ हो गई और सोसाइटी में प्रवेश पाने की अपनी अर्जी को वापस लेकर मैं सोसाइटी का सच्चा सदस्य बना। अनुभव से मैं देखता हूं कि मेरी प्रथा के अनुसार सोसाइटी का सदस्य न बनना ही उचित था और जिन सदस्यों ने मेरे प्रवेश का विरोध किया था उनका विरोध वास्तविक था। अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि उनके और मेरे सिद्धांतों के बीच भेद था, किंतु मतभेद को जान चुकने का भी हमारे बीच आत्मा का अंतर कभी नहीं पड़ा।
खटाई कभी पैदा न हुई। मतभेद के रहते भी हम परस्पर बंधु और मित्र रहे। सोसाइटी का स्थान मेरे लिए यात्रा का धाम रहा। लौकिक दृष्टि से मैं भले ही उसका सदस्य नहीं बना, पर आध्यात्मिक दृष्टि से मैं उसका सदस्य रहा ही हूं। लौकिक संबंध की अपेक्षा आध्यात्मिक संबंध अधिक मूल्यवान है। आध्यात्मिक संबंध से रहित लौकिक संबंध प्राणहीन देह के समान है। मुझे डॉक्टर प्राण जीवनदास मेहता से मिलने रंगून जाना था। वहां जाते हुए श्री भूपेंद्र नाथ बसु का निमंत्रण पाकर मैं कलकत्ते में उनके घर ठहरा था। यहां बंगाली शिष्टाचार की प्रकाष्ठा हो गई थी। उन दिनों में फलाहार ही करता था। मेरे साथ मेरा लड़का रामदास था। कलकत्ते में जितने प्रकार का सूखा और हरा मेवा मिला उतना सब इकट्ठा किया गया था। स्त्रियों ने रात भर जाकर पिस्तो वगैरह को भिगोकर उनके छिलके उतारे थे। ताजे फल भी जितनी सुधरता से सजाए जा सकते थे सजाए गए थे। मेरे साथियों के लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार किए गए थे। मैं इस प्रेम और शिष्टाचार को तो समझा, लेकिन एक दो मेहमानों के लिए समूचे परिवार का सारे दिन व्यस्त रहना मुझे असहाय प्रतीत हुआ। परंतु इस मुसीबत से बचने का मेरे पास कोई इलाज न था। रंगून जाते समय स्टीमर में मैं डेक का यात्री था। यदि श्री बसु के यहाँ प्रेम की मुसीबत थी तो स्टीमर में अप्रेम की मुसीबत थी। डेक के यात्री के कष्टों का मैंने बुरी तरह अनुभव किया। नहाने की जगह तो इतनी गंदी थी कि वहां खड़ा रहना भी कठिन था। पखाने नरक के कुंड बने हुए थे। मल मूत्र आदि से चलकर या उन्हें लांग कर पखानों में जाना होता था। मेरे लिए असुविधाएं भयंकर थीं। मैं जहाज के अधिकारियों के पास पहुंचा, पर सुनता कौन है। यात्रियों ने अपनी गंदगी से डेक को गंदा कर डाला था। वे जहां बैठे होते वहीं थूक देते, वहीं सूरती के पीक की पिचकारियां चलाते और वहीं खाने पीने के बाद बचा हुआ कचरा डालते थे। बातचीत से होने वाले कोलाहल की कोई सीमा न थी। सब कोई अपने लिए अधिक से अधिक जगह घेरने की कोशिश करते थे। कोई किसी की सुविधा का विचार न करता था। सामान उससे अधिक जगह घेर लेता था। ये दो दिन बड़ी घबराहट के बीते। रंगून पहुंचने पर मैंने एजेंट को सारा हाल लिख भेजा। लौटते समय भी मैं डेक पर ही आया, पर इस पत्र और डॉक्टर मेहता के प्रबंध के फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं से आया। मेरे फलाहार की झंझट तो यहाँ भी अपेक्षाकृत अधिक ही रहती थी। डॉक्टर मेहता के साथ ऐसा संबंध था कि उनके घर को मैं अपने ही घर समझ सकता था। इससे मैंने पदार्थों पर तो अंकुश रख लिया था, लेकिन उनकी कोई मर्यादा निश्चित नहीं की थी। इस कारण तरह तरह का जो मेवा आता उसका मैंने विरोध न करता था। नाना प्रकार की वस्तुएं आंखों और जीभ को रुचिकर लगती थी। खाने का कोई निश्चित समय नहीं था। मैं स्वयं जल्दी खा लेना पसंद करता था, इसलिए बहुत देर तो नहीं होती थी। फिर भी रात के 8-9 तो सहज ही बच जाते थे।

श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से प्रतिज्ञा करवाई थी कि उन्हें एक वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। इस प्रकार वे देश से पूर्ण परिचित हो सकेंगे। तब तक किसी भी सार्वजनिक प्रश्न पर विचार बनाने या प्रकट करने से बचना था। गांधी जी ने उनके निर्देशों का पालन किया।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा, संकलन था गौरव शिखर राय का और प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से क्रमशः समाचार प्रभात तथा मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का, जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
5: We signed this year a free trade agreement with Europe.
6: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
7: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह

0: इसके रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पांस किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ, हमारे रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के हाथों बोकारो के सीआरपीएफ जवान को शौर्य चक्र मिलने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल। सम्मान पाकर भावुक और उत्साहित हुए जांबाज सद्दाम हुसैन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर कार्यक्रम के लिए एईआरओ के रिक्त पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश। रांची के सभी बूथों पर कल से 2 दिवसीय मैपिंग शिविर। राज्य के 8 नए जिलों में जल्द शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र। यूआईडीएआई के नागरिकों ने नागरिकों से सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क करने को कहा। मौसम विभाग ने आज रांची, बोकारो और जमशेदपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की जारी की चेतावनी। ऑरेंज अलर्ट जारी। और हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट सीरीज के लिए झारखंड के 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन। निशांत, नीरज, शौकत और वागीश दिखाएंगे दम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोकारो के सीआरपीएफ जवान सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 2 आतंकवादियों को मात्र 25 मीटर की दूरी से सटीक प्रहार कर उन्होंने ढेर कर दिया था। राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलने से सद्दाम हुसैन खासा उत्साहित।
1: सीओ साहब से सूचना मिली कि फॉरेन कुछ टेररिस्ट हमारे एरिया के अंदर घुस चुके थे और उसी नुकसान से बचने के लिए जैसे हमें जानकारी मिली हम अपने टीम के साथ वहां गए, ऑपरेशन को सक्सेस किए और 25 मीटर की दूरी में ही आतंकवादी को मार के गिराए। आतंकवादी जो था वो फॉरेन टेररिस्ट था, वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के फिराक से अंदर घुसे थे। 2 दिन की लड़ाई चली और उसको मार गिराया गया।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी एईआरओ के रिक्त 147 पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का निर्देश दिया है। रांची में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत 13 और 14 जून को विशेष मैपिंग शिविर लगेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर यह शिविर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक लगेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों को शिविरों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। राज्य में आधार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 8 नए आधार सेवा केंद्र जल्द शुरू होंगे। ये केंद्र हजारीबाग, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में खुलेंगे। यूआईडीएआई ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों का उपयोग करने की अपील की है। किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क किया जा सकता है। धनबाद गया रेलखंड पर रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस रूट पर स्वचालित ट्रेन, सुरक्षा प्रणाली यानी कवच तक

0: तकनीक से लैस ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। रेलवे द्वारा किया गया यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। धनबाद रेल मंडल डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बताया कि इस तकनीक के लागू होने से एक ही पटरी पर दो ट्रेनों के आने की स्थिति में ब्रेक अपने आप लग जाएंगे।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेनें अब हम लोग चला रहे हैं, बहुत ही रफ्तार बढ़ती जा रही है, ट्रेनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो कम होती जा रही है। किसी भी तरह से अगर मानवीय चूक होती है तो ह्यूमन एरर को गार्ड करने के लिए कवच की प्रणाली है, और ये एक अच्छी प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो कि सबसे बड़ी चीज है कि भारतवर्ष में डेवलप हुई है। आरएसओ और टीम ने इसका डिजाइन बनाया है।
0: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने चाईबासा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले में खाद्यान्न के उठाव, परिवहन और भंडारण की स्थिति का जायजा लिया। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने वाले साइबर अपराधियों के बढ़ते खतरे पर कड़ी चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए के खनिज बकाए के त्वरित भुगतान की मांग की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने रांची मेट्रो ट्रेन, पारा शिक्षकों के मानदेय और नक्सल विरोधी अभियानों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का मुद्दा भी उठाया। इस पर झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के हक की आवाज बुलंद की है, केंद्र बकाया तुरंत जारी करे।
3: तो नीति आयोग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे राज्य के जो बकाया है वो बकाया दे दिया जाए, क्योंकि राज्य की जो राजकोषीय जो जरूरतें हैं उसको पूरी करनी है। तो एक मेट्रो रेल यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए होना चाहिए।
0: पलटवार में भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक छोड़ केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और आंतरिक सुरक्षा सुधारने पर ध्यान दे।
4: आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि बोकारो में, चाईबासा में, लातेहार में, झारखंड के अन्य जिलों में जो DMFT स्कैम हुआ है उसकी जांच कहां तक पहुंची है। 1,36,000 करोड़ के मामले में वापस से आपने झारखंड की जनता को क्यों गुमराह किया? लैंड एक्विजिशन को आप क्यों सिंप्लीफाई करना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा वापस से RIMS-2 को या जगह जगह दोहराने की है?
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड के कई जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषकर रांची, बोकारो और जमशेदपुर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। हरियाणा के यमुनानगर में 13 से 15 जून तक आयोजित होने वाली T20 केसरी दिव्यांग क्रिकेट राष्ट्रीय सीरीज में झारखंड के 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इंडिया ए टीम में निशांत कुमार उपाध्याय, नीरज कुमार और शौकत अली को जगह मिली है, जबकि वागीश त्रिपाठी इंडिया बी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सभी खिलाड़ी रांची से रवाना हो चुके हैं। जेएससीए स्टेडियम में खेली जा रही झारखंड टी20 लीग में आज दो मुकाबले होंगे। पहले में छोटा नागपुर रॉयल्स का सामना कोयलांचल सुपर किंग्स से होगा, जबकि दूसरे मैच में धनबाद डायमंड्स और जमशेदपुर स्टीलर्स की टीमें आमने सामने होंगी। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उठाए गए मुद्दों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड को सिर्फ खनिज राज्य ही नहीं नॉलेज हब बनाना है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जेट प्रावधान में होगा बदलाव, 25,000 शिक्षकों को राहत। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सर्वोच्च अदालत ने गृहणियों के कार्य की कीमत आंकी। दैनिक जागरण लिखता है, सीएम 29 जून को सहायक आचार्यों को देंगे नियुक्ति पत्र। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के हाथों बोकारो के सीआरपीएफ जवान को शौर्य चक्र मिलने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल। सम्मान पाकर भावुक और उत्साहित हुए जांबाज सद्दाम हुसैन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर कार्यक्रम के लिए एईआरओ के रिक्त पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश। रांची के सभी बूथों पर कल से दो दिवसीय मैपिंग शिविर। राज्य के 8 नए जिलों में जल्द शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र। यूआईडीएआई ने नागरिकों से सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क करने को कहा। मौसम विभाग ने आज रांची, बोकारो और जमशेदपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की जारी की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। और हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग टी20 क्रिकेट सीरीज के लिए झारखंड के 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन, निशांत, नीरज, शौकत और वागीश दिखाएंगे दम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। और आज के इस सफर में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त रजनी। श्रोताओं, आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज हम सुनेंगे संथाली लोकगीत मितोन सुरेन और उनके साथियों की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे मिथालिस मिथुन सोरेन और उनके साथियों की आवाज में संथाली लोकगीत कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत, और यह कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9 बज चुके हैं और इस वक्त आप सुनते हैं फिल्मी गीत संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। इस कार्यक्रम का आप सुनेंगे कुछ ही क्षणों में, पहले सुनिए यह संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम रस रंजन में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज के साथ। फिल्म है पड़ोसन, संगीत दिया है आर.टी. बर्मन ने और धुन तैयार किया है राजेंद्र कृष्ण ने।

अभी आपने सुना फिल्म आवाज से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों को। इस गाने को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत का साथ निभाया था राहुल देव बर्मन ने। अगला गाना आइए सुनते हैं फिल्म उपासना से। मुकेश की आवाज है, इंदिवर का लिखा हुआ ये गाना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे, सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: विराम के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम रसरंजन में। यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में, और फिल्म है मधुमति।

अभी आपने सुना फिल्म अनाड़ी से साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में ये गाना। संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने और धुन तैयार किया था समीर ने। आइए इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं मेरे जीवन साथी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना, कार्यक्रम रसरंजन के अंतर्गत। यही है इस कार्यक्रम का अंतिम गाना और इस कार्यक्रम से दीजिए मुझे विदा। आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम रसरंजन।

इसी गाने के साथ ये कार्यक्रम रसरंजन यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज के हमारे कलाकार हैं पंडित मनोज कुमार केडिया, तबले पर संगत दे रहे हैं श्रीजित चटर्जी। आज इनसे हम सुनेंगे सरोद पर राग बिलास खानी तोड़ी। आलाप और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत हैं, मध्य लय की गत छप ताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, सरोद पर राग बिलास खानी तोड़ी, आला पर जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत थी, मध्य लय की गत छपताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में निबद्ध थी। आज के हमारे कलाकार थे पंडित मनोज कुमार कीड़िया और तबले पर संगत दे रहे थे सृजित चटर्जी। और इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं पर सम्पन्न होता है।

मीरी में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट

0: सिर्फ बच्चे का ही नहीं बल्कि देश का भी। तो इसकी तरफ हमें जाना होगा और अपने आसपास के लोगों से बात करनी होगी। चाइल्ड लेबर है, इसको कम करना होगा।
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और सरकार के साथ साथ हम आम नागरिकों का भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने आसपास अगर किसी बच्चे को इस तरह काम करते हुए देख रहे हैं तो उस पर जो लोग इनसे काम करवाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
0: बिल्कुल, होता यूँ है राजदा कि बच्चे कम मजदूरी में अवेलेबल हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इन लोगों को लगता है कि चलो कम पैसे में मिल जा रहे हैं, हमारा काम हो जा रहा है। ये नहीं देखते हैं कि इसके मुस्तकबिल के साथ हम खिलवाड़ कर रहे, मजाक कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ऐसे लोगों को भी सोचने की जरूरत है जो छोटे छोटे मासूम बच्चों से काम करवाते हैं। उन्हें भी ये समझना बेहद जरूरी है कि इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो चाइल्ड लेबर में नहीं बल्कि स्कूलों में है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा और हम तरक्की कर पाएंगे।
0: सही कहा।
1: और इसी के साथ ही शगुफ्ता, अब बात करते हैं हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है और हमारे आज के दूसरे मौजू के लाइन सीधे दिल पर असर करती है। इंसानियत का एक कतरा जिंदगी का सहारा।
0: सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात कही है आपने राजदा। खून का कोई मजहब नहीं होता, कोई रंग भेद नहीं होता। जब किसी अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूलते किसी इंसान को खून की जरूरत होती है, तब किसी अजनबी का किया हुआ रक्तदान उसके लिए किसी फरिश्ते के तोहफे जैसा होता है।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, रक्तदान को महादान यूं ही नहीं कहा गया है। हमारे समाज में आज भी रक्तदान को लेकर कुछ गलत फहमियाँ हैं कि इससे कमजोरी आती है, जबकि डॉक्टर्स का मानना है कि सेहतमंद इंसान अगर रेगुलर तौर पर रक्तदान करे तो उनकी सेहत अच्छी बनी रहती है और वो कई जिंदगियां बचा सकती है।
0: तो दोस्तों, इस 14 जून को आप भी ये संकल्प लें, ये अहद करें कि रक्तदान करेंगे और किसी डूबती हुई जिंदगी का सहारा बनेंगे।
1: और आजकल तो कई जरिया है शगुफ्ता लोगों को अवेयर करने का। जरा सोचिए, हमारी रगों में बह रहा खून कल किसी की रगों में दौड़कर उसे एक नई जिंदगी दे तो कैसा रहेगा। दुर्घटना में घायल इंसान, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे या किसी गंभीर बीमारी से लड़ते इंसान के लिए हमारा एक यूनिट खून अमृत जैसा है। रक्तदान करने से हमारा शरीर कमजोर नहीं होता बल्कि और भी हेल्दी हो जाता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही आगे आए, रक्तदान करें और मानवता का फर्ज निभाएं।
0: हाँ राजदा, और एक यूनिट ब्लड डोनेट करने से आप एक नहीं बल्कि तीन तीन जिंदगियां बचा सकते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स के शक्ल में। हर हेल्दी पर्सन जिसकी उम्र 18 से 65 साल की है हर 3 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है और कई जिंदगियां बचा सकता है।
1: और रक्तदान के बहुत सारे फायदे भी होते हैं शगुफ्ता, नया खून बनता है।
0: क्या बात है।
1: रक्तदान करने से शरीर में नए ब्लड सेल्स का निर्माण तेजी से होता है, दिल की सेहत या शरीर में आयरन की मात्रा को संतुलित रखता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। फ्री हेल्थ चेकअप, रक्तदान से पहले हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और कई जरूरी जांचें हैं जो मुफ्त में की जाती है। तो रक्तदान से बिल्कुल भी ना घबराएं, एक हेल्दी इंसान रक्तदान कर सकता है। थोड़ी देर के लिए थोड़ी सुस्ती जरूर होती है लेकिन आप वापस बस थोड़ी देर में फिट हो जाएंगे और फिर रोजाना जैसे अपना काम करते हैं वैसे ही करने लगेंगे।
0: इतने सारे फायदे हैं रक्तदान के, तो क्यों ना हम रक्तदान की तरफ खुद भी जाएं और लोगों को भी जागरूक करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो कहूंगी कि अगर हमारी खून का एक कतरा अगर किसी की जिंदगी बचा सकता है तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है।
0: राजदा, हमारे पास और भी अच्छे टॉपिक्स हैं लेकिन उससे पहले हम सामीन को सुनवाते हैं मकाला, शायरी झारखंड में कुदरत और तहजीब की अक्कासी। मकाला निगार है सदफ कायनात।
2: जंगलों की छाव, नदियों का नगमा, पहाड़ों की शान। जंगलों की छाव, नदियों का नगमा, पहाड़ों की शान। कुदरत ने जैसे सजा रखा हो अपना गुलिस्तान। झारखंड उर्दू जबान व अदब के अहम मराकज में शुमार किया जाता है। अगरचे झारखंड बतौर अलहदा रियासत 2000 को वजूद में आया, अलबत्ता झारखंड में उर्दू अदब की तारीख काफी कदीम है। यहाँ उर्दू शायरी की बुनियाद बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। यहाँ के मुख्तलिफ इलाके खुसूसन रांची, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में उर्दू शायरी को तवानाई और फलने फूलने का मौका मिला। बिलाशुबा झारखंड अपने आप में दिलकशी और मकनातीसी कुवत समोए हुए है जिसकी खूबसूरती, सकाफत, रक्स और मौसीकी और त्योहार को उर्दू शोरा ने अपने कलाम का मौजू बनाया है। यहाँ के अहम शोरा की फहरिस्त में सिद्दीक मुजीबी, प्रकाश फिक्री, वहाब दानिश, अख्तर सईदी, परवेज रहमानी, अनवर इरज वगैरह शामिल हैं जिन्होंने

0: बहार असफर जमील झारखंड के नुमाइंदा मशहूर शोरा में शुमार किए जाते हैं। इनके कलाम में हमें दिल बर्दाश्तगी, तन्हाई, महरूमी और कर्ब जा बजा नजर आता है। इसके अलावा उन्होंने रुमानी और फितरी शायरी भी की, जिसकी बेहतरीन मिसाल इनकी एक नज्म झारखंड है। हर आदमी को तुझसे मोहब्बत है झारखंड, हर आदमी को तुझसे मोहब्बत है झारखंड, तू तो खुदा की दी हुई जन्नत है झारखंड। जो तेरे पास है वो खजाना कहीं नहीं, जो तेरे पास है वो खजाना कहीं नहीं, सारे जहां में तेरी इज्जत है झारखंड। झुटला सका ना तुझको कोई रहनुमा कभी, तेरा वजूद एक हकीकत है झारखंड। जो तेरे पास आया वो खाली नहीं गया, जो तेरे पास आया वो खाली नहीं गया, तू तो कोई फरिश्ता रहमत है झारखंड। अलमुख्तसर, झारखंड की उर्दू शायरी में यहाँ की सकाफत, फितरत, कबायली जिंदगी और हम आहंगी की खूबसूरत अक्कासी मिलती है। उर्दू शोरा ने जंगलों, पहाड़ों, आबशारों, कबायली जिंदगी को अपने कलाम का मौजू बनाकर झारखंड की मुनफरिद शनाख्त को अदबी शक्ल फ्राहम की है। मैं चंद अशार के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। शायर नामालूम है, सरहुल की मस्ती सोहराई की खुशियाँ हर सू, सरहुल की मस्ती सोहराई की खुशियाँ हर सू, इस धरती की तहजीब है मोहब्बत का जुनू, मांडर की लय, करम की गीत और सरहुल की बहार, यही तो है मेरी धरती, यही तो है झारखंड का प्यार। शुक्रिया।
1: तो दोस्तों, अभी अभी आप सुन रहे थे मकाला शायरी है झारखंड में कुदरत और तहजीब की अक्कासी। मकाला निगार थी सदफ कायनान। और इसी के साथ ही शगुफ्ता, अब बात करते हैं एक ऐसे शख्सियत की जिनका नाम है गोप बंधु दास, जो कि एक शायर, अदीब और मुजाहिदे आजादी थे। सामईन, इतिहास के झरोखे से अगर हम उन अजीम शख्सियत को याद ना करें जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, तो हमारा अपना ये सफर अधूरा रहेगा। जून का ये महीना एक ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार से जुड़ा है।
2: गोप बंधु दास जी सिर्फ एक राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, वे एक बेमिसाल शायर, अदीब और मुजाहिदे आजादी थे। उड़ीसा के लोक जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका काफी अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने अपने लेखनी को आजादी का हथियार बनाया। गरीबों और बाढ़ पीड़ितों के खिदमत में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर दी। उनकी एक मशहूर कविता की पंक्ति आज भी रोंगटे खड़े कर देती है, जिसका भाव है, मेरा यह शरीर इस देश की मिट्टी में मिल जाए और देशवासी मेरे शरीर पर चलकर आजादी की राह पर आगे बढ़ेंगे। ऐसे महान और अदीब देशभक्त को आकाशवाणी के परिवार और हम तमाम सामेईन की ओर से शत शत नमन।
1: बहुत अच्छा लगता है शगुफ्ता, जब हम ऐसे किसी शख्सियत के बारे में बातचीत करते हैं जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, हम इंस्पायर होते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का खासियत भी यही होता है शगुफ्ता, कि हम हर बार ऐसे शख्सियत को याद करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जहनी सुकून और योग की।
2: राजदा, सही कहा आपने, जहनी सुकून और योग। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पास सबके लिए वक्त है, ऑफिस के लिए है, सोशल मीडिया के लिए है, दोस्तों के लिए है, लेकिन अगर किसी के लिए वक्त नहीं है तो वो है खुद के लिए। सुबह उठते ही सिर दर्द, दिन भर की थकान और रात को तनाव, क्या आपकी जिंदगी, राजदा क्या आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो गई है? अगर हाँ तो क्यों?
1: बिल्कुल शगुफ्ता, आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत के लिए बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं। और अक्सर लोग यही सोचते हैं कि योग का मतलब सिर्फ शरीर को तोड़ना, मरोड़ना या कठिन आसन करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग शब्द संस्कृत से यूज से बना है, जिसका सीधा मतलब है जुड़ना, अपने शरीर का अपने मन और आत्मा से जुड़ जाना ही योग है। जब हम सुबह खुली हवा में बैठ कर गहरी सांस लेते हैं तो वो प्राणायाम है। जब आप अपने भटकते हुए मन को एक जगह टिकाते हैं तो वो ध्यान है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये विज्ञान मुफ्त में दिया है ताकि हम बीमार ना पड़े।
2: तो सामीन, एक्सरसाइज यानी कि योग किसी एक उम्र के लिए नहीं है, चाहे स्कूल जाता बच्चा हो, दफ्तर जाता युवा हो या घर के बुजुर्ग, योग तो सबके लिए है। आज की तारीख में जहां डायबिटिक, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां घर घर में पैर पसार रही हैं, वहां योग ही एक ढाल की तरह काम करता है। तो अपने रोजमर्रा में सिर्फ 15 से 20 मिनट ही अगर एक्सरसाइज करें तो हमारे तनाव छूमंतर हो जाएंगे और हमारे जिस्म में भी इम्यूनिटी यानी के रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात राजदा, कि आपके चेहरे पर भी चमक आएगी और कोई महंगी क्रीम भी नहीं लगानी पड़ेगी।

0: बिल्कुल, ये बात तो सही है शगुफ्ता। जब हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है ना, तो हमारे चेहरे पर चमक खुद ब खुद आ जाती है। तो फिर इंतजार किस बात का दोस्तों, आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही क्यों, चलिए आज से और अभी से ये संकल्प लें कि हम हर दिन योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, खुद भी हेल्दी रहेंगे और अपने परिवार को भी हेल्दी रखेंगे। योग को अपनाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। और वैसे भी कहते हैं ना कि योग करें, निरोग रहें, जीवन को खुशहाल करें, आज से ही अपने सेहत का नया आगाज करें।
1: क्या बात है। और इसी आगाज के साथ मैं ये कहूंगी कि कुछ अगर नगमे का भी आप लुत्फ दे दें तो मजा आ जाएगा।
0: बिल्कुल, ये तो हमारे प्रोग्राम की खासियत है कि हम म्यूजिक के बिना तो रह नहीं सकते, और हमें पता है कि हमारे जो दोस्त हमें सुन रहे हैं उन्हें भी म्यूजिक का इंतजार होता है। तो चलिए शगुफ्ता, देर नहीं करते हैं और अपने दोस्तों को सुनाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम जोहार रांची के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: दोस्तों कहते हैं मुस्कान को तभी रोकिए जब वो किसी को चोट पहुंचा रही हो, वरना खिलखिलाकर हंसते रहिए। और तो ऐसी ही मुस्कुराहट के साथ जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर विनीता है आपके साथ। और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ है
1: रजनी।
0: आप सबों को हमारा
1: जोहार,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो रजनी कैसी हैं आप?
1: मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छी मानती भी हूँ।
0: देखिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप जो खुद को महसूस करते हैं वही लोगों में भी बांटेंगे ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा करेंगे तो अच्छा अच्छा ही होगा हमारे साथ, दूसरों के साथ। और जैसा कि मैंने कहा कि मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना? तो चलिए इसी मुस्कुराहट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, इस खूबसूरत सी गीत के साथ।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे, सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: एक बार फिर स्वागत है आपका जोहार रांची कार्यक्रम में और आप हैं विनीता और रजनी के साथ। तो अब वक्त है सुविचार का। तो जिस प्रकार मिट्टी का गीलापन पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन हमारे रिश्तों को पकड़ कर रखता है। क्यों, आप मानती है ना?
2: बिल्कुल, वो कहते भी है ना कि वाणी से ही खुशी, वाणी ही गम का कारण, वाणी ही पीड़ा और वाणी ही मरहम। तो इसलिए अपने शब्दों को, व्यवहार को हमेशा सरल रखें, क्योंकि रिश्ता दिल से बनने से पहले आपके बोली और आपके व्यवहार से बनता है। तो बस शब्दों में, बातों में, व्यवहार में हमेशा मीठापन बनाकर रखें और सबके ही चहेते बन के रहें।
1: बिल्कुल।

0: तो प्यारी प्यारी बातों के बाद अब कुछ बातें मौसम की कर लेते
1: हाँ बिल्कुल,
0: हैं,
1: आजकल मौसम तो एकदम टॉपिक बना हुआ है हमारा, आए दिन कुछ न कुछ उसमें चेंजेस देखने को
0: हंगामेदार
1: मिल, हाँ हंगामेदार।
0: हंगामेदार तो मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने 2 से 3 दिनों में मानसून आ सकता है ऐसी बातें कही हैं, और जैसा कि हमने कल देखा
1: लग तो रहा है कि आने का अनुमान क्या आ ही गया।
0: राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कल मौसम का मिजाज काफी तेजी से बदला।
1: बहुत
0: सुबह
1: बहुत
0: इतनी कड़ी धूप थी लेकिन 2 बजते बजते मूसलाधार बारिश से पूरा शहर डूब गया है ना, और आसमान में काले बादल छा गए और 2-3 घंटे तक गरज के साथ तेज हवा के साथ बारिश हुई।
1: काफी जोरदार बिजली भी कड़क रही
0: काफी
1: थी।
0: बिल्कुल कई पेड़ उखड़ गए है ना। तो
1: हाँ
0: इस बदलते मौसम में आप कुछ कहना चाहेंगे रजनी हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ कहना तो यही चाहूंगी कि अभी जैसे मानसून आ ही गया है, बिल्कुल पहुंच ही गया है, और ऐसे में हम लोग देखते हैं कि बिजली काफ़ी गरजने लगती है, पेड़ वगैरह भी गिरने लगते हैं, काफ़ी नुकसान भी होता है। तो अगर आप इस वक्त कहीं बाहर जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें अपना, एक तो छाता वगैरह लेकर चले, कोशिश करें कि बच्चों को अगर नहीं ही लेके जाएं कहीं तो बाहर में वो ठीक रहेगा, और बारिश अगर आने वाली है आ रही है तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँच जाएँ या अपने काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की भी संभावना रहती है।
0: और जहाँ तक मौसम विभाग का अनुमान है कि वज्रपात
1: हाँ
0: होने की
1: बिल्कुल,
0: संभावना भी है, तो ऐसे मौसम में हो सके तो अगर बारिश में आप घिर जाएं तो पेड़ के नीचे ना सहारा
1: ना
0: रहे,
1: रहे मतलब सरकार जो गाइडलाइंस जारी करती
0: वो
1: है ना
0: उसका
1: उसका
0: ध्यान दें।
1: ध्यान रखें आप, तो
0: हाँ
1: आप बच
0: बिल्कुल
1: सकते हैं।
0: बिल्कुल, और
1: और
0: ऐसे भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: आप समझ सकते हैं कि इस मौसम में आपको खास ख्याल रखना है। अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना
1: बाहर ना
0: निकले।
1: निकले।
0: देखिए आधे घंटे का समय तो मुझे लगता है कि मिलता है, मौसम जिस तरह से
1: हाँ
0: बदलता
1: हाँ
0: है, तो
1: हाँ
0: आप
1: बिल्कुल
0: अगर घर के
1: बिल्कुल,
0: आसपास है तो घर लौट
1: घर
0: जाएं,
1: लौट जाएं,
0: बच्चे और बुजुर्गों का खास
1: खास
0: ख्याल
1: ख्याल रखें।
0: रखें।
1: और आज अगर हम लोग पूर्वानुमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 35.5 सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 21.5 सेल्सियस रहने की
0: यानी
1: संभावना
0: कि
1: है।
0: तापमान में गिरावट तो थोड़ी सी आई है लेकिन फिर भी गर्मी तो है ही, है
1: गर्मी
0: ना।
1: तो है ही। हाँ
0: तो इस मौसम में ख्याल रखें अपना।

और आइए एक बार फिर सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में चलते चलते फिल्म का गीत। संगीत जतिन ललित का है और इस गीत की फरमाइश आई है राजा बाजार बिहिया से सुरेश केशरी, पूनम केशरी और प्रतीक केशरी की।

और आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गीत, जिस गीत को सुनने की फरमाइश आई है गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, अनुप्रिया भगत की।

और कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं जब वी मेड फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहे है बड़बुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेतान, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनिमिका और उत्कर्ष नेताम ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं और ये वक्त है बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का, जिसे लेकर आज आपके साथ है राखी और शिल्पी।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। इस खूबसूरत से सफर में आपकी हम सफर हैं, हम दो सखियां। मैं हूं राखी और मेरे साथ हैं आपकी प्यारी सी हसमुख सी सखी, एक मीठी सी मुस्कान लिए आपसे मुखातिब होने के लिए तत्पर।
1: बहनों आज मैं आपके साथ हूं शिल्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में।

0: उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। सखियों, बचपन का वह सुनहरा अध्याय जहां सपनों को पंख मिलते हैं, यह जीवन का वह हिस्सा है जहां हर व्यक्ति एक बार लौटने की कल्पना अवश्य करता है।
1: मासूम, निश्चल, कोमल सा बचपन, जहां बेफिक्री, शरारत और शैतानियों की कहानियां लिखी होती है ना शिल्पी। परियों की कथा के बीच ये विश्वास भी होता है कि कोई सुंदर से पंखों वाली परी आएगी और वो सब कुछ दे जाएगी जो हमारी कल्पना में है।
0: हालांकि अब माता पिता का संघर्ष दिखता तो है, लेकिन समझने की समझ कहाँ होती है तब। एक सुरक्षा घेरा होता है जिसके अंदर कोई भी दुख प्रवेश नहीं कर सकता।
1: लेकिन शिल्पी, ये सुरक्षित और बेफिक्र बचपन सबको कहाँ नसीब होता है। कितनी तकलीफ होती है ना जब किसी दुकान, होटल, कारखाने या घर में छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं हम। नन्हे हाथों में किताबों की जगह जूठे बर्तन, जिस थाली में पौष्टिक स्वादिष्ट आहार होना चाहिए वहां रूखा सूखा आधा अधूरा भोजन।
0: आखिर तुमने बहुत भावुक बात कही। नंगे पांव फटे पुराने कपड़ों में मेहनत मजदूरी करते ये मासूम बच्चे किसी भी संवेदनशील इंसान को विचलित करते हैं। ये बाल श्रम एक जुर्म है बहनों, कानूनी अपराध है। आज बाल श्रम निषेध दिवस है, इसलिए हमने ये बात आपसे कही और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में की गई थी।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाना और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जो है जागरूक कराना और समाज को भी इस दिशा में जागरूक कराना है। और बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 है, इसे संशोधित करके संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अधिक सख्त बना दिया गया है।
0: हाँ बहनों, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है। बच्चों को किसी भी उद्योग, व्यवसाय या कारखानों में काम पर रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आपके परिवार के किसी वैध व्यवसाय में बच्चे सहायता कर सकते हैं।
1: हाँ, ये अगर परिवार का व्यवसाय हो तब, है ना। और बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वालों को 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक कारावास की सजा हो सकती है। ये सबके लिए जानना जरूरी है और साथ ही साथ आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार दंड के बाद दोबारा फिर से ये काम करता है और दोषी पाया जाता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा भी हो सकती है।
0: बिल्कुल राखी, और किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट या टोल फ्री नंबर 1098 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो बाल श्रम कानूनी अपराध है और अगर ऐसा देखते हुए आप कहीं से गुजरे तो जरूर इस संबंध में कदम उठाएं। बहनों, बच्चों का जो बचपन है उसे सुरक्षित रहने दें, क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं ना शिल्पी।
0: बिल्कुल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
7: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अप...

0: बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बहनों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आज के सफर में मैं हूँ शिल्पी।
3: हाँ, और शिल्पी अब आगे बहनों को कुछ जानकारियाँ दिलवाएंगे हम एक भेंटवार्ता के माध्यम से। और आज का विषय हमने रखा है सोशल मीडिया के दौर में खोता जा रहा बचपन। आज बच्चों पर चर्चा भी की हमने, तो इस संदर्भ में जानकारी दे रही हैं प्रिया गुप्ता और उनसे बहनों बातें कर रही हैं हमारी प्यारी सखी शिल्पी।
4: सखियों जरा याद कीजिए अपना बचपन, गली मोहल्ले में सखियों के साथ खेलना, दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, दादी नानी से परियों की कहानियां सुनना और छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंसना, याद है ना? लेकिन आज का बचपन कुछ बदल सा गया है। अब बच्चों के हाथों खिलौने, गुड़िया की जगह मोबाइल है, मैदान की जगह स्क्रीन है और दोस्तों की जगह फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया में कहीं ना कहीं बचपन की मासूमियत, शरारतें और खुलापन सिमटता जा रहा है। सोशल मीडिया ज्ञान और मनोरंजन का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन जब इसका उपयोग आवश्यकता से अधिक होने लगे तो बच्चों के स्वास्थ्य, पढ़ाई पर असर पड़ने लगता है। तो आइए आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम एक नजर डालते हैं कि आखिर सोशल मीडिया बच्चों का मित्र है या उनके बचपन का चोर। इस संदर्भ में बातचीत के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं। आप हैं प्रिया गुप्ता। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। नमस्कार।
5: नमस्कार शिल्पी जी।
4: प्रिया जी, सबसे पहला सवाल है कि सोशल मीडिया बच्चों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में आप क्या बताइएगा?
5: जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने शिल्पी जी। ये अभी चिंता का एक विषय हो गया है
4: जी।
5: क्या होता है कि अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताने से बच्चों का पढ़ाई में ध्यान कम हो सकता है, शारीरिक गतिविधियों में उनकी कमी आ सकती है, खेल कूद और बाहरी गतिविधियों के लिए भी उन्हें कम समय बचता है और साथ ही साथ मानसिक तनाव भी एक होता है। दूसरों से तुलना करने, लाइक और फॉलोअर्स की चिंता से उनका तनाव बढ़ सकता है। उसके बाद नींद की समस्या आती है, देर रात तक मोबाइल चलाने से नींद भी प्रभावित होती है, साइबर सुरक्षा का खतरा भी बढ़ा रहता है, गलत जानकारी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग जैसी समस्याओं का ने सामना करना पड़ सकता है। में हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक उपयोगी साधन है, लेकिन इसका संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग आवश्यक है। बच्चों को सीमित समय के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए तथा पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के साथ उन्हें ज्यादा समय बिताना चाहिए।

0: जी प्रिया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सारी बात आपने बताई, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा वक्त, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, परिवार से घुल मिलकर रहना चाहिए, बातचीत आजकल हमारे बच्चे कम करते हैं क्योंकि ये स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो इसका स्वास्थ्य पर, विशेष रूप से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है बच्चों का, ये बताइए।
1: होता क्या है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लंबे समय तक मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द, सूखापन और दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चों की शारीरिक गतिविधियां भी कम हो जाती है, जिससे मोटापा और फिटनेस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ता है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम से नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, जिसके कारण थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी आ सकती है। साथ ही बच्चों में तनाव, चिंता और सामाजिक अलगाव जैसी मानसिक समस्याएं भी बढ़ सकती है। इसीलिए बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग सीमित और संतुलित होना चाहिए, तथा खेल कूद, पढ़ाई और पारिवारिक गतिविधियों को भी पर्याप्त समय देना चाहिए।
0: जी बहुत अच्छी आपने बात कही प्रिया जी। अभी तक हमने सोशल मीडिया से होने वाले जो भी नकारात्मक प्रभाव हैं उसके बारे में जाना, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई बच्चे अगर खेलेंगे नहीं और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पे रहेंगे तो आंख और हेल्थ सब पे असर पड़ता है। साथ साथ एक और
1: जी
0: बात कहना चाहूंगी कि बच्चों की दोस्ती आजकल कम होने लगी है। जैसा कि हमारे
1: जी
0: जमाने में बहुत सारे दोस्त होते थे, हमारे पास टीवी भी नहीं था उस जमाने में, लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे कि जब नकारात्मक प्रभाव की बात हुई तो सोशल मीडिया के क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, यानी कि उसका सकारात्मक उपयोग क्या हो सकता है, इसके बारे में जानकारी आपने।
1: जी बहुत गतिविधियां नकारात्मक नहीं होती,
0: जी
1: उसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी होते हैं। तो इससे होता क्या है कि उन्हें सीखने के नए अवसर मिलते हैं। ऑनलाइन कक्षाएं, शैक्षणिक वीडियो और विभिन्न कौशल सीखने के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इससे सामाजिक जागरूकता बढ़ती है, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों के बारे में भी जागरूकता बढ़ती है, और साथ ही साथ बच्चों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। अपनी उपलब्धियों और विचारों को साझा करने से आत्मविश्वास बढ़ भी सकता है। कैरियर और अवसरों की जानकारी, विभिन्न प्रतियोगिताओं, छात्रवृत्तियों और करियर संबंधी अवसरों की जानकारी भी उन्हें मिलती है। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली, हम यह कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है, जो सही दिशा में उपयोग किए जाने पर शिक्षा, जागरूकता, रचनात्मकता और संचार को बढ़ावा देती है।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बात सच है प्रिया जी कि किसी भी चीज के, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब ये
1: जी
0: हम पे निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करें, अच्छे पहलू को देखें या उसके गलत पहलू को। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया से जितनी तरह की खराब प्रभाव की बात हमने की, लेकिन उतने ही अच्छे फायदे भी हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं आजकल जिसे हम घर में रह के पढ़ सकते हैं, और दूसरी बात है कि आप साथ साथ एक के साथ और भी कई चीजें आप कर सकती हैं। ये बहुत मैंने सकारात्मक विचार है, उपयोग है इसका, अगर बच्चे सही तरह से इस्तेमाल करें तो। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं कि आपसे कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने में माता पिता की कैसी भूमिका होनी चाहिए, यानी कि अभिभावक होने के नाते आप अपनी राय बताइए बच्चों के साथ।
1: हाँ जी, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए सबसे पहले माता पिता को इसके लिए एक सीमा तय करनी होगी।
0: जी
1: बच्चों के मोबाइल और सोशल मीडिया उपयोग के लिए समय निर्धारित करना होगा, और साथ ही साथ उनसे खुलकर संवाद करना होगा, बच्चों से सोशल मीडिया के लाभ और जोखिमों के बारे में भी।
0: दोनों के बारे में।
1: और
0: जी
1: जी, और स्वयं भी माता पिता को उदाहरण बनना पड़ेगा कि बच्चों

0: के सामने उन्हें भी मोबाइल का संतुलित उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अक्सर उनका अनुकरण करते हैं। और साथ ही साथ माता पिता को वैकल्पिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, जैसे उन्हें बताना पड़ेगा खेल कूद का महत्व, पुस्तक पढ़ने का महत्व, संगीत, कला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी उन बच्चों की रुचि बढ़ाएं,
1: बिल्कुल
0: और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर भी उन्हें नजर रखना होगा। बच्चों द्वारा देखी जा रही सामग्री और उनके ऑनलाइन व्यवहार पर निगरानी रखनी होगी। साथ ही साथ पारिवारिक समय बढ़ाना होगा। परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से बच्चों की सोशल मीडिया पर निर्भरता कम हो सकती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि कहीं ना कहीं बच्चों से अगर हमारा संवाद बढ़ेगा तो बच्चे का रुझान उस तरफ से थोड़ा कम होगा। और भाई, जब
0: जी
1: बच्चे आजकल तो सोशल मीडिया का प्रयोग करते ही हैं और करना भी है, लेकिन अभिभावक को चाहिए कि एक पैनी नजर बच्चों पे जरूर रखें। प्रिया जी,
0: बिल्कुल
1: जैसा कि हम सब जानते हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि अभी के बच्चे खेलकूद, जैसा कि हमने पहले भी कहा, खेलकूद, बाहरी गतिविधियां, इन सब से दूरी बना लिए हैं बच्चे। तो इसके परिणाम जो है हम देख रहे हैं कि बच्चे घर में बैठे बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं। तो बच्चों के
0: जी
1: जीवन में खेलकूद का क्या महत्व है, इसके बारे में हमारे श्रोता सखियों को आप बताइए।
0: जी खेल कूद बच्चों और साथ ही साथ युवाओं को सोशल मीडिया की अत्यधिक लत से दूर रखने का एक प्रभावशाली माध्यम है।
1: जी
0: जब बच्चे खेल के मैदान में समय बिताते हैं तो उनका ध्यान मोबाइल और सोशल मीडिया से हटकर शारीरिक गतिविधियों पर केंद्रित होता है। खेल कूद से शरीर स्वस्थ रहता है, ऊर्जा का सही उपयोग होता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। साथ ही बच्चों को नए मित्र बनाने, टीम के साथ काम करने और वास्तविक जीवन के अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है। इससे वे आभासी दुनिया के बजाय वास्तविक दुनिया से अधिक जुड़ते हैं। नियमित खेल कूद बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और समय प्रबंधन की आदत विकसित करता है, जिससे वे सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और संतुलित रूप से कर पाते हैं। खेल कूद न केवल बच्चों को स्वस्थ और सक्रिय बनाता है, बल्कि उन्हें सोशल मीडिया से बहुत हद तक बचा कर भी रखता है।
1: बिल्कुल, और चूंकि बच्चों का ये जो उम्र होता है वो बढ़ने वाला उम्र होता है, तो खेल
0: जी
1: कूद से बहुत सारे बच्चों का शारीरिक विकास भी और मानसिक दोनों प्रभावित होता है। प्रिया जी,
0: हाँ
1: चलते चलते आप हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि अभिभावक अपने बच्चों में या बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
0: अभिभावकों से और खासकर अपनी सखियों से ये कहना चाहूंगी कि प्रभाव बच्चों पर ना पड़ने दे। बच्चों को इनसे बहुत हद तक दूर रखने की का प्रयास करें और उन पर नजर हमेशा बनाए रखें। ज्यादा देर मोबाइल नहीं दे, मोबाइल दे भी तो पढ़ाई लिखाई के उपयोग के लिए ही दे।
1: बिल्कुल, अभिभावक के हाथ में बहुत ताकत होती है प्रिया जी।
0: जी
1: बच्चों
0: जी
1: कहते हैं कि माटी का गोला होते हैं, हम जिस तरह से आकार देंगे वैसे बनते हैं। तो बच्चों
0: जी
1: के लिए अभिभावक को चाहिए कि बचपन से ही उनकी इच्छा को, रुचि को पहचान कर तरह तरह की किताबें पढ़ने के लिए दें, तो निसंदेह बच्चे
0: हाँ
1: उसकी ओर आगे बढ़ जाएंगे। प्रिया जी,
0: जी
1: आपने
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। और हाँ, सच है कि आभासी दुनिया का उपयोग सीखने, पढ़ने, जानकारी पाने के लिए करना सही है, लेकिन
0: जी
1: वास्तविक दुनिया के खेल, पढ़ाई, समय बिताना, परिवार के साथ बातें करना, घूमना, ये ज्यादा जरूरी है। प्रिया जी,
0: जी
1: आपने हमारे कार्यक्रम से जुड़कर हमारी सखियों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और अपना बहुमूल्य वक्त हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्कार।
2: बहनों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता। विषय था सोशल मीडिया के दौर में खोता जा रहा बचपन, और इस संदर्भ में जानकारी दे रही थी प्रिया गुप्ता, उनसे बातें कर रही थी शिल्पी। और शिल्पी, वही जानकारियों के बाद तो बहनों को इंतजार रहता है मनोरंजन का, तो चलो एक इतना प्यारा सा, इतना सुंदर सा गीत सुनवाते हैं बहनों को कि वो बिल्कुल उस

0: तो बहनों, चलते चलते आपसे इतना ही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज़्यादा स्क्रीन पर, मोबाइल पर समय ना बिताएं, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक है। सीमित समय मोबाइल और स्क्रीन पर देखें, आज ये बात,
1: क्योंकि बच्चों की तो खैर चाह रहती है, लेकिन हम अभिभावक होने के नाते यही कहेंगे कि बच्चों को जितनी दूरी हो सके इससे आप बना सकें तो बनाइए।
0: और अब वक्त हो गया है शिल्पी बहनों से विदा लेने का, तो चलते चलते बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी
1: और शिल्पी को दे इजाजत। नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: Messina.
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म खेल खेल में का गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में। संगीत है आरडी बर्मन का है, उस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, एक बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने

0: महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah is chairing a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB are present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NEET UG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people were killed and 37 others wounded as Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground yesterday. Although the demonstration started peacefully, demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent, with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalkot to raise slogans against Pakistan's continued occupation. General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization, IMO, Arsenio Dominguez, has condemned the attack on a Palau-flagged tanker off the coast of Oman in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN Chief, Stefan Dujarric, said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana died at the age of 49 at a private hospital in New Delhi today. He mentored Manu Bhakar and helped her secure a historic double bronze medal at the 2024 Paris Olympics. President Draupadi Murmu expressed sadness over the passing of Jaspal Rana. Prime Minister Narendra Modi has also expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% up in afternoon trade today. The Sensex advanced 653 points to 74,486, while the Nifty rose 160 points to 23,322 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: Akashwari Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला विकास को दी प्राथमिकता, स्वयं सहायता समूहों और तकनीक से नारी शक्ति बन रही आत्मनिर्भर। झारखंड हाईकोर्ट ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा लिखित जवाब। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों का बकाया राशन एक मुश्त देने की प्रक्रिया की तेज। धोती साड़ी, नमक और दाल का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर प्रक्रिया तेज। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कई मसलों पर चर्चा। सरकार ने 7 दिनों के भीतर आधुनिक अस्पतालों के लिए मांगा विस्तृत प्रस्ताव। और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा का 49 की आयु में दिल्ली में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: आधुनिक क्षेत्रों में नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता जताई और उन्हें राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया।
1: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल,
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया, हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
1: महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो,
2: 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है।
0: जामताड़ा जिले में किसानों, व्यवसायियों और समाज सेवियों सहित हर वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को बेमिसाल बताया है। प्रगतिशील किसान अभय कुमार सिंह सहित हर वर्ग के लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं।
3: किसानों के लिए उन्होंने जो काम किए बहुत ही सराहनीय है। हर एक किसान को साल में 6,000 तीन किस्त में देकर उन्नत कृषि करने का एक बहुत सुनहरा मौका दिया और आज किसान पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया में अपने समय पर बीज खाद खरीद कर खेतों में जो अपना काम कर रहे हैं, उन्नत बीज उन्नत खाद के माध्यम से कम जगह में अच्छे से अधिक फसल उपजाने का काम आज किसान कर रहे हैं, जिसमें किसान काफी खुशहाल हैं।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को याचिकाकर्ता के सुझावों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस याचिका में करीब 1,000 कैदियों की रिहाई के लिए लिखित सुझाव दिए गए हैं। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। राज्य सरकार ने 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों का बकाया राशन और कल्याणकारी सामग्रियां एक मुश्त देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभाग ने धोती, साड़ी, नमक और दाल योजना का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर शुरू कर दिया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जल्द ही सभी पात्र परिवारों को बकाया सामग्री मिल जाएगी। राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें एचएलएल हेल्थकेयर ने अस्पताल निर्माण और उपकरण खरीद पर प्रस्तुति दी। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने एचएलएल को 7 दिनों में विस्तृत प्रस्ताव सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ट्रॉमा सेंटरों के रूप में विकसित करने और कम क्षमता वाले अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर चलाने की संभावनाएं तलाशने को कहा। रांची विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस विंग ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत की है। चालू सत्र में इस विंग की रैंकिंग और प्रतिष्ठा में बड़ा सुधार हुआ है। लगभग 10,200 से अधिक स्वयंसेवकों के साथ यह विंग झारखंड के सबसे सक्रिय छात्र संगठनों में से एक बनकर उभरा है। यह विंग राज्य में वृक्षारोपण, रक्तदान, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियानों में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से ही सुन रहे हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने दुमका में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्रियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए आरोपों से साफ है कि महागठबंधन बिखर चुका है। राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महज 16 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है, जबकि 24 विधायकों वाली भाजपा निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने की सलाह दी।
4: तरह से कांग्रेस जो है उछल कूद कर रही है, इससे प्रतीत हो रहा है कि हमारे समर्थित प्रत्याशी नाथवानी जी पिछले बार के अधिक वोट जीत करके राज्यसभा में जाए। कांग्रेस का इस तरह से

0: विधानसभा के अंदर छाती पीट रहा है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस टूट के कगार पर है, मंत्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है।
1: देवघर पुलिस ने जसीडीह स्टेशन के पास से 6 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय ब्राउन शुगर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से 76 ग्राम मादक पदार्थ और नकद बरामद किए गए हैं। एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि आरोपी रेल मार्ग से नशा लाकर देवघर में सप्लाई करते थे।
2: सूचना के आधार पे हमारी टीम वहाँ पे रेड करने गई, तो उस टीम ने नजर रखा और फिर देखा कि 2 लोग ट्रेन से आए और वहाँ ब्राउन शुगर डिलीवर करने के लिए आए थे। उनके बदले 63,000 रुपए ये लोग नगद देने वाले थे और इनको ट्रांजैक्शन करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और 76.19 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामद की हुई है।
1: घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक लगभग 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक बढ़कर 23,382 पर पहुंच गया। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। भारत के दिग्गज पिस्टल निशानेबाज और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने उनके निधन की पुष्टि की है। म्यूनिक विश्व कप से लौटने के बाद बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। वे भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि निशानेबाजी में असाधारण उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित करने वाले राणा का जाना खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बेहद मिलनसार बताते हुए देश में निशानेबाजी को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान को सराहा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला विकास को दी प्राथमिकता। स्वयं सहायता समूहों और तकनीक से नारी शक्ति बन रही आत्मनिर्भर। झारखंड हाई कोर्ट ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा लिखित जवाब। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को बकाया राशन एक मुश्त देने की प्रक्रिया की तेज। धोती साड़ी नमक और दाल का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर प्रक्रिया तेज। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कई मसलों पर चर्चा। सरकार ने 7 दिनों के भीतर आधुनिक अस्पतालों के लिए मांगा विस्तृत प्रस्ताव। और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। इसमें आज आप सुनेंगे ठुमरी और दादरा। कलाकार हैं सिप्रा बोस।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: man behind ace shooter Manu Bhakar's rise in the sport. Apart from Bhakar, Rana worked closely with several leading pistol shooters including Saurabh Chaudhary, Anish Bhanwala and Chinki Yadav. He was awarded the Arjuna Award in 1994, the Padma Shri in 1997 and the Dronacharya Award in 2020. Indian shooting has lost one of its finest ambassadors, athlete, mentor and sports journalism has lost a knowledgeable guide. Sayukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and other leaders have expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. In FIFA World Cup 2026, South Korea defeated the Czech Republic 2-1 in a thrilling Group A clash today, earning valuable 3 points at Estadio Akron in Mexico's Zapopan. South Korea will next take on co-host Mexico, while the Czech Republic will look to bounce back against South Africa in a Group A clash. Today, co-host Canada will be up against Bosnia-Herzegovina in a Group B clash of Toronto Stadium. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In badminton, India's PV Sindhu stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney today. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su Yu 21-6-21-9 in a one-sided quarterfinal clash. The India Meteorological Department, IMD, has said a wet spell is likely to continue over northwest India till tomorrow, with the possibility of thunderstorms and gusty winds and hailstorms. According to IMD, conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, parts of West Bengal, Bihar, some parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Center restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaspal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है। इसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

0: है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहां उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक विभाग प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा

0: सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षो में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24 लाख रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। गज निशानेबाज और

0: और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
1: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आइए जय भारती कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं स्वदेश फिल्म का गीत एआर रहमान की आवाज में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत एआर रहमान का ही है।

आप सुन रहे हैं जय भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और आइए अब सुनते हैं रवि शेरिल की आवाज में जब तक है जान फिल्म का गीत। ए आर रहमान का संगीत है और इस गीत को लिखा है गुलजार ने।

नमस्ते नंदन, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में। संगीत हेमेश रेशमिया का है और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

0: अभी आप सुन रहे थे जय भारती कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि NTA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि NEET UG की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। एक रिपोर्ट।
3: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार धारकों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार करने के लिए झारखंड भर में आधार सेवा के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहा है। आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए UIDAI ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों से ही सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात कर पंचायतों को आवंटित अनुदान राशि से योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के सुचारू और समयबद्ध संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश शीघ्र जारी कराने की मांग की। आज भारत आदिवासी पार्टी के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में मुलाकात कर जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सारंडा क्षेत्र के पात्र निवासियों को वनाधिकार पट्टा प्रदान करने की दिशा में पहल करने का अनुरोध भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ACB के विशेष न्यायाधीश ओमकार नाथ चौधरी की अदालत ने खूंटी अंचल के कर्मचारी सत्यनारायण राम को ₹500 रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया है। वर्ष 2006 के इस मामले में अदालत ने उन्हें 1 वर्ष के कारावास और ₹15,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जमशेदपुर में नशामुक्त भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। जिले के उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि नशे की लत व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार की आर्थिक स्थिति और बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
4: राज्य में नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग चाहेंगे कि लोग नशा से अपने आप को मुक्त रखें। नशा परिवार के आर्थिक स्रोत को भी काफी क्षति पहुंचाता है और खास करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई जिस घर में नशा होता है वहां पे प्रभावित हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि अपने परिवार को नशा से मुक्त रखें, जिससे हम अपने देश को विकास के रास्ते पे ले जाएं।
1: और अब मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने झारखंड के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। मॉनसून की वर्तमान स्थिति, इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं तथा राज्य में संभावित मौसम परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची द्वारा आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का आज से आगाज हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस प्रतियोगिता का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। इस बार पहली बार 12 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है
2: जी।
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की
2: जी।
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं, लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है
2: जी।
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है
2: जी।
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया
2: जी।
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है
2: जी।
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं, ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं, क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
3: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
4: हर पल चलती जाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
4: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
4: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
4: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
4: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
4: घर को खूब सजाती चींटी,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
4: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
4: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
4: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
4: काम बड़े करके दिखलाती,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
4: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
4: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: हमको यही सिखाती चींटी,
4: हमको यही सिखाती चींटी।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

सुना आपने? कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: 844-844-6632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रख

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय है युवा शक्ति। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं श्रीमती ललिता कुमारी, राज्य निदेशक माई भारत, और श्री ज्ञान रंजन कुमार, संपादक रिपोर्टर पोस्ट रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम किरकिट्टा।

नमस्कार, मैं पूनम करकट्टा आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आयोजित परिचर्चा में। आज की परिचर्चा आयोजित की गई है केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर।

0: पर। और आज हमारी इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती ललिता कुमारी, राज्य निदेशक माय भारत, और श्री ज्ञान रंजन कुमार, संपादक रिपोर्टर पोस्ट रांची। ललिता कुमारी जी और ज्ञान रंजन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है
1: जी, बहुत
0: हमारे
1: बहुत
0: स्टूडियो में आने के लिए। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, केंद्र सरकार के एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस दौरान केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, कई क्षेत्र में काम किए गए हैं, लेकिन युवाओं को भी ध्यान में रखकर, क्योंकि युवा ही किसी देश की नींव है, उस देश की पूंजी है, और इसे सरकार ने बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए कई सारी योजनाएं लाई हैं। इन योजनाओं की शुरुआत मैं करना चाहूंगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो युवाओं को कई फील्ड में ट्रेनिंग देता है, जिससे कि वो एक दक्ष नागरिक, दक्ष कार्यबल बन सकें और उद्योगों को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। ज्ञान रंजन जी, यह जो कौशल विकास योजना है, जिस तरीके से यह लाई गई और जिस तरीके से इसका योगदान रहा है देश को आगे बढ़ाने में, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी।
1: पूनम जी, अगर आप देखेंगे तो कौशल विकास योजना की शुरुआत 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी
0: जी,
1: उसके बाद से शुरू की गई। और केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत, आप अगर शुरुआती बजट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस बजट में एलोकेशन जो राशि का हुआ था वो अन्य की तुलना में, जो पहले होता था कि ठीक है युवाओं के लिए या फिर महिलाओं के लिए, एससी एसटी के लिए, जो भी करते थे सरकारें, सभी करती थी काम, लेकिन इसमें फोकस किया गया युवाओं को। इसके पीछे की मुख्य मंशा प्रधानमंत्री की या एनडीए सरकार की ये रही थी कि जो विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है भारत, हमारा देश 65% आबादी युवा है, यानी 80 से 85 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो युवाओं का है। जाहिर है कि जिस देश में 145 करोड़ की आबादी में 80 से 85 करोड़ युवा होंगे, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो जॉब का एज होता है 18 से लेकर 35 साल का, वो तकरीबन 46% है, यानी वो भी आपके 60 करोड़ के करीबन आते हैं। तो आप अगर पूरे आंकड़े को देखते हैं तो उसके लिए ये आवश्यक था कि ऐसे हुनरमंद को तैयार किया जाए जो आश्रित नहीं हो कि सरकारी नौकरी मिले या कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी मिले तभी हमारी जीविका चल सकती है
0: जी।
1: अब प्रधानमंत्री की सोच ये थी कि जो हमारे देश के युवा हैं, जो हमारी युवा शक्ति है, और खास करके जो माइंड सेटअप होता है लोगों का 18 से 35 साल के बीच के लोगों के बीच में, जो कार्य दक्षता या कार्य क्षमता जो उसकी होती है, काम के प्रति जो जुझारूपन होता है, उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसको कैसे देश हित में लाया जाए, इसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी। मुझे याद है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी को पहली मर्तबा कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था 2014 की जब सरकार बनी थी, तो और उनसे मेरी उस समय बात हुई थी, झारखंड दौरे पर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये देश के लिए माइलस्टोन होगा। तो मैंने सवाल भी किया था कि साहब आप योजना शुरू किए हैं लेकिन कैसे माइलस्टोन होगा, क्योंकि कौशल विकास के लिए कम से कम 1 से 2 साल का तो आप ट्रेनिंग दीजिएगा, तो 2 साल के ट्रेनिंग के बाद फिर तत्काल काम कैसे आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं देख रहे हैं। हमारी सरकार ने सिर्फ कौशल विकास को ही आगे नहीं बढ़ाया कि युवाओं को हम ट्रेंड करके उनको हुनरमंद बना करके देश हित में उसका उपयोग करें, हमारी सरकार ने एक मुद्रा योजना लाया है जिसके तहत कि अगर वो हुनरमंद हो जाते हैं तो उस मुद्रा योजना के माध्यम से जो एक गारंटर की बैंक डिमांड होती थी कि हमको गारंटर दो तभी हम लोन देंगे, तो आप इसमें नहीं है। तो आप सोचिए कि एक 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन दिया जाता है अगर बच्चे हुनरमंद होते हैं कौशल विकास के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है, कौशल विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया, कौशल विकास कार्यक्रम जो है सो छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाके तक में पहुंच गया है,
0: बल्कि छोटे शहरों में ज्यादा सफलतापूर्वक बच्चे इस पर काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पहले आपको याद होगा कि मोबाइल को बनवाने के लिए आपको खोजना पड़ता था कि दुकान कहाँ है जिसमें जाके मोबाइल बनाए, और अभी इससे फायदा ये हुआ है कि आप छोटा सा चीज, क्योंकि मोबाइल, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी के समय में रिक्शा चलाने वाले से लेकर के दैनिक मजदूरी करने वाले से लेकर के प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, सबके पास यूज होता है सबसे ज्यादा मोबाइल का
0: जी।
1: तो अगर हुनरमंद हो जाएगा हमारा देश तो जो 80 करोड़ 85 करोड़ लोड होता है, क्योंकि वो लोड इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उन्हें रोजगार

0: नहीं मिलेगा तो वो भटकेंगे। तो भटकाव को रोकने में ये कौशल विकास योजना जो है, कौशल विकास कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री का है या भारत सरकार का है, उसकी मैं काफी सराहना करता हूँ। इस मायने में कि देश हुनरमंद होगा तो देश विकसित होगा, देश विकसित होगा जो मिशन 2047 का है, विश्व गुरु बनाने का
1: जी
0: या फिर
1: जी
0: सबसे विकसित कंट्री बनाने का। क्योंकि आप आर्थिक मोर्चे पर आप देख लीजिए, कोविड आया, उसके बाद अभी खाड़ी देशों का युद्ध चल रहा है, इस दरमियान भी आप देखिए कई देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हाशिए पर आके खड़ी हो गई है,
1: जी
0: कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी। ठीक है, कुछ कठिनाई हुई है लोगों को, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश अगर स्टेबल है तो इसको आप मान सकते हैं कि एक उच्च सोच, अच्छी नीति,
1: जी
0: अच्छे जुझारूपन से काम हो रहे हैं।
1: जी ललिता कुमारी जी, इसी तरह स्किल डेवलपमेंट में एक और स्कीम आई है, पीएम दक्ष योजना। पीएम दक्ष योजना, इसमें मुख्यतः एससी ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ये योजना लाई गई है। तो इस योजना को लाने के पीछे क्या ध्येय रहा होगा केंद्र सरकार का कि हम स्पेसिफिकली इन वर्गों के बच्चों के लिए योजना लेकर आए? आपकी टिप्पणी चाहूँगी।
2: पूनम जी, जैसा कि आपने बताया कि ये पीएम दक्ष योजना लाया गया है, बेसिकली एससी एसटी वीकर सेक्शंस के यूथ जो हैं उनके लिए। तो जो हमारा भारतवर्ष रहा है, पहले से कृषि प्रधान देश रहा है, और जो 70% पहले का जो डाटा था, आंकड़ा था, उसके हिसाब से 70% जो 70% लोग हैं वो कृषि पे इन्वॉल्व होते थे, और उनके बच्चे जो हैं वही कृषि और मजदूरी के कामों पर पहले लगते थे। लेकिन अब जब से ये हमारा एनडीए सरकार आया है 2014 से, तब से सबको हम कैसे आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे कदम बढ़ा सके, जो सारी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास वर्क फोर्स है, हमारे पास, हमारा देश को युवा देश कहा जाता है, जहां पे 65% युवा हैं, और ये हमारे देश के लिए एक डिविडेंट है। जहां ओल्ड एज के जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो वो लाइबिलिटीज कहा जाता है। तो चूंकि हमारे पास युवा 65% है, तो उनको हम कैसे ये दक्ष स्किल उनका इम्प्रूव कर सके, उनको अलग से प्रशिक्षण वगैरह दे सके, और ताकि वो चीज़ों को जो हम बाहर से भारतवर्ष में देश में जो बाहर से आयात होके इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी चीज़ें बाहर से आती है, तो वो अगर हमारे यहाँ के युवा दक्ष होते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें यही भारतवर्ष में ही वो बनेंगी, और यहाँ बनेगी तो वो एक रोजगार सभी बच्चों को मिलेगा, जो बेरोजगारी का समस्या है हमारे देश में, तो वो समस्या का समाधान होगा, और हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारा रेवेन्यू बाहर चला जाता है, वो हमारे देश में ही रहेगा, और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत @2047, तब तक हम अगर हम सभी चीज अपने देश में ही बनाने लगते हैं युवाओं को प्रशिक्षित करके, तो हम सही रूप में, सही मायने में हमारा देश 2047 जब हम 100वीं जयंती मनाएंगे अपनी स्वतंत्रता की, तब तक हमारा देश एक विकसित भारत के पंक्ति में खड़ा होगा, विकसित देश में आ जाएगा।
1: जी,
2: और ये बच्चों के लिए रोजगार है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी।
1: जी, और सरकार का यही ध्येय रहा कि खास करके इन वर्गों से, एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्गों से बच्चे पीछे न छूट जाएं, इसलिए इनके लिए खास।
0: देखिए, इसमें एक चीज और देखना होगा।
1: जी ज्ञान रंजन जी,
0: कि आप जब बात करते हैं कि आज़ादी के बाद से हमेशा ये चीजें सामने आती है कि भाई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो अब उसमें क्या होता था कि एक डिमांड होता था कि भाई जो सामान्य वर्ग में, सामान्य वर्ग में जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उसके लिए सरकार क्या सोचती है। तो ईडब्ल्यूएस योजना आई, लेकिन जो ये पीएम दक्ष योजना जो है, इसके अगर पहलू में आप जाएंगे तो प्री मैट्रिक से लेकर के आगे के एजुकेशन तक जो है सो इनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। इसके बाद जो है सो सरकार की तरफ से कैसे प्रोत्साहित करके रोजगार उन्मुखी ट्रेनिंग दी जा रही है इन बच्चों को, कि वो अपना रोजगार खुद कर सके। मैंने बताया ना पूनम जी कि आज स्थिति ऐसी नहीं है कि देश में पूरे स्टेट को और सेंट्रल फोर्स को मिला लें, आप जो सरकारी कर्मचारी हैं वो मिला लें, तो उतने को अगर फिर से नौकरी दे दे सरकार, फिर भी बेरोजगारी का भार रहेगा।
1: जी,
0: और इसको लेकर के कौशल विकास के साथ साथ जो पीएम दक्ष योजना को लाभ, एक एक योजना को देखेंगे ना, तो उसमें ये दिखता है कि एक माइंडसेट दिखता है गवर्नमेंट का कि भाई हम कैसे मेन पावर जो हमारा सबसे मुख्य एज का मेन पावर है, क्योंकि युवा वर्ग के बीच में जो कार्यक्रम इस तरह के लाए जाते हैं वो सही मायने में अगर आप देखेंगे, मैंने कहा रोजगार कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, जो डिमांड होता है सरकारी नौकरी एक फिक्स है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कैसे हम क्रिएट करें। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि आईआईटी करके बच्चे आते हैं और तरबूज की खेती झारखंड में रांची के ही बगल में कर रहे हैं। वो ऐसा किए हैं कि जो पहले कहा जाता था कि तरबूज बालू पर होता है वो यहाँ की पहाड़ी मिट्टी पर उगा रहे हैं। परवल की खेती कहा जाता था बालू पर होता है, गंगा किनारे कोसी किनारे होता है, अब उसको हम देख रहे हैं रांची में वही ब्रीड जो पटना का ब्रीड आता है व्हाइट कलर का परवल, वो हमको रांची में उपजाते हुए देख रहे हैं। आप फ्रेंच बीन को जो है सो वैश्विक स्तर पर हमारे झारखंड के बच्चों ने ही पहुंचाया है, यहाँ के युवाओं ने पहुंचाया,
1: स्तर पर पहुंचाया,
0: आम को पहुंचाया। अभी आम का देख लीजिए कि पहले जो है सो दिघा का मालदा और भागलपुर का जर्दालू की चर्चा होती जो प्रधानमंत्री जी ने भी की भी थी, लेकिन अब आम्रपाली जो हमारे यहाँ का है वो लंदन गया हुआ है
1: जी।
0: तो ये जब युवा शक्ति जुड़ता है तो आपको नए तकनीक मिलते हैं। एक पौधे को डेवलप किया है जिसमें 5-6 तरह के आम होते हैं इसी BHU में
1: ग्राफ्टिंग करके।
0: तो अब हम ये कह रहे हैं ना कि जब दक्षता आएगी तो नेचुरली है कि उसका यूज देश हित में होगा
1: जी।
0: हमारी क्रय शक्ति जो पहले थी वो कैसे डेवलप हो रही है, क्योंकि क्रय शक्ति बढ़ेगी तो देश में जो सामान तैयार होंगे उसको खरीदने वाले लोग बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एड ऑन होगा। और ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ केंद्र सरकार के पैसे राज्य सरकार के पैसे हमें मिला नहीं मिला, नौकरी दी नहीं दी, ये कह के अगर चाहेंगे ये संभव नहीं
1: जी।
2: मैं और इसमें ये मैं एक चीज ऐड करना चाहेंगे ना, जैसे पहले थे कि स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग के लिए बच्चों को बाहर जाना है तो उनके पास अपना कैपेसिटी या पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अभी प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास केंद्र के अंतर्गत जो अब छोटे शहरों की बात हम पहले कर रहे थे, तो छोटे शहरों में भी आवासीय कौशल विकास केंद्र है जो ये सुविधा बच्चों को प्रदान कर रहा है कि अगर उनको 3 महीने 6 महीने घर से आना जाना ना करना हो, वहां पे रहना है तो रहने का, प्लस उनको कुछ अपना पॉकेट का भी वो स्टाइपन के तौर पे उनको दिया जा रहा है। तो ये भी बच्चों को उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि वो प्रशिक्षण को पूरा करें और कंप्लीट करके वो अपने कुछ रोजगार सीकर ना बन के दूसरों को रोजगार दें, जो भी कुछ भी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वो अपना स्टार्टअप कुछ भी शुरू करें, जो प्रशिक्षण वो ले रहे हैं तो दूसरों को रोजगार देने के लायक बन रहे हैं।
1: जी जी, ललिता कुमारी जी आप राज्य निदेशक हैं, तो आप ये बताइए आपके केंद्र के माध्यम से युवा किस किस तरह की बेनिफिट ले सकते हैं।
2: हमारे कैटेगरिकली तीन तरह के कार्यक्रम होते हैं। एक तो उनका नेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो यूथ हैं, अभी जो एज पर राष्ट्रीय युवा नीति उनको जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में कैसे उनको इंगेज किया जा सके ताकि वो अपने आप को खुद को डेवलप कर सके और बाकी आगे अपने परिवार को समाज को विकसित कर सके। हमारा सेकेंड कैटेगरी का जो कार्यक्रम होता है माई भारत का है, वो वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करना है ताकि हम सभी चीजों के लिए, जैसा कि सर पहले बतला रहे थे कि हम केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के को ही कोसते ना रहें, सभी चीजों के लिए हम उनके ऊपर निर्भर ना रहें, हम कुछ अपने लिए मतलब अपने आप को स्वयं सेवी संस्था के रूप में या स्वयं सेवक के रूप में कैसे स्थापित करके हम अपने खुद के विकास के लिए और अपने परिवार समाज के विकास के लिए कुछ कर सकें, और जहाँ पे समाज है परिवार से समाज बनता है और समाज से देश बनता है तो उनका खुद का विकास होगा तो हमारा देश भी विकसित भारत के कैटेगरी में 2047 तक डेफिनेटली आ जाएगा। हमारा लाइफस्टाइल चेंज होते जा रहा है, पहले बच्चों को ओपन फील्ड मिलता था खेलने के लिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने के लिए, तो वो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस भी अभी युवाओं का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो उसके लिए भी उनके फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन माई भारत के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है कि उनको कम्युनिटी सर्विस में जो वॉलंटियरिंग सर्विस हम जो बोले उसी का एक और पार्ट है कि वो कम्युनिटी सर्विस में उनको कैसे इंगेज किया जा सके, और बाकी दूसरे के बारे हमारा देश इतना बड़ा है कि इसको बहुत पहले से विभिन्नताओं में एकता का देश कहा जाता है, तो बहुत तरह के ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स माई भारत के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। अभी जैसे करंट का एग्जाम्पल है हमारे यहाँ से झारखंड से 15 बच्चे और इसी तरह हर एक स्टेट से 15 और हर एक यूनियन टेरिटरी से 10 बच्चे, ये हमारा जो बॉर्डर एरिया का विलेज है वहाँ पे विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करीबन टोटल उनका जो कार्यक्रम का ड्यूरेशन होगा वो 16-17 दिन होगा। 7 दिन उनको एक्सट्रीम एंड जो हमारा पाकिस्तान से लगता हुआ हमारा इंडिया का बॉर्डर है, हिमाचल, उत्तराखंड, लेह, लद्दाख, वहाँ पे ITBP के सहयोग से माई भारत उन गाँवों का चयन किया गया है। और हमारा कार्यालय तो हर एक जिला में होता है, तो हमारा माई भारत के जिला कार्यालय ITBP और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ये मौका बच्चों को दिया जा रहा है ताकि अपने देश के बारे में भी समझें कि केवल जो सेना होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस वही केवल हमारे देश की रक्षा नहीं करते बॉर्डर पे। अगर वहाँ पे वो गांव नहीं होता तो हो सकता था कि हमारा जो एरिया है, जो जमीन है हमारा, उस पे दूसरे लोग कब्जा कर सके। तो चूंकि वहाँ पे अब पॉपुलेशन है, इतने कठिन परिस्थिति में भी वहाँ पे जनसंख्या जो आवास कर रही है, लोग रह रहे हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं एक रोल है कि वो हमारे देश को बॉर्डर एरिया पे गार्ड कर रहे हैं।
1: जी जी, और ये बहुत जरूरी है कि बच्चों में कम उम्र से देशभक्ति और सामाजिक हित की भावना लाई जाए, और इसके लिए ये सब योजनाएं बड़ी अच्छी हैं। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी ज्ञान रंजन जी, बाकी सारी योजनाओं में एक योजना बड़ी चर्चा में रही है, स्टार्टअप इंडिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: स्टार्टअप इंडिया जो पहले हमारे पे या हमारी सरकारों पर आरोप लगते थे कि इनोवेशन को एक जो गाइड करने के लिए स्कीम्स लाई जाए, जो मांग उठती रहती थी, ये स्टार्टअप इंडिया उसको मीट कर पा रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई और इसके पीछे मंशा ये थी कि कैसे जो है सो हम अपने युवाओं को कैरियर बेस्ड, उसका कैरियर बनाने के लिए किस तरह से रोजगार बेस्ड वो अपना कैरियर बनाए, इसको लेकर के ट्रेंड करना था। इसके लिए कई तरह के काम होते थे, लेकिन इसके बाद आप इसमें अगर देखेंगे तो आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमी हो चुका है, यानी कि भारत जो है सो वो स्टार्टअप के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है कि हम किसी भी विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं होगा जहां कि भारत के बच्चे जाके स्टार्टअप का काम शुरू नहीं कर रहे हैं, भारत की तो छोड़ दीजिए। तो ये 16 में शुरू होकर के आज 26 हम लोग 10 साल के अंतराल में इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका लाभ तो मिल रहा है। मैंने पहले भी बताया आपको कि सरकारी नौकरी संभव नहीं है जब तक इस तरह से नहीं किए जाएंगे, जब तक नए नए चीजों को, नई नई तकनीक को नहीं लाया जाएगा, उनको स्टार्टअप से नहीं जोड़ा जाएगा,
1: उनको प्रमोट
0: नहीं किया जाएगा, तब तक जो है सो ये संभव नहीं है। कि आप चाहिएगा कि जो मैम कह रही हैं कि विकसित भारत 2047 की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री जी ने की है, कल ही नीति आयोग की बैठक थी, उसमें भी उन्होंने इन चीजों का चर्चा किया। उससे पहले कैबिनेट के मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने जो उनका सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में हुआ उसको लेकर के जब बैठक हुई, फिर नीति आयोग की बैठक होती है, तो आप नीति आयोग की बैठक में देखेंगे पूनम जी, तो जो मूल पॉइंट था वो फोकस था युवाओं को
1: जी,
0: हम कैसे युवा शक्ति को किन किन माध्यमों से आगे बढ़ाएं। तो अगर युवाओं के बीच में ये भावना भरी जा रही हो कि कौन सबसे ज्यादा हुनरमंद बन सकता है और उसको प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार गार्जियन के तौर पर उसके पीछे खड़ी हो जाती है, तो जाहिर है कि वो आगे बढ़ेंगे। अब सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूं कि पहले आपको याद होगा जब हम और आप पढ़ते थे तो उस समय बैंक से एजुकेशन लोन लेने के लिए हम लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी और उसमें यह था कोई सरकारी नौकरी करने वाला गारंटर होगा तभी आपको लोन मिलेगा
1: जी, ये और तो बात थी।
0: और अब स्थिति ये है पिछले 10 साल से कोई गारंटर नहीं, विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से हायर एडुकेशन के लिए चाहे वो आप देश के अंदर पढ़िए या विदेश पढ़ने के लिए जाइए और बैंक खुद आपके पास आकर के लोन देने के लिए तैयार होता है, आपको सिर्फ कुछ पेपर सबमिट करने पड़ते हैं, वो भी एडुकेशनल पेपर जो आप 12th कहाँ से किए, 10th कहाँ से किए, फादर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये बता करके आप जो है सो शिक्षा ऋण लेते हैं। शिक्षा ऋण मिलने के बाद फायदा क्या हुआ है कि जो कभी बेंगलोर और पुणे हब हुआ करता था हायर एडुकेशन का देश में, आज वो सिमट करके भुवनेश्वर चला आया है। आप रांची से, सिर्फ मैं रांची की बात करता हूँ, रांची से हजारों बच्चे जो है हायर एडुकेशन के लिए बगल के प्रदेश उड़ीसा में जाकर के भुवनेश्वर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह क्या है, वो पहले निकल नहीं पाते थे, ऐसा नहीं था कि शिक्षा के केंद्र नहीं थे या फिर उसको वहां पर जाने वाले हमारे बच्चे हुनरमंद नहीं थे या वो क्वालिफाइड नहीं थे, कारण होता था आर्थिक कारण। उस आर्थिक कारण को जब एक तरह से क्लियर कर दिया जाए, आर्थिक कारण को सुधार दिया जाए, तो जाहिर है कि वो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद फायदा क्या होगा, अब जैसे आप भी याद कीजिए कि हम लोग के टाइम में होता था ग्रेजुएशन करने वाले को, तो क्या है तो ग्रेजुएट कर गया मेरा बेटा
1: जी।
0: और आज क्या हो रहा है, इंजीनियर, इतने इंजीनियर हमारे पास हैं कि अगर उस इंजीनियर को के लिए अगर ये स्टार्टअप योजना नहीं आए तो शायद बेरोजगारों की सबसे बड़ी फौज इंजीनियरों की हो जाएगी देश के भीतर में
1: जी।
0: तो ये प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की जो सोच है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इससे आगे क्या होने वाला है, उसके लिए पहले से जो रास्ता तैयार कर दिया जाता है, ये हमारे देश के युवाओं के लिए एक ज्यादा फायदेमंद चीज हो रहा है और उसका लाभ भी युवाओं को मिल रहा है
1: जी। जी, और स्टार्टअप इंडिया की तरह ही एक और योजना लेकर आई गई है एससी एसटी कम्युनिटीज के लिए, खास करके स्टैंडअप इंडिया। और स्टैंडअप इंडिया से बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा उठाया है, और इसकी खासियत है कि बैंक लोन आपके एंटरप्राइज के लिए मिल जाएंगे 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की।
0: जो पारंपरिक हुनर जो लोगों के बीच में थी, उस हुनर को कैसे बाजार देना है, इस बाजार देने के लिए जो है सो सरकार ने इस तरह की योजना को लाया कि इसके तहत जो एससी एसटी कम्युनिटी के लोग जो हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैठ करके अपने हुनर को ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उसको उसके घर तक काम करने के लिए वहां तक पहुंच गया कि भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं
1: जी।
0: हम तुमको दे रहे हैं, तुमको रोड के किनारे बैठ करके नहीं वो काम करना, तुम अपने घर में तैयार करो, वहां पर एक बढ़िया सा ऑफिस बना करके। अब जाके देखिए पूनम जी, ग्रामीण झारखंड का मैं बताता हूं, कई जगहों पर है कि उसके अगर ऑफिस को आप गाँव के ऑफिस को देख लेंगे तो शहर के कई ऑफिस आपको फीके दिखाई देंगे उसके सामने में, इस योजना के तहत जो काम शुरू हुआ है।
1: उनको इसका लाभ इसलिए भी मिल रहा है कि उनके पास जगह की कमी नहीं है।
0: हाँ, बिल्कुल। जो प्रॉब्लम होता है शहरी क्षेत्रों में, शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि लैंड को लेकर के
1: जी, जी।
0: एक सामान्य नागरिक, सामान्य बच्चे जो पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे थे, उसको बोला जा रहा है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, तो ये फायदा तो मिल रहा है लोगों को। और अब मैं बताया कि जहां जहां आप देखिए झारखंड में, जैसे चाईबासा सरायकेला का एरिया लीजिए, वहां पर कुकुन की खेती होती थी, जो रेशम जिससे बनता है
1: कुकुन।
0: अब वहां पर क्या है कि पहले जो धागा तैयार करते थे उनको मिलता था डेली वेजेस वाला पैसा
1: जी,
0: कि 300 रुपये जो न्यूनतम मजदूरी है उसके हिसाब से न्यूनतम मजदूरी दे करके। अब उनको कहा जाता है नहीं, आप थोक में धागा तैयार करो, क्या लगेगा कॉस्टिंग, आपको बैंक तैयार है देने के लिए। तो ये जो थोड़ी थोड़ी मतलब चेंजिंग जो लाई गई है इन चीजों में, उसका फायदा सीधे तौर पर उस पेशा से जुड़े हुए लोगों को मिल रहा है। तो उसको इतना ईज कर दिया गया है लोगों के बीच में, और उसके पीछे ये सारी योजनाएं हैं
1: जो उत्पादन जो हो रहा
0: उत्पादन
1: है।
0: हो रहा है, बढ़ रहा है उसका
1: जी। और ये सारी योजनाएं तभी कारगर सिद्ध होंगी जब हमारे बच्चे पढ़ लिख सकेंगे और उनको पढ़ने की सुविधाएं दी जाएंगी। और इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना लाई गई, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीकर हैं उनके लिए। तो ललिता कुमारी जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि ये जो एजुकेशन का पर्सपेक्टिव है वो किसी देश के लिए कितना मायने रखता है।
2: पूनम जी, जैसा कि आपने कहा, एजुकेशन ये बेसिक पिलर जो हम कहें तो डेवलपमेंट के लिए ये है। और जब बच्चे एजुकेटेड हो जाते हैं तो उनको जो नॉलेज कैपेसिटी होता है, सोचने समझने का उनका जो शक्ति होता है, अपने भविष्य को वो कहाँ पे देखते हैं, कैसे वो अपने भविष्य को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। तो अगर बच्चे जहाँ पर एजुकेटेड हैं लोग, जैसे केरला था हमारा पहले, बहुत पहले की, वहाँ 100% लिटरेसी है, तो वहां का जो विकास का स्तर था वो बाकी राज्यों से काफी ऊंचा था। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं है जो हमारे विकास को और हमारे समाज के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। और अगर ये एजुकेशन जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है जैसा कि आपने कहा, और अभी तो जो एससी एसटी की बात बार बार आ रही है और वीकर सेक्शन की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो उनके लिए भी अभी जो स्टाइपेंड का जो सर ने भी पहले बताया, इस तरह की सारी सुविधाएं हैं, तो बच्चे बच्चे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो भी काफी तक हायर एजुकेशन ले रहे हैं और काफी उच्च स्तर पे वो अपना नौकरी भी कहीं कहीं पे हासिल कर रहे हैं। हमारे सरकारी क्षेत्र में तो नौकरी बहुत लिमिटेड है, लेकिन अभी प्राइवेट कंपनियां जो इतना हो गई है वहां भी लोग अगर अच्छे एजुकेटेड हैं वो उनका केवल एजुकेशन नहीं वो स्किल्ड है तो वो काफी ऊपर पोस्ट तक जा सकते हैं। तो एजुकेशन बहुत हद तक हमारे बच्चों को सोचने समझने का शक्ति और उनके विकास को, और अगर वो विकसित हुए तो हमारा देश अल्टीमेटली विकसित होगा, तो ये प्रभावित करता है एजुकेशन बच्चों।
0: पूनम जी एक थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था कि अभी 2011 का जो जनगणना था उसके हिसाब से 1000

0: पुरुष पर 947 की तकरीबन महिलाएं थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी हमारे देश में जो रेशियो है वो 1000 पुरुष पर 1013 या 15 महिलाएं हैं। और ये इस बात को बताता है कि किस तरह से एजुकेशन के कारण से हर क्षेत्र में, आप इसको छोटा चीज ना समझा जाए इस चीज को, कि एक समय था कि बेटियां बोझ हुआ करती थी, लेकिन ये सारी योजनाएं जो आई हैं, बेटियां बोझ नहीं होगी, बेटियां हुनरमंद होकर के अब बेटों से आगे निकल रही हैं
1: और अब वो सहारा बन रही,
0: अब सहारा बन रही है, अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का सहारा बन रही है। अब किसी भी संस्थान में जाइए, आप जाकर के देख लीजिए, रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो बच्चों से, लड़कों से अच्छा बेहतर रिजल्ट जो है सो लड़कियों का आता हुआ दिख रहा है। अभी 10th का, 12th का निकला CBSE का भी,
1: पिछले कुछ वर्षों से
0: आप देख लीजिए। तो ये हुआ कैसे? ये एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे सोसाइटी पर है। जॉब तो सेकेंडरी चीज है। पहले बेटियों को 10th हो गया 12th हो गया शादी कर दो, लेकिन अब उसके माता पिता चाहते हैं, अब तो मैं कितने पेरेंट्स को जानता हूँ जिसके पास सिर्फ एक बेटी है, वो दूसरा बच्चा भी नहीं कर रहे, एक बेटी को लेकर के वो खुश है। तो ये सोसाइटी में चेंजिंग एजुकेशन के माध्यम से हुआ है। और उस चेंजिंग पर जो है सो अगर सरकार की योजनाएं उसको लाभान्वित करती हैं, तो लक्ष्मी लाडली योजना जो शुरू की गई थी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो शुरू की गई, ये भी युवा से जुड़ा हुआ ही मामला है। तो इन सारी योजनाओं का भी लाभ हर क्षेत्र में, आप देखिए पूरे कैलकुलेशन को अगर आप देखेंगे ना, मैंने कहा 12 योजनाएं 12 वर्ष में जो मुझे याद आ रहा था, ऐसी योजनाएं हैं जो कि एक इतना मजबूत पिलर देश के युवाओं के लिए खड़ी कर देगा, जो 2047 का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री का, देश को विकसित भारत बनाने का, इन युवाओं के माध्यम से बनाने का, और उसके लिए जो योजनाएं चल रही है वो योजनाएं अगर सही मायने में जिस तरह से अब तक इम्प्लीमेंटेशन दिखाई दे रहा है उसका वो होता रहा, तो तय मान के चलिए कि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य 47 तक पहुंचने से पहले भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और हम यही कामना करते हैं।
2: हम इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, केवल एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं, बहुत सारे जगहों में जैसे माई भारत भी अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन आयोजित करते हैं। हम लोग 2025 और 26 में भी विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न तरह के जो करेंट टॉपिक्स है दिए जाते हैं। वो 2025 का भी एग्जाम्पल है, झारखंड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो तीन कैंडिडेट होते हैं वो नेशनल लेवल पे जाते हैं, तीनों लड़कियां ही थी। और 2026 में भी अभी वो लोग कल निकलेंगी दिल्ली के लिए, वो एक चतरा से हैं, एक प्रथम जो स्थान हासिल की है, द्वितीय स्थान हासिल की है वो रांची से हैं, और तृतीय स्थान रामगढ़ से। कल वो लोग जो हमारा नेशनल लेवल यूथ पार्लियामेंट होगा उसमें भाग लेने के लिए दिल्ली जा रही है, और 25 में भी और 26 में भी तीनों बच्चियां ही थी।
1: जी,
2: तो
1: जी,
2: ये कहीं ना कहीं ये हमारे ये वुमेन एम्पावरमेंट में भी काफी रोल अदा करता है, जो अगर हमारा एजुकेशन डेवलप हो।
1: जी जी, और बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा योजनाओं पर ही बात की, क्योंकि ये सब योजनाएं बहुत गहराई से युवाओं को पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट करती हैं। और इसके साथ ही आज की परिचर्चा हम समाप्त करना चाहेंगे। जैसा कि आप सुन रहे थे, आज की परिचर्चा में हमारे साथ शामिल थे श्रीमती ललिता कुमारी, राज्य निदेशक माय भारत, और श्री ज्ञान रंजन कुमार, संपादक रिपोर्टर पोस्ट रांची। ज्ञान रंजन जी, ललिता कुमारी जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत सारी बातें साझा की, बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय था युवा शक्ति। परिचर्चा में भाग ले रहे थे श्रीमती ललिता कुमारी, राज्य निदेशक माई भारत, और श्री ज्ञान रंजन कुमार, संपादक रिपोर्टर पोस्ट रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम केरकेट्टा।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि एनटीए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार धारकों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार करने के लिए झारखंड भर में आधार सेवा के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहा है। आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए UIDAI ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों से ही सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। गोड्डा पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 28 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना प्रभारी दिनेश कुमार महली ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चपरासी टोला में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान राहुल कुमार साह और विपिन सोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने भीषण गर्मी में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए बैटरी संचालित कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने प्रथम चरण में 6 ट्रैफिक जवानों को विशेष जैकेट प्रदान किए। SP ने बताया कि एक बार चार्ज होने पर यह जैकेट करीब 6 घंटे तक ठंडक प्रदान करती है और आगे सभी ट्रैफिक जवानों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम मानसून ने झारखंड के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। मानसून की वर्तमान स्थिति, इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं तथा राज्य में संभावित मौसम परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची द्वारा आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम प्रस्तुति प्रशांत गौरव की।

0: तो कहूंगी कि अगर हमारी खून का एक कतरा अगर किसी की जिंदगी बचा सकता है तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है।
1: राजदा, हमारे पास और भी अच्छे टॉपिक्स हैं, लेकिन उससे पहले हम सामीन को सुनवाते हैं मकाला शायरी झारखंड में कुदरत और तहजीब की अक्कासी। मकाला निगार है सदफ कायनात।
2: जंगलों की छाव नदियों का नगमा पहाड़ों की शान, जंगलों की छाव नदियों का नगमा पहाड़ों की शान, कुदरत ने जैसे सजा रखा हो अपना गुलिस्तान। झारखंड उर्दू जबान व अदब के अहम मराकज में शुमार किया जाता है। अगरचे झारखंड बतौर अलहदा रियासत 2000 को वजूद में आया, अलबत्ता झारखंड में उर्दू अदब की तारीख काफ़ी कदीम है। यहाँ उर्दू शायरी की बुनियाद बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। यहाँ के मुख्तलिफ इलाके खुसूसन रांची, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में उर्दू शायरी को तवानाई और फलने फूलने का मौका मिला। बिलाशुबा झारखंड अपने आप में दिलकशी और मकनातीसी कुवत समोए हुए है, जिसकी खूबसूरती सकाफत, रक्स और मौसीकी और त्योहार को उर्दू शोरा ने अपने कलाम का मौजू बनाया है। यहाँ के अहम शोरा की फहरिस्त में सिद्दीक मुजीबी, प्रकाश फिक्री, वहाब दानिश, अख्तर सईदी, परवेज रहमानी, अनवर इरज वगैरह शामिल हैं, जिन्होंने यहाँ की अदबी फिजा को इस कदर मुअत्तर किया कि उर्दू अदब के सफाए करतास पे शोराए उर्दू को ताउम्र के लिए रोशन कर दिया। प्रकाश फिक्री उर्दू शोरा की फहरिस्त में एक अहम नाम तस्लीम किए जाते हैं, जो उर्दू शायरी में आलमी सतह पर मशहूर भी हुए। इनके पैदाइश के मुतालिक जाबिर हुसैन सफर सितारा में 2 अगस्त 1931 और हसन निजामी ने झारखंड के जदीद गजल गो शोरा में 1929 दर्ज किया है। प्रकाश फिक्री का असल नाम जहीरुल हक और कलमी नाम प्रकाश फिक्री था। झारखंड की उर्दू शायरी में हमें सबसे ज्यादा फितरत की अक्कासी और फितरी शायरी प्रकाश फिक्री के यहाँ देखने को मिलती है। उनकी पैदाइश 1931 को अम्बाला और वफात 1908 को रांची में हुई। उनका असल नाम जहीरुल हक और कलमी नाम प्रकाश फिक्री था। इनके मायानास तसानीफ में सफर सितारा और एक जरा सी बारिश है। इनका शुमार जदीद शायरी के नुमाइंदा शोरा में किया जाता है। वो जदीदियत के मुनफरिद और सेहतमंद मजाज रखते हैं। प्रकाश फिक्री बुनियादी तौर पर गजल के शायर थे। उन्होंने पूरी खुलूस और ईमानदारी के साथ अपने शायरी का हक अदा किया। शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, पांव तले

0: ख्वाब में खोया लगता है, जिसने सबकी मैल सकाफत धोई अपने हाथों से, जिसने सबकी मैल सकाफत धोई अपने हाथों से, दरिया कितना उजला है वो शीशे जैसा लगता है। प्रकाश फिक्री के चंद अशार आप पेशे खिदमत है, जिसमें दरख्त और नदी के खूबसूरत मंजर को प्रकाश फिक्री ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। चांदी जैसी झिलमिल मछली, चांदी जैसी झिलमिल मछली पानी पिघले नीलम सा, चांदी जैसी झिलमिल मछली पानी पिघले नीलम सा, शाखें जिस पर झुकी हुई है दरिया बहता सरगम सा। इसी मौजू से मुताबिक सिद्दीक मुजीबी के यहाँ हमें बेहतरीन अशार देखने को मिलते हैं। सिद्दीक मुजीबी की पैदाइश 7 जुलाई 1931 और वफात 2014 को रांची के डोरंडा में हुई। उनका ताल्लुक गद्दी कबीले से था। इनके वालिद का नाम मोहम्मद मुजीब गद्दी और दादा का नाम अजमतुल्लाह गद्दी था। इनके दोस्तों में अख्तर पयामी, कलाम हैदरी, अनवर अजीम, शकीलुल रहमान, यूसुफ इमाम, वहीदुल हसन वगैरह शुमार किए जाते हैं। सिद्दीक मुजीबी को मुताले का बड़ा शौक था। उन्होंने कदीम और जदीद अदब का मुताला किया। रिसाला सफकुन जो जदीदियत का बेहतरीन और नामवर पर्चा शुमार किया जाता था, इसमें उनकी गजलें शाई हुआ करती थी। इनकी वाबस्तगी रांची यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू से भी रही। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उर्दू की बका के लिए वक्फ कर दी। सिद्दीक मुजीबी को रांची से काफी मोहब्बत थी। इनके अहम शेरी तसानीफ में शजर ममनुआ और पुलसरात से आगे है। जंगलों की छाओ में बसती है एक दुनिया नई, जंगलों की छाओ में बसती है एक दुनिया नई, मांडर की लय पे नाचती है जिंदगी झारखंड की। सरहुल की खुशबू से महकता है हर एक चमन, सरहुल की खुशबू से महकता है हर एक चमन, रंगों से भर गया है ये मौसम झारखंड का, जाने किस सहरा की जानिब उड़ गया है आबी परिंद, जाने किस सहरा की जानिब उड़ गया है आबी परिंद, जिसमें खून का समंदर सर पटक कर रह गया। एक शायरा अपने कलाम में झारखंड का जिक्र करते हुए फरमाती है, मुलाहिजा करें, हम है छोटा नागपुरी हमको इस पे नाज है, हम है छोटा नागपुरी हमको इस पे नाज है, इस निराली सरजमी का और ही अंदाज है, हम है छोटा नागपुरी हमको इस पे नाज है, इस निराली सरजमी का और ही अंदाज है, सनते हक की है ये सारी जमीन एक शाहकार, सनते हक की है ये सारी जमीन एक शाहकार, जर्रा जर्रा है यहाँ का दिल फरेबो पुर बहार, दौलतो सरवत में भी मुमताज है ये अर्जो पाक, लाखों रहबर सुरमा मतपून है यहाँ जेरो खाक, वो उछलती कूदती बलखाने वाली नदियाँ, वो उछलती कूदती बलखाने वाली नदियाँ, शंख कोयल सौन रेखा बह रही है जो यहाँ, खूबसूरत घाटियों का वो निराला सिलसिला, खूबसूरत घाटियों का वो निराला सिलसिला, जो बुलंदी में ये लगता है उफक से मिल गया, जिस तरफ देखो पहाड़ों के हुजूम बरगुबार, जिस तरफ देखो पहाड़ों के हुजूम वो बरगुबार, जिसके ऊपर रक्स करती और गुनगुनाती है बहार। असफर जमील झारखंड के नुमाइंदा मशहूर शोरा में शुमार किए जाते हैं। इनके कलाम में हमें दिल बर्दाश्तगी, तन्हाई, महरूमी और कर्ब जा बजा नजर आता है। इसके अलावा उन्होंने रोमानी और फितरी शायरी भी की, जिसकी बेहतरीन मिसाल इनकी एक नज्म झारखंड है। हर आदमी को तुझसे मोहब्बत है झारखंड, हर आदमी को तुझसे मोहब्बत है झारखंड, तू तो खुदा की दी हुई जन्नत है झारखंड, जो तेरे पास है वो खजाना कहीं नहीं, जो तेरे पास है वो खजाना कहीं नहीं, सारे जहां में तेरी इज्जत है झारखंड, झुटला सका ना तुझको कोई रहनुमा कभी, तेरा वजूद एक हकीकत है झारखंड, जो तेरे पास आया वो खाली नहीं गया, जो तेरे पास आया वो खाली नहीं गया, तू तो कोई फरिश्ता ए रहमत है झारखंड। अल मुख्तसर, झारखंड की उर्दू शायरी में यहाँ की सकाफत, फितरत, कबायली जिंदगी और हम आहंगी की खूबसूरत अक्कासी मिलती है। उर्दू शोरा ने जंगलों, पहाड़ों, आबशारों, कबायली जिंदगी को अपने कलाम का मौजू बनाकर झारखंड की मुनफरिद शनाख्त को अदबी शक्ल फ्राहम की है। मैं चंद अशार के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। शायर नामालूम है, सरहुल की मस्ती सोहराई की खुशियाँ हर सू, सरहुल की मस्ती सोहराई की खुशियाँ हर सू, इस धरती की तहजीब है मोहब्बत का जुनू, मांडर की लय करम की गीत और सरहुल की बहार, यही तो है मेरी धरती, यही तो है झारखंड का प्यार। शुक्रिया।
1: तो दोस्तों

0: तो अभी अभी आप सुन रहे थे मकाला, शायरी है झारखंड में कुदरत और तहजीब की अक्कासी। मकाला निगार थी सदफ कायनात। और इसी के साथ ही शगुफ्ता अब बात करते हैं एक ऐसे शख्सियत की जिनका नाम है गोप बंधु दास, जो कि एक शायर, अदीब और मुजाहिदे आजादी थे। सामईन, इतिहास के झरोखे से अगर हम उन अजीम शख्सियत को याद ना करें जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, तो हमारा अपना ये सफर अधूरा रहेगा। जून का ये महीना एक ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार से जुड़ा है।
1: गोप बंधु दास जी सिर्फ एक राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, वे एक बेमिसाल शायर, अदीब और मुजाहिदे आजादी थे। उड़ीसा के लोक जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका काफी अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने अपने लेखनी को आजादी का हथियार बनाया। गरीबों और बाढ़ पीड़ितों की खिदमत में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर दी। उनकी एक मशहूर कविता की पंक्ति आज भी रोंगटे खड़े कर देती है, जिसका भाव है, मेरा यह शरीर इस देश की मिट्टी में मिल जाए और देशवासी मेरे शरीर पर चलकर आजादी की राह पर आगे बढ़ेंगे। ऐसे महान और अदीब देशभक्त को आकाशवाणी के परिवार और हम तमाम सामेईन की ओर से शत शत नमन।
0: बहुत अच्छा लगता है शगुफ्ता जब हम ऐसे किसी शख्सियत के बारे में बातचीत करते हैं जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, हम इंस्पायर होते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का खासियत भी यही होता है शगुफ्ता कि हम हर बार ऐसे शख्सियत को याद करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जहनी सुकून और योग की।
1: राजदा, सही कहा आपने, जहनी सुकून और योग आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पास सबके लिए वक्त है। ऑफिस के लिए है, सोशल मीडिया के लिए है, दोस्तों के लिए है, लेकिन अगर किसी के लिए वक्त नहीं है तो वो है खुद के लिए। सुबह उठते ही सिरदर्द, दिन भर की थकान और रात को तनाव, क्या आपकी जिंदगी, रास्ता क्या आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो गई है? अगर हाँ तो क्यों?
0: बिल्कुल शगुफ्ता, आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत के लिए बिल्कुल भी सोचते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। और अक्सर लोग यही सोचते हैं कि योग का मतलब सिर्फ शरीर को तोड़ना, मरोड़ना या कठिन आसन करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग शब्द संस्कृत से यूज से बना है, जिसका सीधा मतलब है जुड़ना, अपने शरीर का अपने मन और आत्मा से जुड़ जाना ही योग है। जब हम सुबह खुली हवा में बैठकर गहरी सांस लेते हैं तो वो प्राणायाम है। जब आप अपने भटकते हुए मन को एक जगह टिकाते हैं तो वो ध्यान है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये विज्ञान मुफ्त में दिया है ताकि हम बीमार ना पड़े।
1: तो सामीन, एक्सरसाइज यानी कि योग किसी एक उम्र के लिए नहीं है, चाहे स्कूल जाता बच्चा हो, दफ्तर जाता युवा हो या घर के बुजुर्ग, योग तो सबके लिए है। आज की तारीख में जहां डायबिटिक, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां घर घर में पैर पसार रही हैं, वहां योग ही एक ढाल की तरह काम करता है। तो अपने रोजमर्रा में सिर्फ 15 से 20 मिनट ही अगर एक्सरसाइज करें तो हमारे तनाव छूमंतर हो जाएंगे और हमारे जिस्म में भी इम्यूनिटी यानी के रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात राजदा कि आपके चेहरे पर भी चमक आएगी और कोई महंगी क्रीम भी नहीं लगानी पड़ेगी।
0: बिल्कुल, ये बात तो सही है शगुफ्ता, जब हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है ना तो हमारे चेहरे पर चमक खुद ब खुद आ जाती है। तो फिर इंतजार किस बात का दोस्तों, आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही क्यों, चलिए आज से और अभी से ये संकल्प लें कि हम हर दिन योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, खुद भी हेल्दी रहेंगे और अपने परिवार को भी हेल्दी रखेंगे। योग को अपनाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। और वैसे भी कहते हैं ना कि योग करें, निरोग रहें, जीवन को खुशहाल करें, आज से ही अपनी सेहत का नया आगाज करें।
1: क्या बात है। और इसी आगाज के साथ मैं ये कहूंगी कि कुछ अगर नगमे का भी आप लुत्फ दे दें तो मजा आ जाएगा।
0: बिल्कुल, ये तो हमारे प्रोग्राम की खासियत है कि हम म्यूजिक बिना तो रह नहीं सकते और हमें पता है कि हमारे जो दोस्त हमें सुन रहे हैं उन्हें भी म्यूजिक का इंतजार होता है। तो चलिए शगुफ्ता, देर नहीं करते हैं और अपने दोस्तों को सुनाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और आपको अब बताते चलें आज रात तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे सांझ सरगम के अंतर्गत फिल्म संगीत। मुख्य समाचार 5 बजे 5:02 पर आप सुनेंगे युवाणी। चर्चा का विषय होगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और बचपन बचाएं बच्चों से प्यार करें। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 पर आप सुनेंगे हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोग। चर्चा का विषय कलम और स्कूल ना कि मजदूरी की धूल। प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 6:02 पर कार्यक्रम होगा खेती बारी। चर्चा का विषय खेतों का नियमित भ्रमण करें। प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की।

6:32 पर आप सुनेंगे हमारी दुनिया। चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। एक नागपुरी वार्ता है राष्ट्र की उन्नति युवाओं की चुनौती। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर राम कुमार और प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। 7:00 प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर आदिवासी अखड़ा आप सुनेंगे हो भाषा में। चर्चा का विषय जीवन में स्वच्छता अपनाएं स्वस्थ रहें और आयुष्मान योजना पर। प्रस्तुत करता होंगे प्रदीप कुमार। सात बजकर 45 मिनट पर प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सहिया। 8:00 फिल्म संगीत। 8:10 पर विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। 8:45 पर समाचार संध्या। 9:00 न्यूज एट नाइट। 9:15 पर उर्दू में समाचार। 9:30 पर करेंट अफेयर्स। रात्रि 10:00 आप आकाशवाणी रांची से सुनेंगे सुनहरी यादें। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सितार पर राग रागेश्वरी। गायक कलाकार होंगे चिरसत्य ठाकुर। 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम का समय खुद के साथ बिताने और सुकून के पल तलाशने का सबसे बेहतरीन मौका होता है। आप प्रकृति की गोद में एक कप चाय के साथ या अपनी पसंदीदा धुन सुनकर इन पलों को और भी खास और यादगार बना सकते हैं। स्वागत है आप सभी का सांझ सरगम में। कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ मीनाक्षी।

ये पहला गाना है साजन की बाहों में फिल्म से। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं का सांझ सरगम में। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। फिल्म है खुदगर्ज, संगीत राजेश रोशन का है, बोल है हिंदी वर्गीय।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में कसूर फिल्म का ये गाना था। नदीम श्रवण का संगीत और बोल थे समीर के। इसके साथ ही सांझ सरगम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम से मीनाक्षी को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि NTA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अवैध खनन के खिलाफ देर रात छापेमारी कर 3 ट्रेलर और 1 पोकलेन मशीन जब्त कराई। छतरपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में की गई इस कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय खनन गिरोह के सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है। मंत्री ने कहा कि अवैध खनन से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह पुलिस ने मधुबन थाना क्षेत्र के दलांचल करई गांव में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक भूमि विवाद और जादू टोना को लेकर चल रहा विवाद मुख्य कारण पाया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि सभी आरोपी मृतक के गोतिया पक्ष के हैं और हत्या की साजिश में शामिल थे। पलामू जिले में सोशल मीडिया पर देशी कट्टा के साथ स्टेटस लगाना एक युवक को महंगा पड़ गया। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सरसोत गांव निवासी 19 वर्षीय अभय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उसके निशानदेही पर 2 देशी हथियार बरामद किए हैं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरायकेला खरसावां जिले में पहली बार महिला खिलाड़ियों के लिए जिला स्तरीय फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने बताया कि 25वीं जिला फुटबॉल लीग 2026 का आयोजन 24 जून से 1 जुलाई तक खरसावां के अर्जुना स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: आप सुन रहे थे मुख्य समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब वक्त है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी का। आज कार्यक्रम में आपके साथ हैं आद्या शक्ति और समृद्धि।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आप सभी के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त समृद्धि
1: और मैं आद्या,
0: और हमारी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, आज है 12 जून और हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को ये समझाना कि बच्चे किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और उनका स्थान काम की जगह नहीं बल्कि स्कूल, खेल के मैदान और उनके सपनों की दुनिया में होता है।
1: लेकिन दोस्तों, आज भी हमारे समाज में हमारे आसपास कई ऐसे बच्चे हैं जो किताबों की जगह ईंट, बर्तन या औजार उठाने को मजबूर हैं। यह स्थिति न केवल दुखद है बल्कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम जब भी बाल श्रम का नाम सुनते हैं तो बहुत सी बातें कहते हैं, बाल मजदूरी बंद करो, बच्चों को स्कूल भेजो। लेकिन सच ये है कि जमीनी हकीकत इससे कहीं ज़्यादा कठिन और जटिल होती है। हर बच्चा जो काम कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि परिस्थितियों से मजबूर होकर काम कर रहा है।
1: बिल्कुल, हमारे समाज में कई ऐसे परिवार हैं जहां रोज की कमाई से ही घर चलता है। ऐसे में अगर माता पिता मजबूर हैं तो बच्चे भी छोटी उम्र में काम करने लगते हैं।
0: और ऐसे में ऐसे बच्चों को सिर्फ ये कह देना कि काम मत करो या स्कूल जाओ प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि खाना कहाँ से आएगा।
1: यही वजह है दोस्तों कि हमें समझना होगा कि बाल श्रम को पूरी तरह खत्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए सिर्फ भावनात्मक बातों से काम नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना होगा।
0: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हर काम करने वाला बच्चा एक जैसी स्थिति में नहीं होता है। कुछ बच्चे खतरनाक इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जैसे फैक्ट्रीज, माइंस या कंस्ट्रक्शन साइट्स। ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है।
1: तो समृद्धि, एक सामान्य नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं?
0: सबसे पहले हम जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए, और अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसके पीछे की मजबूरी को समझें। ऐसे बच्चों को पढ़ाई के लिए इंकरेज करें, जैसे किताबें देना, अगर ज़रूरत है तो पढ़ाई में कुछ हेल्प भी करना या फिर नियर बाई स्कूल्स के बारे में जानकारी देना।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ ही अगर हमें कहीं चाइल्ड अब्यूज या खतरनाक काम में लगे बच्चे दिखें तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें बल्कि रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज तक जानकारी पहुंचाएं।
0: आज के यूथ के पास सोशल मीडिया जैसी ताकत है। हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और छोटे छोटे एफर्ट से बदलाव भी ला सकते हैं।
1: बाल श्रम एक सच्चाई है जिसे केवल नारे लगाकर खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें सेंसिटिव और प्रैक्टिकल दोनों बनना होगा। हर बच्चे को बेहतर जीवन देना जरूरी है, लेकिन उसके लिए पहले उसकी स्थिति को समझना और सही तरीके से मदद करना और भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है जहाँ सपने होते हैं, मासूमियत होती है और सीखने की असीम क्षमता होती है। अगर यही बचपन काम और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाए तो अपने असली हक से इंसान वंचित रह जाता है।
1: दोस्तों, बच्चों को सच्चा प्यार करना यही है कि हम उन्हें खुलकर जीने, खेलने और सीखने का मौका दें ताकि वे अपने भविष्य को खुद संवार सकें।
0: बिल्कुल, पर दोस्तों यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, हमें बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाना है पर बेसिक लाइफ स्किल्स भी सिखाने हैं।
1: उन्हें उनके डेली रूटीन के छोटे मोटे काम तो जरूर आने चाहिए, जैसे खुद से ब्रश करना, खुद खाना खाना, खाना खाने के बाद अपनी प्लेट खुद उठाना, अपने सामान जैसे खिलौने, बुक्स, शूज को सही जगह पर रखना।
0: खुद को और अपने कमरे को या घर को अरेंज रखने जैसे काम भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये छोटी छोटी काम जो है उन्हें रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ज़रूरी हैं।
1: दोस्तों, हमें बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना बल्कि उन्हें सही तरीके से स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि उनका बचपन सेफ रहे और वो आगे बढ़ते रहें और भविष्य में वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें।
0: तो दोस्तों, चर्चा और भी करेंगे, पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं ये गीत।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों इतिहास में आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज ही के दिन इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो इस दिन को बहुत यादगार और स्पेशल बनाती हैं। बाल मजदूरी जैसे सामाजिक बुराई के खिलाफ दुनिया भर में जागरूकता फैलाने और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा साल 2002 में आज ही के दिन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर घोषित किया गया था।
4: साथ ही दोस्तों 2016 में भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने चीनी प्रतिद्वंदी को हराकर दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया था।
3: दोस्तों बात करते हैं अगर करंट अफेयर्स की, तो खेत बचाओ अभियान पूरे देश में 1 से 30 जून तक शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सस्टेनेबल फार्मिंग और सॉइल हेल्थ को बढ़ावा देना है।
4: इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया।
3: दोस्तों इसरो ने छात्रों के लिए भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन 2026 लॉन्च किया है। ये एक नेशनल इनोवेशन कंपटीशन है जो इंडिया के सारे यूजी पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स को स्पेस टेक्नोलॉजी, अर्थ ऑब्जर्वेशन और स्पेस साइंस से जुड़े रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए चैलेंज करती है।
4: इंडिया स्पेस कांग्रेस 2026 का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
3: भारत ने एंथ्रोपिक्स प्रोजेक्ट ग्लासविंग में भागीदारी की है, जिससे एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलेगी। भारत ग्लासविंग एंथ्रोपिक की एक साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। इसमें कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को एक एडवांस्ड एआई मॉडल जिसका नाम है क्लॉड माइथोस प्रीव्यू, इसका एक्सेस दिया जाता है ताकि वो साइबर थ्रेट से निपटने के बेहतर सॉल्यूशंस विकसित कर सकें।
4: दोस्तों हमारी बातें तो आपसे और भी होंगी, पर उससे पहले ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनते हैं एक और गीत।

0: दोस्तों, दुनिया रहस्यों और सरप्राइजेस से भरी हुई है। कई बार कुछ फैक्ट्स इतने अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग होते हैं कि उन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ ऐसे ही रैंडम और लेसर नोन फैक्ट्स जो आपको हैरान भी करेंगे और साथ ही साथ एंटरटेन भी।
0: काउज हैव बेस्ट फ्रेंड्स और उनसे अलग होने पर वो स्ट्रेस महसूस करती हैं। कितनी अजीब बात है ना आद्या, कि काउज जो है वो भी हमारी तरह फीलिंग्स रखती हैं और बेस्ट फ्रेंड्स बनाती हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, क्या आप जानते हैं गर्मियों में आईफिल टावर थोड़ा और लंबा हो जाता है क्योंकि हीट से मेटल फैलता है।
0: अच्छा दोस्तों, बनाना एक बेरी है और स्ट्रॉबेरी एक बेरी नहीं है। कितनी अजीब बात है, जिसके नाम में ही बेरी है वो स्ट्रॉबेरी नहीं है बट बनाना एक बेरी है।
1: दोस्तों, ऑक्टोपस अपने आर्म्स से टेस्ट कर सकते हैं।
0: वाह, क्वाला के फिंगरप्रिंट्स इंसानों से काफी मिलते जुलते होते हैं, तो केवल काउज ही नहीं, क्वालास भी हमारी तरह होते हैं।
1: बिल्कुल, साथ ही दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी नाक लगभग 50,000 डिफरेंट स्मेल्स पहचान सकती है।
0: और हनी जो है वो कभी भी खराब नहीं होती है।
1: दोस्तों, एक ऐसी जेलीफिश भी होती है जो इमॉर्टल होती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, ये जेलीफिश अपने सेल्स को वापस से बना सकती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि टेक्निकली वो इमॉर्टल है। सी ऑटर्स जो होते हैं वो सोते समय एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि वो पानी में बह ना जाएं।
1: वाह समृद्धि, क्या फैक्ट्स थे,
0: है ना, जितना

दुनिया के बारे में सीखते हैं, जानते हैं, उतना ही महसूस होता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट सुनकर आप हैरान तो हो ही गए होंगे, साथ ही आपको इंटरटेन करने के लिए लेते हैं एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, अब चलते चलते हम उस विषय की बात करेंगे जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, भागदौड़ भरी जिंदगी में खो ना जाए बचपन।
1: बिल्कुल सही कहा। आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो गई है। हर कोई अपने करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डेली कमिटमेंट्स में इतना व्यस्त हो गया है कि समय जैसे हाथों से फिसलता ही जा रहा है।
0: बिल्कुल, और इस भागदौड़ का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो है हमारे बच्चे। उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े और सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता का समय कम होता जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। आज कई बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक ही घर में रहते हुए भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। कभी पेरेंट्स ऑफिस के काम से व्यस्त होते हैं तो कभी मोबाइल फोन्स और स्क्रीन्स ने परिवार के बीच बातचीत को कम कर दिया है।
0: दोस्तों, एक समय था जब शाम होते ही बच्चे अपने माता पिता को दिन भर की बातें सुनाते थे। परिवार साथ बैठकर खाना खाता था, हंसता था, बातें करता था।
1: कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनका उद्देश्य भी सही होता है, लेकिन इसी कोशिश में कहीं ना कहीं पेरेंट्स इतने बिजी हो जाते हैं कि वे अपने बच्चों को प्रेजेंट उनका मिस कर देते हैं।
0: दोस्तों, बचपन बहुत छोटा होता है। आज जो बच्चा बैठकर आपसे बातें करना चाहता है, कुछ साल बाद वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा। हो सकता है कि आपको लगे छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बच्चों के लिए यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशियां होती हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, इसलिए पेरेंट्स स्टॉप डाइंग फॉर योर चिल्ड्रन एंड स्टार्ट लिविंग फॉर देम एंड विद देम।
0: दोस्तों, हमें बातें तो आपसे और भी करनी थी, पर अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी दोस्त आत्या
1: और समृद्धि को
0: को
1: दीजिए
0: दीजिए
1: इजाजत।
0: इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने कार्यक्रम श्रमिक लोक में। मैं हूं आपकी दोस्त रंजना और आज हमारे साथ हैं दीपा। दीपा, तुम्हें भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार रंजना, साथ ही सभी श्रमिक साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ खास जानकारियां और मनोरंजन। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय से। यह विषय अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संदेश है।
0: हाँ साथियों, कलम या स्कूल या मजदूरी की धूल, यह विषय बच्चों के भविष्य और शिक्षा से जुड़ा विषय है। हर बच्चे का अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करे और अपने सपनों को साकार करे, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी बहुत से बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं।
1: एक और कलम है जो ज्ञान, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है, और वहीं दूसरी ओर मजदूरी की धूल है जो बचपन के संघर्ष और मजबूरी की कहानी कहता है। जब किसी बच्चे के हाथ में कलम और किताब की जगह औजार आ जाते हैं, तब उसका बचपन खो जाता है। शिक्षा से दूर होने का असर उसके पूरे जीवन पर पड़ता है।
0: हाँ साथियों, इस बाल मजदूरी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही मध्याभोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और छात्रवृत्तियां जैसी योजनाओं के द्वारा बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सभी बच्चे को शिक्षा मिल सके, है ना?
1: बिल्कुल, शिक्षा पाना हर बच्चे का अधिकार है और इसलिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं देती, बल्कि सोचने समझने की शक्ति, आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन के अवसर भी प्रदान करती है। शिक्षा बच्चे को समाज के विकास में योगदान देने के योग्य बनाती है।
0: और साथियों, आज का शिक्षित बच्चा कल का जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनता है। इसीलिए यह समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित ना करें।

0: हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे के हाथ में कलम हो, न कि उसके सपनों पर मजदूरी की धूल जमी हो।
1: हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि समाज में हर बच्चे को शिक्षा का अवसर मिले, यही एक विकसित, शिक्षित और सशक्त भारत की पहचान होगी। शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करता है, इसलिए यह बच्चों के साथ साथ सभी के लिए जरूरी है। बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार उन्हें प्राप्त हो, इस विषय पर ही आज हम एक खास रेडियो वार्ता अभी सुनवाने जा रहे हैं, जिनकी वार्ताकार है आयुषी कुमारी सोनी।
2: बचपन जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण समय होता है। इसी अवस्था में बच्चा सपने देखना, सीखना और अपने भविष्य की नींव रखना शुरू करता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर करता है। यदि बच्चे शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे तो देश भी प्रगति करेगा। लेकिन जब बच्चे विद्यालय की जगह कारखानों, ढाबों, खेतों और दुकानों में मजदूरी करने लगते हैं, तब केवल उनका बचपन ही नहीं छिनता बल्कि समाज का भविष्य भी कमजोर हो जाता है। हर बच्चे का अधिकार शिक्षा ना कि श्रम केवल एक नारा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और मानवता का संदेश है। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, जबकि बाल श्रम उसके अधिकारों का हनन है। बाल श्रम बच्चों से उनका बचपन, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और सपने छीन लेता है। भारत जैसे विकासशील देश में बाल श्रम एक गंभीर समस्या है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे कारण बच्चों को मजदूरी करने के लिए मजबूर करते हैं। लाखों बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित है और कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। बाल श्रम का अर्थ बच्चों से ऐसी आयु में काम करवाना जब उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और मानसिक तथा शारीरिक विकास के अवसर मिलने चाहिए। जब कोई बच्चा मजदूरी करता है और उसका बचपन प्रभावित होता है, तब उसे बाल श्रम कहा जाता है। बाल श्रम कई रूपों में दिखाई देता है। छोटे बच्चे चाय की दुकानों, ढाबों, होटलों, कारखानों और घरों में काम करते दिखाई देते हैं। कई बच्चे निर्माण स्थलों, खेतों, खदानों और ईंट भट्टों में भी काम करते हैं। बाल श्रम का सबसे दुखद पक्ष यह है कि इसमें बच्चों का शोषण होता है। उनसे लंबे समय तक काम करवाया जाता है, कम मजदूरी दी जाती है और असुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे खेती और पशुपालन से जुड़े कार्यों में लगे रहते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में होटल और उद्योगों में बाल श्रमिक अधिक दिखाई देते हैं। बाल श्रम के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण गरीबी है। जब परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, तब वे बच्चों को काम पर भेज देते हैं। अशिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जिन परिवारों में माता पिता शिक्षित नहीं होते, वे शिक्षा के महत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाते। वे चाहते हैं कि बच्चे जल्दी कमाई करें। बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा भी बाल श्रम को बढ़ावा देता है। कई बार बीमारी, प्राकृतिक आपदा या परिवार के मुखिया की मृत्यु जैसी परिस्थितियां बच्चों को मजदूरी करने के लिए मजबूर कर देती है। सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। गरीब और कमजोर वर्गों के बच्चे अधिकतर बाल श्रम का शिकार होते हैं। शिक्षा व्यवस्था की कमियां भी इनके लिए जिम्मेदार है। विद्यालयों की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति और खराब शिक्षा व्यवस्था बच्चों को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ उद्योगों में सस्ते श्रमिक की मांग भी बाल श्रम को बढ़ावा देती है, क्योंकि बच्चे से कम मजदूरी में अधिक काम कराया जा सकता है। बाल श्रम बच्चों के जीवन पर गंभीर प्रभाव डालता है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बिना शिक्षा के उनका भविष्य सीमित हो जाता है और वे गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। बाल श्रम बच्चों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। कठिन कार्य और असुरक्षित वातावरण उनके शारीरिक विकास को रोक देते

0: देते हैं। धूल, धुआं और रसायनों के कारण वे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मानसिक रूप से भी बच्चे तनाव, भय और अपमान का सामना करते हैं। कई बच्चे अवसाद और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। बाल श्रम समाज और राष्ट्र के विकास को भी प्रभावित करता है। अशिक्षित बच्चे भविष्य में कुशल नागरिक नहीं बन पाते, जिससे देश की प्रगति प्रभावित होती है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने और सही गलत में अंतर करने की क्षमता प्रदान करती है। बच्चों के जीवन में शिक्षा का महत्व और भी अधिक होता है, क्योंकि बचपन ही भविष्य की नींव रखने का समय होता है। यदि बच्चों को उचित शिक्षा मिले तो वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति को अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्त कराती है। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति देती है। बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब बच्चे विद्यालय जाते हैं, तब वे मजदूरी और शोषण से दूर रहते हैं। शिक्षा उन्हें बेहतर भविष्य का मार्ग दिखाती है। शिक्षा गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने का सबसे प्रभावी साधन है। एक शिक्षित बच्चा भविष्य में अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकता है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। शिक्षा सामाजिक समानता स्थापित करने में भी सहायक होती है। समाज में मौजूद असमानताओं को कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। भारतीय संविधान बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम पर लगाना प्रतिबंधित है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 तक तथा इसके संशोधित प्रावधान बच्चों को श्रम से बचाने के लिए बनाए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं और अन्य सामाजिक योजनाएं भी बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करती है। बाल श्रम जैसी गंभीर समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सही ढंग से पालन भी आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी उद्योग, दुकान या व्यक्ति बच्चों से मजदूरी नहीं करवाए। बाल श्रम कराने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारना भी आवश्यक है। यदि परिवारों में को रोजगार और आर्थिक सहायता मिलेगी तो वे बच्चों को मजदूरी के लिए नहीं भेजेंगे। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना भी जरूरी है। प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे विद्यालय, प्रशिक्षित शिक्षक और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। समाज की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को यह समझना होगा कि बाल श्रम बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। यदि समाज बाल श्रम को स्वीकार करना बंद कर देगा तो यह समस्या कम हो सकती है। माता पिता को भी यह समझना होगा कि बच्चों की वास्तविक कमाई शिक्षा है, न कि मजदूरी। विद्यालय, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थाएं और मीडिया भी जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बाल श्रम केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि मानवता पर लगा हुआ एक गहरा घाव है। जब किसी बच्चे के हाथों में किताबों की जगह मजदूरी के औजार दिखाई देते हैं, तब केवल उनका बचपन ही नहीं छिनता, बल्कि समाज की संवेदनाएं भी घायल हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि बच्चे मजदूर नहीं, बल्कि राष्ट्र का भविष्य होते हैं। यदि उनका वर्तमान अंधकार में डूबा रहेगा तो देश का भविष्य भी उज्जवल नहीं हो सकता। शिक्षा ही वह प्रकाश है जो बच्चों के जीवन से अज्ञानता, भय और गरीबी का अंधकार दूर कर सकता है। एक शिक्षित बच्चा केवल अपना जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। किसी बच्चे से काम करवाना उनके अधिकार अधिकारों का हनन है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा मजदूरी के कारण अपना बचपन ना खोए। सरकार, समाज, परिवार, विद्यालय और प्रत्येक नागरिक को यह संकल्प लेना होगा कि बच्चों के हाथों में केवल किताबें होगी, औजार नहीं। अंततः कहा जा सकता है कि बच्चों का बचपन लौटाना ही सच्ची मानवता है। जब हर बच्चा विद्यालय जाएगा तो कोई मासूम मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं होगा। तभी हमारा समाज वास्तव में सभ्य और विकसित कहलाएगा। हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा और सुरक्षित बचपन मिलेगा। यही एक उज्जवल राष्ट्र की पहचान है।
1: साथियों, अभी आयुषी कुमारी सोनी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, हर बच्चे का अधिकार शिक्षा न कि श्रम। तो अब हम इसी विषय पर थोड़ी और भी आपको जानकारी देते हैं शिक्षा से संबंधित। देश की प्रगति में श्रमिकों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। उद्योग निर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्र, सभी जगह श्रमिक मेहनत से विकास की नींव मजबूत करते हैं।
2: इसलिए श्रमिकों का सशक्त होना जरूरी है और शिक्षा के द्वारा ही उन्हें उनके अधिकारों, कर्तव्यों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर सकते हैं। इसी दिशा में श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: हाँ साथियों, श्रमिकों का शिक्षित होना उनके कार्यस्थल से सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। शिक्षित श्रमिक सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं और सुरक्षा के तकनीकी पक्ष को बेहतर समझ सकते हैं। साथ ही शिक्षित श्रमिक अपने स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और परिवार के भविष्य के प्रति भी अधिक जागरूक होते हैं।
2: यह जागरूकता उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है। हम सभी को मिलकर ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पर हर श्रमिक शिक्षित हो, जागरूक हो और उसके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हो। और रंजना, जब से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है, लगातार हम अपने श्रमिक साथियों को जानकारी दे रहे हैं। तो क्यों ना अब कार्यक्रम का रुख मनोरंजन की ओर मोड़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और

0: खास, दो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम श्रमिक लोक में। और अभी कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर श्रमिक साथियों की बात करें तो, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की समस्याएं उनके साथ जुड़ी होती है। केवल श्रमिकों की ही क्यों, सभी के साथ स्वास्थ्य समस्याएं जुड़ी होती है। और आज के समय में इलाज कराना काफी
2: महंगा हो गया है।
1: ऐसे में आयुष्मान भारत योजना कैसे इस पे हमारी मदद कर सकता है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे।
2: पहले हम दीपा अपने साथियों से कहते हैं ना कि सीधे तौर पर जो हमारी जिंदगी से, हमारे अपनों की मुस्कान से जुड़ा है हमारा स्वास्थ्य। और एक पुरानी कहावत भी तो आपने सुना ही होगा, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन जरा सोचिए, जब शरीर निरोगी ना रहे और इलाज का खर्च पहाड़ जैसा लगने लगे तो क्या होता है। एक आदमी की जिंदगी भर की पूंजी जो होती है, जमा पूंजी, वो पल भर में खत्म हो जाती है। बीमारी से तो इंसान बाद में टूटता है, पहले तो वो अस्पताल के बिल देखकर ही हार मान लेता है अपने आप को।
1: बिल्कुल रंजना, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, यह योजना देश के करोड़ों आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इस योजना का मूल मंत्र बस एक ही है, पैसे की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति का इलाज रुकना नहीं चाहिए।
2: तो आइए साथियों, हम आपको बताते हैं इस योजना के बारे में, आप इसका कैसे लाभ ले सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर पात्र के परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ कवर दिया जाता है, जो बिल्कुल भी मुफ्त है। ये सरकारी या सरकार के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज यहाँ पर होता है।
1: और आगे हम इस जानकारी को बढ़ाते हैं कि इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए बनता है आयुष्मान कार्ड। आज के डिजिटल दौर में इसे बनवाना भी बहुत आसान हो गया है।
2: और यानी तो साथियों, आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र या सरकारी अस्पताल के आयुष्मान मित्र काउंटर पर जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने स्मार्टफोन में आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके खुद भी घर बैठे अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं और कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
1: इस योजना के तहत कैंसर, दिल की बीमारियां, किडनी की परेशानी जैसी हजारों गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है। और हाँ, यह योजना पूरी तरह से पोर्टेबल है, यानी अगर आप भारत में कहीं भी रह रहे हैं तो आप वहां के किसी लिस्टेड अस्पताल में इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सभी अस्पताल इस योजना से जुड़े नहीं हैं, कुछ अस्पतालों को विशेष तौर पर इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। इन अस्पतालों में इस आयुष्मान कार्ड के द्वारा आप इलाज करा सकते हैं और आपका इलाज पूरी तरह कैशलेस होगा, यानी कि उसकी जो भी बिल होगा वो सरकार उसका भुगतान करेगी।
2: हाँ साथियों, और इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सरकार के टोल फ्री नंबर 1414

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। यह परीक्षा 14 जून को रांची के 5 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। रांची में आज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ रबी फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर बैठक की। सीएससीपी के अध्यक्ष ए गणेश कुमार ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है और रबी मौसम में तेलहन फसलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि 15 से 24 जून तक विशेष नामांकन अभियान चलाकर 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। गुमला नगर भवन में आज पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025 पर एक दिवसीय जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि पेसा नियमावली पूरी तरह लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य परंपरागत ग्राम सभा तथा पंचायती राज स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: आप सुन रहे थे मुख्य समाचार।

0: हमर बटले भी बहुत बहुत स्वागत है, जोहार है रुरुमनकर। झालेश्वरी बहिन बताए दो कैसन हाल समाचार।
1: सब नगदे नगद है दादा, रौरे बताओ।
0: एकदम हमरो बटे बहुत बढ़िया है, लेकिन तनी एखन बरखा पानी कर कमी कर चलते बहुत जोर जून गर्मी लागत
1: हाँ, वो तो तनी मनी आते रहे, लेकिन इतना बढ़िया जल तनी मनी आवल से कही देखो नी, तनी एकन रोद से केल की थी गरम छुटेल कहू।
0: तनी मनी पानी आवल से और गप गपी भेज
1: हो
0: ना।
1: हाँ,
0: आज दिन भर बहुत जोर गर्मी लाई है, लेकिन देखो आसरा करेला कि जल्दी से मानसून आ जाए ताकि खेती बाड़ी के तैयारी शुरू कर दो हमरे मन।
1: हाँ,
0: लेकिन अब तो बहुत किसान मन तो गर्मा खेती कर चुक है और जे आवे वाला बरसात कर खेती है से कर तैयारी भी लागल है।
1: हमें मन हो देख, हमर बटे करें नहीं दादा कि बुना हो बुन दिल, सब खेत में रोपा नहीं रख सकिल नहीं,
0: हाँ तो
1: से
0: बुना कर
1: चलते
0: दो है ना,
1: बुना बुन दिल
0: तो
1: नहीं।
0: बढ़िया है एकदम, एक नंबर है। पहले कर आदमी मत बुनाई करत रहे
1: हो तो है लेखे बुना बुन देली, तनी मनी तीन सालन लगे लेली, यह तनी मनी पानी अलग से है तो
0: कल रहे कि नहीं रोड बटे है। कल तो बहुत जोर
1: काल
0: हवा
1: तो
0: धुका
1: ना
0: रहे
1: कहू
0: हैं।
1: दादा, एकदम हवा धुका हो रहे, पानियों एकदम अलग
0: तब तो
1: दर...
0: बढ़िया है,
1: हाँ
0: तनी
1: हाँ
0: हर जोतेक
1: आवत
0: मन
1: है।
0: ले।
1: हाँ
0: हाँ, और
1: हर
0: देखो बीच बीच में नहीं अपन खेत बारी में जरूर घूमे के चाहिए ताकि पता लागे लानी कि कैसन रोड बरियार है,
1: बढ़िया रह के
0: हर जोते के नियर बोइन है कि नहीं बोइन है। अब रोड मोटियाए रह खेत में जाबे नहीं करब तो कहाँ से पता लगी। नहीं
1: हाँ, ना कहू कि अब हमने तो आदत हो जाए है कि अंधारे उठमो यूमन सबसे पहले हुने जाबे दैने डाले बुलत रहबे
0: हाँ नहीं वादित में
1: तो
0: है नहीं। देखो हमरे
1: हाँ
0: मन का करे ला कि शहर में हमरे मन नहीं मैदान में जाई ला
1: हाँ
0: बिहाने बिहान मॉर्निंग वॉक कहे ना नहीं
1: कहे
0: ओके
1: ले हाँ
0: बिहाने बिहान घूमे के लगिन हमरे मन जाई ला। लेकिन पहले कर आदमी मन नहीं घूमे भी काम हो जाते रहे, घूमे कर भी काम और संगे
1: हाँ
0: संगे खेत बाड़ी के भी देख के आए जाते हैं। और का
1: हाँ
0: कहे ना नहीं कि देखो खेती बाड़ी भी एक ठो छुआ नियर होवेला,
1: हाँ
0: छुआ के
1: एगो
0: बीच बीच में हमरे मन देखते रहिला, दुलार करीला, प्यार करीला है नहीं, सहलाते रहिला, उसने हमरे घर खेती बाड़ी भी है। अगर
1: हाँ
0: बीच बीच में नहीं जाबनी तो हहेर जाबन।
1: सही कहा थी दादा। और देखो नहीं तो हमरे मन अगर बुने तो बुन देव, चाहे कोनवे रोप डोप देव, कने का हथे का नहीं वो तो पता नहीं चले नहीं, नगद कहा थी कि बुले चाहिए देखे चाहिए कि अगर उ के हिलैयो झाके के देखब कि कहीं दिया तो नहीं खाई है कि का हथे कोनो रोग बीमार तो नहीं धरी रहे,
0: सही
1: सेहो
0: कहा
1: पता
0: थी।
1: चली
0: अब
1: से
0: एखन का
1: ले।
0: होला नी कि गर्मी कर दिन में नी भूड़ू
1: हाँ
0: मूसा उठेला हो नी। अब वो
1: हाँ
0: मूसा इतना बदमाश कि गोटा जे आयर के नी छेछरा कर देवेला कोयल के है नी। अब
1: हाँ
0: अगर मान लो रोरे एकदम से इत्मीनान घर में बैठल ही, अब
1: हाँ
0: बरसात कर दिन कर आसरा करती ताकि हमार रोपा डोभा कर तैयारी करब, अब अचके रोरे खेत पहुँचब तो देखब रो रायरे नखे
1: आयरे नखे में
0: सबके
1: देखो
0: भूड़ो
1: इनके
0: भूड़ो जे मूसा है से बर्बाद कर दे है रो रायर के। तो घरे मोटियाए के रहे नखे,
1: हाँ
0: खेत
1: हाँ
0: बटे जाब तब तो जानब।
1: हाँ कने पानी डीलत है कने नहीं, कने कर बेस है नहीं, सौगरे तो देखे पड़े
0: हाँ
1: दादा।
0: वही बात है। अब पानी अचके अलग और उरे
1: हाँ
0: रोपा कर तैयारी करब, बीड़ा कर तैयारी करब, पानी रही तो रो खेत में तब नहीं।
1: हाँ
0: अब
1: हाँ
0: रो जितना आई रहे सब बर्बाद होल है, तो पहले से जाए के देखब हमरे मन भूले कर आदत राखब तो पहले से आई कर तैयारी करब ताकि पानी कम से कम खेत में जमा हुई तो बढ़िया समय में रोरे रोपा डोभा कर तैयारी कर सकीला।
1: हाँ जैसे पानी गिरी और जल्दी फल्दी सब खेती बाड़ी कर तैयारी हो जाए
0: हाँ
1: तो आगे से। हाँ वो तो जानबे करे थी गांव घर में, जैसन तनी मनी पानी आवे और चला मन फेंके मन छिरिया ये तो पहले
0: हाँ
1: से
0: वही
1: तैयारी कर
0: तैयारी
1: ले
0: कर
1: दादा
0: और बेस लागेला।
1: तो।
0: देखो बिहान
1: हाँ
0: बिहान उठ
1: सब
0: के खेत बटे जाब नी
1: वो एगो
0: तो
1: कसरत हो जाए।
0: कसरत भी जाएला और हरियरी के देख के मन भी
1: मन भी
0: हरियर भी
1: हरियर।
0: जाएला नी,
1: हाँ
0: आ शुद्ध हवा
1: तो
0: मिलेला बहुत बढ़िया। हमरे मन तो जाइला शहर में खोजे ले कि कौन
1: हाँ
0: ठीना शांत वातावरण मिली, कौन ठीना हवा धुका बेस भेटाई। तो सब
1: हाँ
0: हमरे मन बिहाने उठ के चल जाइला मोराबादी मैदान, हुआ मुरुख घुमाई घूमी ला
1: अच्छा
0: हमरे मन। तो भाई हमरे कर तो गांव अपने साफ
1: गाँव
0: निरंग, साफ हवा
1: हाँ
0: चलेला और चारों पखारी हरियरी है, तो ऊपर से बढ़िया और का हो
1: और का
0: सकेला।
1: हो
0: तो
1: सकेलो है
0: खेती
1: तो
0: हर मन के कहब भाई कि बिहाने उठो झटे और खेती
1: अच्छा
0: बाड़ी के देखते रहो, बीच बीच में
1: हाँ
0: छुआ
1: हाँ
0: नियर उकर देखभाल हमरे मन के करना है,
1: करे
0: तब जाए
1: के
0: के खेती भी हमरे कर बढ़िया होवे। और देखो सबसे बड़ पूंजी हमरे मन कर देश कर अगर कोई है नहीं तो खेती बाड़ी
1: खेती
0: है।
1: बारी से है।
0: खेती
1: हाँ
0: बाड़ी अगर किसान करत है तो हमरे कर पेट भरत है नहीं।
1: हाँ हाँ
0: अगर किसान मन कैच देवे तो सोचू कि क्या का नियर हमरे कर
1: कान
0: पेट भरी नहीं,
1: बहुत मुश्किल है जी दादा
0: सब
1: तो।
0: काम हो सकेला।
1: हाँ
0: क्या वो खेती
1: खेती
0: बाड़ी
1: बारी से
0: अगर किसान कैच दे नहीं तो समझो कि बड़ा मुश्किल हो जाए।
1: हाँ हाँ
0: हाँ तो खेती बाड़ी करूँ भाई, जमीन के खेती करूँ, और बीच बीच में खेती बाड़ी के घूम घूम के देखते रहूँ। झालेश्वरी रोड के भी कहत थी, रोड़े भी
1: हाँ
0: बहुत जोर
1: दादा
0: खेती बाड़ी
1: हाँ
0: करीला है। और अच्छा लगे ला खेती बाड़ी में नहीं?
1: हाँ
0: और एखन कोनो कोनो लगाए के मन है का?
1: हाँ जिन लगाए का है वो देखो आधा के तो खुल इसने देखे नहीं सकली हर बोदी मन के खाई दी है छेगरी
0: तो
1: मन के
0: बिहाने बिहान जाबे नहीं करीला, घूमबे नहीं करीले तो खाबे जून करी।
1: नहीं बिहान का हो किसान बिहाने पर बुल्ले नहीं नहीं हुई दादा ये दिन तक चरवाही नहीं हुई है नहीं
0: हाँ हेला छोड़ दे
1: खाई
0: हैं। हाँ
1: हाँ
0: ठीक है कहा थी, घोर
1: तो
0: ना मन घोर के राखू तब ठीक रही।
1: हो
0: हाँ
1: घर आ है लेकिन जानबे करत ही छोट छोट जेत कने जाने से घुस जाए
0: घुस जाए ना।
1: हाँ
0: हाँ ठीक है कहा थी। तो झालेश्वरी देखो बोलते बतियाते हमरे मन रहब, लेकिन कार्यक्रम कर और करे के चाहिए।
1: हाँ करेक
0: हाँ
1: चाहिए
0: तो नागपुरी
1: तो
0: लोकगीत हमरे मन सुनब।
1: अच्छा चलो सुनीला जेके गई हैं देवदास विश्वकर्मा और संगीवन।

0: गछ लगाओ, गछ बचाओ।
1: खेती बाड़ी सुनो या सब भाई बहन मन के झलेश्वरी बहन बटले जोहार। और अरविंद दादा और के हो जोहार।
0: जोहार जोहार झालेश्वरी बहन। और कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: झारेश्वरी देखो, हमरे मन गर्मी से तो परेशान रहबे करेला, लेकिन अपन हमरे बात की नहीं, एक दूसर से बताए कि हमरे मन मन हल्का कर लेला, चाहे बाचे के उपाय हमरे मन कर लेला, लेकिन हमरे मन साथे साथे माल मवेशी में मन भी रहे ना हमरे कर।
5: हाँ,
4: जितना भी जानवर है, गाय गरु छगरी मन, लेकिन उमन बोले के नहीं पा रहे ना, तो मन कर जे दिक्कत हुआ थे उमन के, उके हमरे मन के बुझे के चाहिए।
5: हाँ, हाँ।
4: और उपाय अंतर हमरे मन के करे के चाहिए। देखो कि गर्मी से बहुत गाय मन दूध तनी सन कम देवे के शुरू हो जाए ना,
5: कहे कि उमन खाना पीना चाहे कोने करे न दे रौदेर में तनी सब खाए त परेशानी होला,
4: बीच बीच में उनके नहुआ के भी पड़ेला।
5: हाँ,
4: है नहीं?
5: हाँ, हाँ।
4: तो इस सब बात के बुझना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी मवेशी पालक किसान है तो हाँ। मन के बगरा ही सब के ध्यान रखे है कि गर्मी कर दिन में कैसे हमरे मन के अपन पशुधन के।
5: हाँ, हाँ। और कोनो बर बीमार होते तो जल्दी से उके दिखाए के।
4: तो पिए खाए के बहुत बार तो किसान मन देखब नी।
5: हाँ, हाँ।
4: कर घर में गाय मन रहे ना, कहे धाव हो कि हमें भुलाई जाइला पानी कखन पी है नी पी है। अब हाँ। सोचू कि बेरा मौका में अगर उरे गाय के पानी नहीं पिया थे तो का दशा हुई
5: वो है नी। जाना थी दादा।

0: आधा थे ली मन बाहर कर पानी नहीं पीबे,
1: ना
0: घरे आई के
1: एकदम।
0: एकदम मन खोजे और निकलबे नहीं कर पाए घर से।
1: हाँ तो ये सब जानकारी बहुत जरूरी है। तो कैसन करी ला कि चलो हमरे मन अखन जे बरसात आवे से पहले तक जे किसान मन के दिक्कत हुआ थे, गर्मी से परेशान है, तो वो मौसम में पशु मन का रोग प्रतिरोधक क्षमता की कैसे मन बढ़ा सके, नहीं कर बारे में जानकारी कर ले बेस रही।
0: हाँ, बेस रहे तो जानकारी देवत हैं डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, और उनकर से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुधन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है, तपती गर्मी न केवल इंसानों बल्कि हमारे पशुओं के लिए भी बड़ी मुसीबत लेकर आती है। बढ़ता तापमान पशुओं के स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और सबसे महत्वपूर्ण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। इम्यूनिटी कमजोर होने से पशु जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो आखिर इस लू और भीषण गर्मी के मौसम में हम अपने पशुओं को अंदर से मजबूत कैसे रखें, उनका खान पान और प्रबंधन कैसा हो, इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, सहायक प्राध्यापक पशु पोषण विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर दिनेश जी आपको नमस्कार है।
3: नमस्कार किसान भाइयों, जोहार।
2: आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि स्वस्थ पशु और बीमार पशु में क्या अंतर है।
3: जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं कि आदमी के केस में भी या पशु के केस में, जब तक आप उसके लक्षण के बारे में नहीं आप जानिएगा तब तक आप अंतर नहीं कर सकते हैं कि पशु स्वस्थ है या बीमार है। तो स्वस्थ पशु का मुख्यतः निशानी है कि उनका आँख जो है चमकता है, उसके बाद जो है समान तौर पे भूख लगती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य रहता है। जैसे कि गाय और भैंस के केस में 101 से 102 फ़ारेनहाइट होता है, और बकरी और छोटे पशु के केस में 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद उसका जो त्वचा का जो कलर है वो एकदम चमकीला होता है। फिर नियमित रूप से जो है पशु जुगाली करती है, और समान श्वास और नाड़ी जो है चलती है। इसके साथ साथ जो है मल और मूत्र जो है समान निकलता है और सक्रिय व्यवहार करते हैं, और
2: जी
3: दूध का भी जो उत्पादन जो है अच्छा रहता है। यदि दूध का गिरावट जल्दी हो, अचानक हो जाए, तो इससे पता चलता है कि वो पशु बीमार है। और नाक जो होता है मजल, जिसको बोलते हैं काला कलर का, उस पे जो है मॉइस्चर लगा रहता है, फफूंद रहता है। तो इसी लक्षण से आप पता कर सकते हैं कि पशु स्वच्छ है या बीमार है। यदि इसमें नॉर्मल से कुछ हटके होता है तो वो बीमार है।
2: जी तो गर्मी के मौसम में पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम हो जाती है?
3: जैसा कि आप जानते हैं गर्मी के मौसम में टेम्परेचर जो है वातावरण का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 40 से 45 डिग्री हो जाता है। धूप अत्यधिक होती है, लू लग जाती है, पानी की कमी होती है, और पोषण के असंतुलन के कारण पशु जो है जितना खाना चाहिए वो खा नहीं पाती है। तो कम खाने के कारण जो है पसीना भी निकलता है, जिसके कारण मिनरल का जो है लॉस हो जाता है, और उसके कारण जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है पशु का कम हो जाता है।
2: जी तो इस मौसम में पशुओं को किस प्रकार का संतुलित आहार देना अच्छा रहेगा?
3: हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में बहुत सारे फसलों की खेती होती है, हरे चारा जो है प्रमुख रूप से देना चाहिए, जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि लूसर्न हो गया, बरसीम हो गया, ज्वार हो गया, नैपियर हो गया। इसके साथ साथ आप मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, विटामिन दे सकते हैं, ताकि बॉडी में पानी की लेवल जो है मात्रा बनी रहे, और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लॉस होता है वो भी पूरा होते रहे। तभी जो है पशु का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ता है। और साथ ही साथ सूखा घास या बासी घास जो है नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पशु का हजमा जो है डिस्टर्ब हो सकता है, खराब हो सकता है।
2: जी तो गर्मी के दिनों में तो पशु हो या मनुष्य हो, पानी की तो जरूरत होती है, तो पशुओं को गर्मी में पानी कितना देना चाहिए?
3: हाँ, पशु को हमेशा गर्मी के मौसम में स्वच्छ जल जो है देना चाहिए हमेशा। और जैसा जानते हैं कि अब दूध में जो है 90 से 92% पानी होती है, तो पशुओं को, जो दुधारू पशु को, केवल एक लीटर दूध बनाने के लिए 400 से 500 लीटर जो है खून का जो है सर्कुलेशन होता है उसके ऑर्डर से। तो स्वच्छ पशु को जो है मिनिमम 50 से 80 लीटर जो है पानी देना चाहिए गर्मी के मौसम में, और ताकि डिहाइड्रेशन को भी बचा सके और दूध उत्पादन की भी कमी नहीं हो सके।
2: जी जी, तो गर्मी से बचाव के लिए पशुशाला कैसी होनी चाहिए?
3: हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पशुशाला जितना आपका छायादार हो या हवादार हो तो इससे जो है धूप और लू से जो है बचाव होता है, और धूप और लू से बचाने के कारण आप टाट लगा सकते हैं ऊपर में, या फुसका दे सकते हैं, या फिर उजला पेंट कर सकते हैं जिससे कि अंदर का तापमान जो है कम हो जाता है। और इसके साथ साथ पशुशाला में ज़्यादा गर्मी हो तो आप पंखे भी लगा सकते हैं, या कूलर लगा सकते हैं, या फोगर लगा सकते हैं। भैंस हो तो उसको जो है नदी में या पोखर में जो छोड़ सकते हैं आप तैरने के लिए। तो इस तरह से जो है उसका हम बॉडी का टेम्परेचर भी कम कर सकते हैं, और पशुशाला जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि इसमें कोई भी आपका मक्खी या परजीवी का जो है उत्पादन नहीं हो।
2: जी डॉक्टर साहब, अब बात आती है मिनरल मिक्सचर की, तो मिनरल मिक्सचर और विटामिन जो है गर्मी में क्यों जरूरी है?
3: हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिनरल और विटामिन की जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है।
2: जी,
3: तो मिनरल्स विटामिन गर्मी में ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि पसीना चलती है उसके कारण मिनरल का लॉस हो जाता है, इसलिए मिनरल देना जरूरी है ताकि जो कमी है उसको पूरा कर सके, और दूध में जो भी कैल्शियम सिक्रेशन होता है उसको भी पूरा कर सके, और आपके बॉडी के सभी कार्य को जो है सुचारू रूप से चला सके। तो इसलिए अत्यधिक आवश्यक है कि आप मिनरल जो है यूज करें गर्मी में, साथ साथ हरा चारा और दाना के साथ में।
2: जी, हम लोग अभी जो रोग की बात कर रहे हैं, तो गर्मी में कौन कौन से रोग अधिक होते हैं पशुओं में?
3: सामान्यतः पशु में गर्मी में गलघोटू बीमारी, उसका लंगरा बुखार, थनैला रोग, उसके बाद खुरपका मुंहपका रोग और परजीवी बीमारी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और नमी भी मात्रा ज़्यादा रहती है वायुमंडल में, जिसके कारण मक्खी और मच्छरों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसके कारण संक्रामक रोग भी जो है साथ साथ बढ़ जाते हैं। इसलिए समय पे जो है पशुशाला को साफ सुथरा रखें और टीकाकरण करवाएं, उससे जो है बचा जा सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जा सकता है।
2: जी, अभी आपने बात की टीकाकरण की, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण की क्या भूमिका है?
3: हाँ, टीकाकरण की क्या महत्व है, इससे कि जैसे आप टीका लगाते हैं तो टीका लगाने के बाद जो है बॉडी में एंटीबॉडी बनता है, जो हम एंटीजन डालते हैं, उसके कारण जो है धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, और जब स्ट्रेस होता है तो उस समय में लड़ने की जो कैपेसिटी है पशुओं में वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम पशुपालक मित्र जो है लंगड़ा बुखार और गलघोटू, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बारिश से पहले या गर्मी से पहले जरूर लगा लेना चाहिए, फरवरी मार्च हो अप्रैल हो लगा लेना चाहिए, इसके बाद जो है बरसात के बाद भी जो है इसका टीका लगाना चाहिए ताकि सालों भर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बनी रहती है।
2: जी, तो अभी आपने टीकाकरण की बात की, तो क्या साफ सफाई का रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी संबंध है?
3: जी हाँ, साफ सफाई आपका पशुशाला जितना अच्छा रहेगा वहाँ मक्खियाँ या परजीवी का जो है पनपना जो है बहुत कम होता है, बैक्टीरिया वायरस हो गया वो कम पनपता है। यदि आपका पशुशाला साफ नहीं है तो वहाँ पे जो है मौका मिलता है कि मक्खियाँ परजीवी बैक्टीरिया ये सब पनपने का, जिसके कारण आपका जो है संक्रमित बीमारी के जो है चांसेस जो है बढ़ जाता है। इसलिए नियमित रूप से सफाई होना चाहिए, पशुशाला सूखा रहना चाहिए, बिछावन सब गीला नहीं होना चाहिए, गोबर का उचित जो है प्रबंधन करना चाहिए जिससे कि आपका मक्खी और मच्छर का जो है उत्पादन कम हो सके।
2: जी, तो बात बराबर आती है हीट स्ट्रेस की पशुओं में, तो गर्मी में पशुओं में हीट स्ट्रेस के लक्षण क्या है?
3: हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जब अत्यधिक टेम्परेचर होता है वायुमंडल का तो पशु में तेजी से सांस स्टार्ट हो जाता है, साथ साथ जो है पशु जो है बार बार पानी पीती है, उसके बाद पशु जो है मुंह खोल करके सांस लेती है, खाना कम खाती है, फिर उसके साथ साथ दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है, जिसको हम हीट स्ट्रोक का लक्षण कहते हैं।
2: जी,
3: ऐसे पशुओं में तुरंत जो है पशु को छायादार में बांधे, ठंडा पानी उसको पिलाए, साथ साथ जो है उसको हरा चारा और खाने के लिए दे, सूखा चारा उस समय में कम दे खाने के लिए, क्योंकि हरा चारा में अत्यधिक पानी होता है। और हो सके
1: बड़ा नगद जानकारी कि गर्मी कर मौसम में पशु मन कर रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब कि जे हमरे मन इम्यून सिस्टम जे के हमरे मन कहिला, नहीं कि रोग से लड़े कर जे क्षमता है से के कैसे हमरे मन बढ़ाए सकीला, सेकर बारे में बढ़िया जानकारी दिले हमरे के।
0: जानकारी दिले डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह और उनकर से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण जीवन पौराणिक। तो दादा अकेले संगे तो आप खेती बाड़ी कर तो बेरासी रात है, आप और करीला हमारी दुनिया और
1: युवा सब,
0: युवा सब
1: एकदम बहुत बढ़िया। और हर हफ्ता हमरे मन नौजवान भाई बहन मन और उमन ले खास कार्यक्रम हमरे मन करीला इस कर दिन में। और नौजवान मन कहले है हमरे मन में नया जोश नया उमंग आ जाएला। और सबसे बड़ बात का है नी झालेश्वरी बहन, हमरे मन कर देश में युवा मन कर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और युवा मन कर जनसंख्या ज्यादा है तो नवा सोच नवा उमंग के साथ में हमरे कर देश भी आगे बढ़ते जाते।
0: वो तो है दादा, लेकिन युवा मन में हमरे मन सब भरासरा करेला, तो युवा मन के बढ़िया डहर में बरिया रही के चले चाहिए।
1: एकदम नगद कहा थी। और लेकिन कह दहा तो देखब नहीं कि गांव घर में युवा मन बहुत गलत गलत रास्ता में भटक जाए, है नहीं? लेकिन सही कहा थी कि हमरे मन के आज बढ़िया डहर में चले कर दरकार है। जे हमरे मन कर एक बाढ़े कर उम्र हुए लानी कहल जाए लानी कि जब घर कर नींव मजबूत हुए ला तो घर भी मजबूत हुए लानी। तो उसने छुआ मन हुए ना कि देश कर नींव हक है। आज कर छुआ काल कर भविष्य में वो है तो देश के आगे लेके चली। तो अपन मजबूत नींव के मजबूती देवे के लागिन बढ़िया हमरे मन के पढ़ाई लिखाई करे के है और बढ़िया रास्ता में चले कर
0: ताकि और आगे को लहा तो सीख भाई दादा हमरे मन के देख के नहीं कि बढ़िया डहर में चलत है नहीं। तो एक धर डहर भटकल से मन के सोच डहर में लाने के लिए बहुत
1: मुश्किल हो जाए। सही कहा थी। और देखो सरकार बटले भी बहुत तरह का ऐसा योजना मन चला जाएला नी हमरे मन कर युवा मन ले। जेकर अगर हमरे मन सही तरीके से जानकारी अगर रखत थी तो उकर लाभ उठाए के हमन बढ़िया काम कर सकीला।
0: हाँ हाँ नगद कहा थी दादा। तो वही लिखे एगो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है। योजना कहली तो देखो यही धुआई।
1: हाँ हाँ
0: तो ये भारत सरकार कर एगो मुद योजना है दादा। ये योजना रुपया तक कर सूक्ष्म ऋण सुविधा देवेला, जे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के ऋण देवे के लिए शुरू करल।
1: कितना बढ़िया योजना है। सोचो कि कई धाव का होला कि हमरे मन पढ़ लिख गेली।
0: हाँ।
1: और आसरा करेला कि नौकरी भेटाए नहीं नौकरी भेटाएल तो बहुत आदमी मन के देखब नहीं कि बड़ा एकांत में चल जाए ना मन गलत गलत विचार मन को मन में आवे लागेला। कई धाव तो सोचे ना कि अब हमर जिंदगी में कुछ बाचबे नहीं करलक है नी।
0: हाँ।
1: चाहे गलत रास्ता में चल जाए ना मन भटक जाए ना। तो अगर पूंजी हमर हाथ में रही तो हमरे मन सही सही काम कर सकीला, क्योंकि पढ़ल लिखल ही जानकारी तो 10 तरह कर है। पूंजी कर अभाव में कोनो काम शुरू करे के नहीं पारीला। तो अगर मुद्रा योजना जे है इकर तहत हमरे मन के अगर ऋण मिल जाते तो आसानी से कोनो भी काम कर सकीला। तो एकदम सही है। तो सेले योजना मन के हमरे मन के जानना बहुत जरूरी है।
0: हाँ।
1: और जिसन रोरे बतात रही कि सूक्ष्म ऋण योजना है इकर तहत और भी बहुत सारा योजना है।
0: हाँ दादा बहुत सारा है। तो ये देखो ये योजना और ऋण ले कहा थी शिशु ऋण जो है नी दादा, ये 50,000 तक कर ऋण के कवर करे के लिए अग्रिम शुल्क प्रसंस्करण शुल्क माफ कर देवल जाएला। और किशोर लोन है ला 50,000 से 5,00,000 तक कर, और तरुण लोन 5,00,000 से 10,00,000 तक।
1: बहुत बढ़िया। तो तीन तरह से योजना का लाभ उठाए सकीला। शिशु ऋण है जो कि 50,000 तक है। उकर बाद में तरुण है, उकर बाद में फिर किशोर लोन भी है। तो तीन तरह का लोन है। तो इकर से हमरे मन अपन ये जे भी काम शुरू करे कर अगर हमरे मन विचार करे थी भाई बहन मन तो आसानी से प्रधानमंत्री जे मुद्रा योजना है इकर हमरे मन लाभ उठाए सकीला। और बहुत आसानी से ये लोन भी मिलेला। बैंक में जाना है, बैंक में खाता होना चाहिए।
0: हाँ।
1: और उठी ना दस्तावेज होना चाहिए। ऐसे देखो हर काम में हमरे मन के आधार कार्ड का दरकार लगेला।
0: हाँ ये दस्तावेज तो कह थी आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब रह ले तो जैसे वोटर आईडी बैंक स्टेटमेंट और व्यवसाय कर पता इस ओप से आवेदन कर सके ना।
1: एकदम। तो भाई बताए कोई भाई कि हमके कौन काम शुरू करे है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो उकरे अनुसार लोन भी देवल जाए।
0: हाँ,
1: और हंसी खुशी अपन काम के शुरू करू। एक ठो बात तो हम कहब निझालेश्वरी बहन,
0: ये
1: अपन हाथ के जगरनाथ बनाए छे नी, अपन हाथ जगरनाथ।
0: सही कहली दादा, यही दे गेल के गोमर सर रहे, बहुत कहत रहे कि तोरे कतना दूसरा मन कासरा करत रहबा, अपन हाथ जगरनाथ।
1: सही कह
0: तो
1: भाई, ऐसा काम हमरे मन के करे चाहे नी झलेश्वरी बहन की।
0: हाँ।
1: आपने तो कमाबे करती दस ठो के और उरे काम के देवती मन कर हाथ के मजबूत करती। हाँ। तो आज समय भी है कि हमरे मन के अपन काम शुरू करू, अपन मालिक खुद बनू और दस ठो आदमी के रूरे काम भी देऊ मन के मदद करू मन के। तो झालेश्वरी का कहिला आगे कार्यक्रम शुरू करे चाहिए।
0: हाँ, शुरू करे चाहिए दादा, नहीं तो देखो ढेर दिन भेटाले तो गुट तो हते रही।
1: एकदम एकदम।
0: चलो तब एगो नागपुरी लोकगीत सुनिला जेके गाई है बसीर अंसारी और संगीमन।

0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत

0: मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का भी।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: तो झालेश्वरी देखो, हमरे मन युवा मन जितना मन ये हमरे मन, हाँ, तो अपन कोई भी काम धंधा में हमरे मन के मन लगाए के चाहिए और ऐसा कुछ काम करे के चाहिए जेकर से हमरे मन कर देश और हमरे कर समाज, हमरे कर गांव आगे बढ़ सके। ऐसा हाँ। कुछ काम हमरे मन के करे के चाहिए। चुनौती तो हर काम में है,
5: हाँ,
4: चाहे पढ़ाई लिखाई से लेके काम करे से लेके अपन काम करूँ, चाहे सरकारी काम करूँ, चाहे कोई भी काम, हर ठीना रोग के चुनौती है। लेकिन वह चुनौती के बाधा के पार करके हमरे मन के आगे बढ़े कर कोशिश करे के चाहिए।
5: तो इकरे एगो नागपुरी में जानकारी करिल तब राष्ट्र कर उन्नति में युवा मन कर चुनौती कर बारे में जानकारी देवत हैं डॉक्टर राम कुमार।
6: कोनो देश कर भविष्य अगर छुआ मन होए ना, तो उकर वर्तमान और दिशा देवे का काम युवा शक्ति करेला। जब यह युवा अपन सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी मन के बिसराय के विलासिता कर काम में डूब जाए ना, तो देश बर्बादी बट सुझाएला। कोनो देश कर दिशा दशा, उकर उन्नति और अवनति सब हुआ कर जुआ मनक हाथ में होएला। जैसन गाछ रही ओहे लखे फर भेटाएला। कहेक माने जे देश कर जुआ शक्तिशाली, स्वच्छ सोच वाला कर्मठ होबें, उ देश जरूर उन्नति करी। इकेहे अंदाज कर लें जुआ शक्ति के प्रेरक स्वामी विवेकानंद। से ले उ कहलें कि हमरे कर जुआ मनक नस लहू में लोहा होवेक चाही, तभे हमरे गुलामी के तोड़े पारब, देश के आगे लेगे पारब और गोटे दुनिया के मानवता कर सेवा करे पारब। और संदेश देलें जागो उठो चलो। तो कहे के माने है कि कौन

0: राष्ट्र कर उन्नति में युवा शक्ति कर सबसे बड़ योगदान रहेला। परिवर्तन चक्र तीव्र गति से घूमत है, सामाजिक स्थिति बदलत है, इसन परिस्थिति में मनुष्य बहत है बोहात है। बाहरी रूप से चारों दने भौतिक आर्थिक प्रगति होवत है, सुख सुविधा कर संसाधन कर अंबार लागत है, दिनों दिन नवा नवा आविष्कार होवत है, मुदा आंतरिक दृष्टि से मनुष्य टूटते और बिखरते जाते, जेकर से उकर समाज कर प्रति सद्भाव विश्वास और जिंदगी कर प्रति लगाव धीरे धीरे सिराते जाते। आप तो समाज में चारों बट आपसी भाईचारा समरसता आप तो समाज में चारों बट आपसी भाईचारा समरसता कर जगे स्वार्थीपना आ जा है, जे देश कहियो जगत गुरु कहात रहे, मुदा एखन भारत फिन से ओहे पदवी पावे के जुगत में लागल है और इके उठाव के फिन पावे के लिए युवा शक्ति का जरूरत है। वर्तमान समय में मनुष्य भौतिकवादी बन जाए हैं, आज कर युवा स्नेह दूषित परिवेश में जन्म लेवेला और हो सम्राते इस चिंताजनक परिस्थिति से भेटायला, आदर्शहीन समाज से उके उपयुक्त मार्गदर्शन नहीं मिलेला जेकर से भटक जाए ना। आज कर युवा पीढ़ी कर जे हाल हुआ थे उकर में सबसे बगरा दोष उनकर आयो आबा और परिवार कर है। उ मन तो अपने दुष्प्रवृत्ति मनक जाल में बाझल हैं, तो फिन अपन पूत के का संस्कार देवें। युवा अवस्था कर पहल सीढ़ी में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होवेला, इकाल जिंदगी कर उथल पुथल बेरा होवेला। जब चारों बट देखेला और आत्ममंथन करेला तो अपन प्रतिमान बनाएला और बिगाड़ेला, यह उधेड़ बुन में रह जाएला और अपन अस्मिता के खोजेला, अपन मार्गदर्शक नायक के खोजेला जेकर अनुरूप अपने के ढाल सके। पहले युवा पीढ़ी के अपन आदर्श खोजे के लिए परिवार और समाज कर अलावे किताब मनक हो सहारा रहे, जे कि भारतीय संस्कृति कर बहुमूल्य धरोहर हैं। वर्तमान में आदर्श और प्रेरक साहित्य कर प्रति अभिरुचि में कमी आए है, अपन संस्कृति कर ई उपेक्षा कर कारण आज उ कोनो सज्जन वीर और महापुरुष के अपन आदर्श बनाए के जगह टीवी और सिनेमा में उनके खोज अपन संस्कृति कर ई उपेक्षा कर कारण आज उ कोनो सज्जन वीर और महापुरुष के अपन आदर्श बनाए जगह टीवी और सिनेमा में उनके खोजेला, इकर में उके भेटायला ओहे लड़ाई झगड़ा फैशन अश्लील और फूहड़पन, इस सब के अनुसरण करे के प्रगतिशील बुझेना, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के अपनाए के अपन मूल सभ्यता संस्कृति के भुलाते जाते हैं। हमें अगर कटिक नज़र खोल के देखब तो हमरे कर माझे बेस मनुष्य हों बगरा भेटाबें, जे ईमानदार चरित्रवान और नैतिकवान हैं, वो हमेशा जिंदगी कर प्रति आशावादी और सकारात्मक नजरिया रखे ना। युवा पीढ़ी में हो ईसन चरित्रवान मन कुधाल हैं, मुदा उ मन के कैसे बिगड़े से बचाए है और उ अपने हो कैसे इकाजर कर कोठरी से अपने के बचाए के बेदाग बाहरे निकली। असल जिम्मेदारी तो युवा मनक है, समय रहते के बुझे पड़ी अपन सुधार संसार कर सबसे बड़ सेवा है, इके समझ लिहे सबक कल्याण है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितना हो क्रांति हुई है उकर में युवा मनक भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सेहेले कोनो विद्वान कही हैं, संघर्षों के साये में इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवावस्था मनुष्य जिंदगी कर सर्वश्रेष्ठ बिरा हुएला, उत्साह उमंग से भरल जुआ मन में पहाड़ से टकराए कर ललक हुएला, जे पहाड़ से टकराएला से के तूफान कहना और जे तूफान से टकराएला उके जुआ कहना। विषम परिस्थिति में ई मन में लड़े कर हों साहस हुएला, असंभव के हों संभव करके देखाए कर मादा हुएला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कर अनुसार भारत में 16 से 25 वर्ष कर जुआ मनक संख्या लगभग 21.5 करोड़ है। इतना जुआ शक्ति अगर सकारात्मक और रचनात्मक डहर में चलबें तो भारत के दुनिया कर सिरमौर बनाए दे। अपन सद्गुण और सद्विचार कर बल से भारत कहियो विश्व में जगत गुरु कहात रहे उके फैन ओहे ओहदा में पुनर्स्थापित करे कर साम्रत खाली जुआ पीढ़ी में है। मुदा पहले जुआ मन में अपन मन से निराशा और हताशा कर भाव मन के जड़ से उखड़ाए के फेंके खोवी। अपन शक्ति में अपन क्षमता और प्रतिभा के अटूट विश्वास जगाए खोवी। ईसन मानल जाएला कि असंभव शब्द कर शब्दकोश में कोनो ठाव नखे। इके अपन जिंदगी कर आधार बनाए के हमेशा यह विचार करे खोवी कि दुनिया में कोनो ईसन काम नहीं है जेके हमें नहीं कर सकीले। कल्पना करू कि अपने कर शरीर में शक्ति कर पजरा फूटत है, ऊर्जा कर धारा बहत है, जे कठिन से कठिन काम के हो तुरते पूरा कर सकेला। उज्जवल भविष्य हमरे कर स्वागत ले खड़ा है। अपन भीतरे ईसन आत्मविश्वास स्थापित कर ले हैं हमरे जिंदगी कर चुनौती मन कर सामना करे में सफल हो सकीला। हमरे के अपने आप के चिन्हे खोवी तभे हमरे कर जिंदगी के सार्थक बनाए सकीला। किसिम किसिम कर जीव जंतु चरे चिरगुन हमरे कर चारों बट दिशे न, यह प्राणी मन में से एगो मनुष्य हो हैं। ये तो सर्वविदित है कि दुनिया कर सब प्राणी मन से मनुखे सर्वश्रेष्ठ है। सर्वगुण संपन्न शरीर कर संगे संग उके बुद्धि विवेक कर वरदान हो मिलल है। उ सोच सकेला, चिंतन मनन कर सकेला, बोल सकेला, समझ सकेला, बुझ सकेला, हाँ सकेला, कान सकेला और हमरे कर कल्पना से हो ऊपरे अगर कोनो काम है तो उके हो कर सकेला। दोसर कोनो प्राणी में ईसन क्षमता नखे। हजारों लाखों बरिस पहले उ जोन स्थिति में रहे आइजो ओहे रूप में है। उकर खोता लाता बनाइको ज्ञान ओहो बेरा रहे आइजो है। दोसर बट मनुष्य अपन बुद्धि विवेक करबाबैत प्रगति करके रोज दिना टिंगासन में पहुँचत है। मुदा राष्ट्र निर्माण कर ओर अपन घर दुरा गांव घर और अपन राइज से शुरू हुएला। तो हमरे कर झारखंड में हो जुआ शक्ति के जागे के जरूरी है। काले कि हमरे कर ये प्रदेश संसाधन से भरल पुरल है और इकर उपयोग करके जुआ शक्ति आगे लगा सके ना। झारखंड प्रदेश के गोटे भारत में अगुआ बनाए के लिए हमरे जुआ मन के संकल्प लेक चाही कि आपसी भेदभाव भुलाए के अपन प्रदेश देश और गोटा दुनिया कर उन्नति ले काम करे के है।
1: तो झालेश्वरी बड़ा बढ़िया एकदम अच्छा से बात की बताले हमरे मन की कि राष्ट्र कर उन्नति में युवा मन कर का चुनौती है और ओकर से पार पावे कर का उपाय है से कर बारे में बहुत बढ़िया से जानकारी दिले ने।
2: हाँ दादा, तो जानकारी दिले डॉक्टर राम कुमार।
1: और देखो झालेश्वरी बोलते बतियाते सुनते सुनाते अब बेरा हो गेलक सब कर से विदा लेवे कर।
2: विदा लेवे कर तो जाते जाते बताई देवत ही दादा कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल।
1: तो झालेश्वरी का कहिला चलेक चाहिए
2: दादा। चलेक तब
1: जोहार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी और हमारी दुनिया। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026, रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
6: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर लगाई रोक। जरूरत के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति थोक बिक्री केंद्रों से होगी। रांची में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। रबी फसलों के मूल्य निर्धारण पर ली गई राय। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए रांची में तैयारियां पूरी। 14 जून को 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड में पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन के कारण इस वर्ष जताई सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। और झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने शानदार जीत हासिल की। छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। रांची में आज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ रबी फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर बैठक की। CACP के अध्यक्ष ए गणेश कुमार ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं झारखंड के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड के किसानों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखने का अनुरोध किया गया है।
1: झारखंड सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे फर्ज बनता है हमारा किसान का समस्या चैलेंजेस उसके सामने रखना, और भारत सरकार बीइंग और सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारा जो गार्डियन के रूप में उनसे रिक्वेस्ट करना हमारा किसानों के हित में अपना पॉलिसी MSP में निर्धारण किया जाए, ये प्रयास हम लोग जरूर किया है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। यह परीक्षा 14 जून को रांची के 5 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेदिनीनगर नगर निगम की 93 लाख रुपए की एक सड़क योजना को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शांति और सुरक्षा का माहौल स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का महिमामंडन नहीं होना चाहिए।
2: नगर निगम के द्वारा एक योजना की स्वीकृति दी गई और योजना का नाम रखा गया डब्लू सिंह के घर से मेडिकल कॉलेज तक सड़क का निर्माण। मेरी आपत्ति इस मायने में है कि एक ऐसा व्यक्तित्व या एक ऐसा चरित्र जिसके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हो उसका नाम योजना से जोड़ा जाए यह कदापि उचित नहीं हो सकता।
0: अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए छात्रवृत्ति भुगतान दिसंबर से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। मंत्री ने साइकिल वितरण योजना में तेजी लाने तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को नए स्वरूप में अधिक प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। रांची में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की बैठक में जनगणना कार्य मतदाता मैपिंग और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने 13 और 14 जून को मतदाता मैपिंग के लिए आयोजित विशेष शिविरों के व्यापक प्रचार प्रसार तथा सभी मतदान केंद्रों पर BLO की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के तहत कल रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम रांची में यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड रखा गया है। माय भारत रांची द्वारा सहयोगी संस्था प्रोजेक्ट पॉइंट ओडिशा के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा पेशेवर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जामताड़ा जिले के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि किसान सम्मान निधि से किसानों की कृषि लागत कम हुई है और उन्हें समय पर खेती करने में सहायता मिल रही है।
3: पीएम किसान सम्मान निधि है जो जिले में किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। अभी खरीफ में आप देखिए तो उनको खाद बीज इनपुट खरीदने के लिए उससे बहुत मदद मिलती है। राज्य सरकार की भी योजना में आप देखिए मिलेट मिशन है, उसके अलावा बीज उत्पादन में भी सब्सिडी दी जा रही है, उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से 100% सब्सिडी पे बीज भी अभी दिए जाने हैं। उनकी आय दुगुनी से भी ज्यादा हो इसके लिए जिला कृषि कार्यालय प्रयत्नशील है।
0: गुमला नगर भवन में आज पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025 पर एक दिवसीय जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि पेसा नियमावली पूरी तरह लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य परंपरागत ग्राम सभा तथा पंचायती राज स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। उन्होंने रिक्त पारंपरिक ग्राम प्रधान पदों को स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार शीघ्र भरने का निर्देश दिया। हजारीबाग में आयोजित आम उत्सव में महिला किसानों और आम उत्पादकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने कहा कि मनरेगा और बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से किसान आम बागवानी अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
4: प्रोडक्शन तो है लेकिन जो उसकी वास्तविक कीमत है वो किसानों को नहीं मिल पाती। उनकी बेहतर कीमत दिलाने के लिए विकास आयुक्त द्वारा ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया जिसमें एक ओर व्यापारी वर्ग है, दूसरी ओर उत्पादक गण है। सामंजस्य को बनाने के लिए उसके लिए मेले का आयोजन किया गया है।
0: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने आज झारखंड में प्रवेश कर लिया है और जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज समेत धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया है। मौसम विज्ञान विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मॉनसून की उत्तरी सीमा वर्तमान में धनबाद होते हुए आगे बढ़ रही है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान झारखंड के और अधिक क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है।
5: मॉनसून का आगमन एक सुखद समाचार इसमें लेके आया है। झारखंड में 12 जून को मॉनसून पहुंचता है और मध्य भाग रांची समेत में 15 तारीख को मॉनसून पहुंचता है। पूर्वी भाग है वहां पे 12 जून को अपने सही समय में पहुंचा है और अगले 2-3 दिनों में इसका विस्तार झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग को देखने को मिलेगा।
0: झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोयलांचल सुपर किंग्स ने 19.1 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत दर्ज की। कप्तान उत्कर्ष सिंह ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर लगाई रोक। जरूरत के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति थोक विक्री केंद्रों से होगी। रांची में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। रबी फसलों के मूल्य निर्धारण पर ली गई राय। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए रांची में तैयारियां पूरी। 14 जून को 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड में पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन के कारण इस वर्ष जताई सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। और झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स की शानदार जीत। छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
7: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: गढ़वा जिले में आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला मुख्यालय में पतंजलि योग समिति सहित कई सरकारी संस्थानों में भी योग शिविर आयोजित कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शहर के बिगन देवी स्मृति भवन में पतंजलि योग समिति द्वारा संचालित नियमित योग शिविर का संचालन कर रहे प्रशिक्षक उपकार गुप्ता से हमने योग के विषय में जानना चाहा, तो उन्होंने योग के लाभ के विषय में जानकारी दी।
2: मैं रामदेव बाबा के यहाँ से ट्रेनिंग लेकर यहाँ शुरू किया हूँ और यहाँ से योग करके बहुत सारे भाई बहन बहुत फायदा उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग का स्थान पूरे विश्व में जन जन को जागृत किया है। इससे हमारे कक्षा के लोग को भी बहुत सारा फायदा हुआ है। बहुत लोग को बहुत सारी असाध्य बीमारियां थी, वो सब ठीक हो रहा है। मैं गढ़वा वासियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि योग में जुड़िए और प्रतिदिन योग कीजिए।
1: इसी तरह जिला मुख्यालय स्थित बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क में भी नियमित योग शिविर का संचालन किया जा रहा है। इस योग शिविर में अनेकों युवा पुरुष और महिलाओं को भाग लेते देखा गया। हमने यहाँ नियमित योग शिविर में भाग ले रहे एक युवा धीरज कुमार से बातचीत की, तो उन्होंने बताया,
3: जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री योग करके निरोग रहने का अपील किया है, तब से हम बिरसा मुंडा पार्क में आकर प्रतिदिन योग करता हूँ। हम पहले हॉस्पिटल का चक्कर लगाया करते थे, लेकिन अब हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता है। योग करने से मैंने 3 वर्षों में 10 किलो वजन कम किए हैं। योग करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है।
1: जिले में पिछले दिनों दिशा की बैठक सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में गढ़वा जिले में चल रही विशेष रूप से सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की गंभीरता से समीक्षा की गई। वहीं कई ज्वलंत समस्याओं पर भी चर्चा कर उनके समाधान के लिए पहल करने का संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया,
4: आज मुख्यतया पिछले मीटिंग में जो प्रश्न उठाए गए थे या जो जिज्ञासा प्रकट की गई थी, उन प्रश्नों के उत्तर की समीक्षा की गई और माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र में हो रही योजनाओं की प्रगति की भी चर्चा की। जिन विभागों के प्रगति प्रतिवेदन में कमी पाई गई, उन कमियों की ओर उन विभागों का ध्यान आकर्षित कराया गया। कमेटियां भी बनाई गई है ताकि जांच प्रतिवेदन प्राप्त करके यदि कोई पदाधिकारी दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके, ताकि भविष्य में उन कमियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर किया जा सके। किसानों को धान का पैसा अभी भी नहीं मिला है। उन किसानों को धान का पैसा का भुगतान शीघ्र

0: तापमान गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है, लेकिन लगातार कड़ी धूप से लोग काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। लोग बेसब्री से मानसून के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
1: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: दुलड़ा को स्वच्छता चिलके वो रुकेया इन जगरबू तना किन तुलसी दिरिया तिकिन आया जगरबू आयुम लिया। जगर तना स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता जरूरी।
3: सभी को इत आयर अब समझान दरकार अच्छे होमो टीक तयो लगे चिलकन चिलकन सप सुतरतिया दरकार। जदि होमो टीक का तयो रेदो जा लिकन पैटी पनाइटी को काट पैटी दयोआ काबू पैटी दाइए। नैन जी जीवन रे ऐसो पूरे होलो कोचो को हो बना ओंडो नैन होलो कोचो को ते ओल लगे अब होमो टीक तयो तिया दरकार। ओंडो स्वच्छता रिया औरतो तना जाओ जाओ सपा सुतुरे ताइन, सपा सुतुरे ताइन रे होमो टीक तायुआ। ओंडो मन को टीक अटकारुआ ओकन जमा को अबु बु जमिया अबु चिलकेन अबु होमो को सपा सुतुरे बु रिकेया। ओंडो ऐसो पूरे पार्टी को बु होमो रिया पे को एमिया निया को एते अबु होमो टीक टाइन लगे ऐसो पूरे भूमिका एमिया। ऐसो पूरे रोग को सपा सुतुरे काट आज और रोग उपनुआ चिलके ची चिदू को गाओ डाटा सोया जाड़ा ओंडो पेचिस लिकन रोग को ना नामा इना मेन सपा सुतुरे टाइन इना रोग को एतेबु बचाव दिए। एन लिखा गे मीर हाट और बार दाना बो बले सपायतिया एन रेदो बो बले रे सिकु को काको उपनुआ मेट जाओगे सपा दाते अबुंगन तिया लुतुर का सपन रे होयो परम तिया हुरा जैकेट बंद रिनावा नियाते लुतुर हास हुए इना मेनते मीर हाट रे मिसे रुई ते लुतुर सपन तिया मिसे मिसे मुए को जैकेट बंद रिनावा सायर को जैकेट काट दाइवा इना मेन चिमितेंग दरकार होबावा मुए सपन तिया चिमतेंग मंदा ना नामा इमितेंग सुतम लिजेते मुए जो सपन तिया। एन लिखा गे लोचो को ओंडो डाटा को सपन लगे मुलायम तिया बरस ओंडो पेस्ट सपाय लगे दरकारा मेर सिंगिरे बार दाणा डाटा सपन तिया सेता मिसे ओंडो आयुक गीति आयारते मांडी जम तायम दाते आ को अबुंगन तिया चिना ची डाटा को रेबिड़ा कानुआ इना को एते आ को सुवाना ओंडो सुयावा दाते अबुंगन रे आ को सपावा चॉकलेट मिठाई आइसक्रीम केक निया को दो कम गे जमे तिया जदि डाटा को रिंगुट को जमपे तानची सोया तान रेदो डाटा नेल डॉक्टर ता सेनोते होबाना। एन लिखा गे अबु होमो रिया ध्यान रिके एमेते दरकारा अबु होमो टेक टाइम लगे होमो रिया उर टेक टाइम तिया दरकारा चिना मेनची एन उर अबु होमो रिया तापमान टीक रिकिया चिना मेंची एन उर होमोते चिलके बाल।

बल ओला एन रे दिंगा एमिया चीना में ची बल बल को का ओल रे होमो रे गाओ पुसुरी एमन को ओला इना में जाओ जाओ साबुन ओंडो सपद आते उड़ान पे ओंडो होमो को सप सुतरे रिकेतिया अबु साबुन लिकान पार्टी को मांडी जम ओंडो मुटे सपा गुरी इमन इड़ा को साबिन ती तेगेबू पाइटी ए एन इमितें रोग को उपनोतिया चिदु को सारसल लतार रे ओंडो उर चितान कोरे को टाई उरेने जान पाइटी पाइटी के चनम अंगुड़ी ओंडो सारसर जोका साबुन को ते बुगी लिकाबू सपंतिया दुरकारा पुरे रोग हुबाना समय समय रे सारसर को गेडेंतिया ऐसो पुरे हो को बुनेल कुआ ची दाटा ते सारसार को गेडेना ओंडो मुटे को सुड़ी इने निया को एते रोग को ना नमा एन लिकागे ऐसो पुरे होन को बु नेल कुआ ची लोसर ओंडो डुलिट करे को इनुंगे नेको मांडी जोम आयार ते ती अबुंगें तिया एतो को तिया ऐसो टायर्ड करे नेल को तना ची हो को पी पा बन रे बकाई पा करे ई ते को सेनुआ निया को एते साबिन मूली गंदगी को नितरुआ ओंडो रोग को ना नमा इना मेन दरकार अछि ई वा करे बाईकान रे दो एन करे गेबु सेनुआ चिना मेन ची ना बरसिंग हतु हतु रे वा वा रे ई वा दो को बाई तान गया ओंडो एसो पुरे हो को बुनेल को अछि ई चापिकेन ते ती को साबुन को ते काको नाबुंगिना इना मेंते अबुंग आलोपे रिंगिया सभी को एते असल ओंडो ध्यान एमेतिया काजी दुनिया तनची अबु मांडी इसिन आयार ओंडो मांडी जम आयार ते साबुन ते अबुंग एंतिया मांडी उतो इसिन तन तिया बेला ताणी को बुगीते अबुंग चापी केते रिकेतिया ओंडो बासी मांडी को का जमेतिया मांडी इसिन ओंडो मांडी बुरे ते आयार बुगी ते अबुंग चापिन तिया चावली ओंडो जा साबिन लेकान उतु को इसिने तिया आयार ते बुगी लिकाते चापी तिया ओंडो इसिन केते साबिन ताणी को ते दपाल केते रिकेता तिया बान रे इना कोरे जान जीव जबरा को ई उए एन लिकागे एसु पुरे जमा जिनिस को दुकान को एतेबु किरिंगिया एन इमितंग एन पकेट रिया सटावकान लेबल को नेल दरकार चीना में ची एन जुमा जिनिस रिया लेबल चिमिनेंग जोंग मिना इना रिया जानकारी नेल दाइए ओंडो मांडी वारे ओकन जिनिस को का दरकार एन जिनिस को इड़ा तातिया ना बरसिंग सबिन कुआ जुमा नुए तना मांडी उतो इसिन लांडिये ते बाजार करे बाई कान जुमा जिनिस चिली के जंक फूड ओंडो चिलकन चिलकन सुनुम कोते बाई कांतिया कोबु जोमेतांते जोकाओ पे दो का अटकारुआ ओंडो आयार सुमाय ची मुनु सुमाय रेन हो कोबु नेल को रेदो नेलो तना कोची आको हतो दिसुम कोरे दा आमांडी ची आ उतु जोमके ते ताइन तान रियो आको आहोमो ना असमते एसु को पे आना आको जुमानु ए जिनिस कोरे इंकन जिनिस को जमे तनाचे रे रानु रिया दरकार गे काटाइने इना मेन दरकार अछि अबु जागे जमा जिनिस को मिना वा कोरे सपा सुतरे बाइके ते जमे चाहिए आधुनिक युग रे हो को जागे जितागे को टाइन तना चिमिन सुमाय रे गीते तिया चिमिन सुमाय रे उठेन तिया एन सुमाय रे काको उठेन तान तियो होमो को आश्वस्त बु तायो तना इना मेन तियो एसो पुरे बीमारी को ना नाम तना जुदी जाओ जाओ चिली के ताइन तिया को ध्यान बु एमे रे दो अबु टीक बु ताइने अबु साबिन बु आधा नची अबु जोमा नुए रिया सीधे असर अबु होमो रेगे टोना चिली के पूरे सुनुम रे इसने कान जिनिस को कोल्ड ड्रिंक लेकाना को नुई तानते अबु होमो रे बासा रिया मात्रा पूरे एंताना निया जिनिस को जोमे रे होमो मोटा ओतना ओंडो
ऐसो पूरे रोग को

0: अभी आप सुन रहे थे आदिवासी अखड़ा हो भाषा में, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सहिया।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार हैं।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहिया रेडियो कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोता भाई बहन को चंपा मुनि का जोहार। आज के इस अंक में आज हम खास चर्चा करेंगे भ्रूण लिंग परीक्षण के दुष्प्रभावों और इस पर लगाम कसने वाली पीसी पीएनडीटी अधिनियम के बारे में। इससे संबंधित जानकारियां आपसे साझा करने में हमारा साथ दे रही हैं हमारी पूर्णिमा बहन। तो जोहार पूर्णिमा बहन।
1: आपको भी जोहार करते हैं चंपा मुनि दीदी। आज के विषय का खास महत्व है, इसलिए श्रोता भाई बहन से हम यही कहना चाहेंगे कि बेटा या बेटी अपने ही संतान होते हैं, फिर भी समाज में कुछ लोगों द्वारा बेटियों को जन्म लेने से रोकना गलत ही नहीं अपराध भी है। वही जन्म से पहले अल्ट्रासाउंड या अन्य तकनीक द्वारा भ्रूण का लिंग पता करना और करवाना दोनों दंडनीय अपराध है। इस पर नकेल कसने के लिए ही PCPNDT अधिनियम बनाया गया था, जो घटते लिंगानुपात और भ्रूण लिंग परीक्षण पर रोक लगाता है। इतना ही नहीं, जो लोग या संस्था भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त होते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है।
0: सही बात है बहन। श्रोताओं के लिए ये समझना भी जरूरी है कि बेटियों की संख्या कम होने और लिंगानुपात घटने से नई पीढ़ी का विकास और समाज का संतुलन प्रभावित होगा। यदि 1000 लड़कों पर 750 लड़कियां होंगी तो 250 लड़कों को अविवाहित ही रहना होगा। इसलिए सरकार ने लिंगानुपात बनाए रखने के लिए भ्रूण लिंग जांच पर रोक लगाते हुए ऐसे इन कार्यों में लिप्त लोगों और संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया है। वहीं भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचनाएं हासिल करने के लिए मुखबिर योजना भी शुरू की है।
1: चंपा मुनि दीदी, जब विषय इतना गंभीर है तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलाएं? इसके लिए यदि हम विशेषज्ञ रफत फरजाना जी से मिले तो बेहतर रहेगा ना?
0: हमारा भी यही विचार है पूर्णिमा बहन, इससे श्रोताओं को भी फायदा होगा। तो चलिए रफत फरजाना जी से मिलकर जानकारी ले ही लेते हैं।

0: जोहार रफत जी, हमको पूरा भरोसा था इस समय आप फुर्सत में मिल जाएंगी और हमारा काम भी हो जाएगा।
1: आओ पूर्णिमा, कहाँ थी इतने दिनों तक, सब कुशल तो है ना?
0: रफत दीदी, मेरा हालचाल तो दुरुस्त है। असल में आज हम अपने सहिया रेडियो के श्रोताओं को भ्रूण लिंग परीक्षण के दुष्प्रभाव, इसको रोकने वाले पीसीपी एनडीटी एक्ट के बारे में जागरूक कर रहे हैं, इसी बारे में आपसे विस्तृत जानकारी लेने आए हैं।
1: ये तो सच है और बहुत ही सराहनीय काम है। बताओ पूर्णिमा, मुझसे तुम्हें क्या क्या जानकारी चाहिए?
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के उद्देश्य क्या है और इसके दायरे में क्या क्या आता है।
1: पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, जिसे हम हिंदी में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य गर्भधारण पूर्व लिंग का चयन तथा प्रसव पूर्व भ्रूण के लिंग की जांच पर रोक लगाकर लिंग आधारित गर्भपात को रोकना है। साथ ही लड़कियों की कम संख्या के कारणों में कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा एक बहुत ही प्रमुख कारण है। इस बुरी प्रथा को रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 को देश में एवं हमारे राज्य झारखंड में क्रियान्वित किया जा रहा है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि लिंगानुपात का संतुलन कितना जरूरी है और इसके घटने से परिवार और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: और जैसे बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि लड़कियों का समाज में कम होना उनकी स्थिति में अच्छा सुधार लाएगा, बल्कि वास्तविकता ऐसी नहीं है। जहां भी लिंग

0: चयन काफी प्रचलन में है, वहां आप देखेंगे महिलाओं की संख्या कम जो हो रही है, उनके प्रति हिंसा, बलात्कार, अपहरण, बेचना, बहुपति प्रथा, ये सारी चीजों में वृद्धि हो सकती है। तो मांग और पूर्ति जो है, तर्क के अनुसार महिलाओं की स्थिति बहुत ही वो दुष्परिणाम लेके आती है अगर लड़कियों की संख्या समाज में कम होती है। जिस तरह से एक गाड़ी को सफल रूप से चलाने के लिए दो पहियों की आवश्यकता होती है, महिला और पुरुष, इसी तरह समाज को भी एक सतत जो प्रक्रिया है और समाज को गतिशील बनाए रखने के लिए महिला और पुरुष का एक विशेष अनुपात में होना नितांत आवश्यक है। और जहां इस संतुलन में किसी भी प्रकार का बिगाड़ होता है या फिर महिलाओं की संख्या कम होती है, तो ये सारे दुष्परिणाम समाज में देखने को मिलते हैं।
1: कन्या भ्रूण हत्या अथवा गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग परीक्षण को रोकने में मुखबिर योजना कितनी मददगार है, और क्या सूचना देने वालों को भी कुछ फायदा है?
0: मुखबिर योजना कन्या भ्रूण हत्या के लिंग परीक्षण करने वालों को सामने लाकर उन्हें सजा दिलाने के लिए एक बहुत ही सार्थक पहल है झारखंड सरकार की। और निश्चित रूप से इसमें जो मुखबिरी करते हैं, जो सही सूचना देते हैं, सही सूचना देने वालों को इनाम की राशि भी है, और सरकार इसके लिए 1 लाख रुपया इनाम की राशि भी देते हैं। ये राशि जो गर्भवती महिला है, जो उस पूरे डिकॉय ऑपरेशन में शामिल होती है, साथ ही उसके सहयोगी और जो मुखबिर होते हैं, जो सूचना देते हैं, इन तीनों में ये विभक्त की जाती है राशि, 1 लाख रुपए की राशि, और सरकार की तरफ से मिलता भी है। साथ ही साथ अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो समाज में लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, और जो गलत करने वाले हैं, जो गलत कर रहे हैं, उन्हें भी एक संदेश, एक सूचना जाती है कि उन्हें गलत नहीं करना है, और कोई है जो उन्हें देख रहा है, उनकी सूचना भी सरकार तक पहुंचाएगी। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही लाभकारी योजना है और इसे जन जन तक जरूर पहुंचाया जाना चाहिए।
1: एक जरूरी सवाल ये है कि प्रसूति पूर्व निदान तकनीक की छूट किन परिस्थितियों में और किस दायरे तक दी जा सकती है?
0: प्रसूति पूर्व एवं गर्भधारण पूर्व जो तकनीक है, इसमें कुछ विशेष अवस्थाओं में इसकी छूट भी दी गई है। जब ये जानकारी, ये जो टेक्निक आया था, उस वक्त इस टेक्निक का उपयोग जो है वो गर्भवती स्त्री या उसके भ्रूण के शारीरिक जो फ्लूइड हैं, रक्त, कोशिका अथवा किसी उत्तक के अध्ययन से जो गर्भ में पल रहे शिशु में कोई विकार ना हो या फिर उसमें किसी तरह की खराबी ना हो, इसका पता लगाए जाने के लिए किया गया था। और जब इसका दुरुपयोग होने लगा, तब इस पे कानून के दायरे में 1994 में इसे लाया गया। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ये इसकी छूट दी गई है, जैसे परिवार में या किसी को अगर कोई आनुवांशिक या भीषण बीमारी हो, आक्रामक विकार हो, जिसको हम न्यूरो डिजेनरेटिव विकार भी कह सकते हैं, मानसिक रोग या है, उस अवस्था में PCPNDT अलाउड है। साथ ही साथ अगर पूर्व में महिला किसी शिशु मृत बच्चे को जन्म देती है, या फिर किसी रसायन, दवाई या अन्य कारक के प्रभाव में अगर वो महिला आई है उस परिस्थिति में, या महिला की उम्र 35 वर्ष से ऊपर हो गई, इन सभी परिस्थितियों में PCPNDT एक्ट जो है इसकी छूट दी गई है और ये मान्य है।
1: भ्रूण लिंग परीक्षण को रोकने में सहिया बहनों की क्या भूमिकाएं हैं, और क्या उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी मिलती है?
0: ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि सहिया जो हमारे स्वास्थ्य की एक कड़ी के रूप में कार्य कर रही है और वो उसी गांव की होती है, तो निश्चित रूप से सहियाओं की, और मैं कहूंगी आम आदमी का, बहुत बड़ी भूमिका है PCPNDT कानून में, हमारे अपने क्षेत्र के बच्चियों की स्थिति सुधारने में, बच्चियों की संख्या बढ़ाने में। जैसे कि किसी भी सहिया अगर देखती है कि उसके समाज में, पड़ोस में, उसके आसपास अगर किसी के द्वारा भी लिंग चयन किया जा रहा है या फिर लिंग चयन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो वो अपने स्तर से, जिला स्तर पे जिला समुचित प्राधिकारी जो कि उपायुक्त होते हैं, उन्हें इसकी सूचना दे सकती है। वो अपने जिला में सिविल सर्जन कार्यालय में सिविल सर्जन महोदय को इसकी सूचना दे सकती है।

0: ही साथ अगर उन्हें पता चलता है कि कोई चिकित्सक, रेडियोलॉजिस्ट, कोई प्रयोगशाला, क्लिनिक या फिर कोई आम व्यक्ति जो कि किसी भी तरीके से PCPNDT कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो सभी आवश्यक सबूतों के साथ जिला समुचित प्राधिकारी, जिला नोडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, उपायुक्त महोदय या राज्य स्तर पे इसकी सूचना दे सकती है। और जैसा मैंने बताया कि झारखंड सरकार मुखबिर योजना भी चला रही है, तो अगर सहिया बहने या कोई आम आदमी पुख्ता सबूतों के साथ सूचना देते हैं तो उनको भी निश्चित रूप से 1,00,000 रुपये के इनाम उनको भी दिया जाएगा और वो उसकी भागीदार होगी।
1: रफत फरजाना जी, भ्रूण लिंग परीक्षण के दुष्प्रभाव और इस पर रोक लगाने वाले कानून से संबंधित आपने जो उपयोगी जानकारी दी, आशा करते हैं उससे हमारे श्रोता जागरूक होंगे और समाज में एक स्वच्छ चेतना जगेगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रफत जिसे मिलना बहुत फायदेमंद रहा है ना बहन, इससे PCPNDT अधिनियम से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां सीधे हमारे श्रोता भाई बहन तक पहुंच गई।
1: सो तो है चंपा मुनि दीदी, ये भी अच्छी बात है कि हमारी सहिया बहनें भी समुदाय में ये जागरूकता ला रही है कि भ्रूण लिंग जांच अनुचित काम ही नहीं अपराध भी है, जिससे बचना चाहिए और बेटियों को जन्म लेने से नहीं रोकना चाहिए।
0: पूर्णिमा बहन, एक और बढ़िया बात है कि हर जिला अस्पताल, फर्स्ट रेफरल यूनिट और CHC में सहियाओं के लिए रेस्ट रूम बन गया है। कभी मरीज को लेकर अस्पताल जाना पड़े और रुकना पड़े तो सहियाओं को ठहरने की चिंता ही नहीं होगी।
1: अब चलते चलते अपने श्रोताओं को बता दे कि जन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए आप टोल फ्री नंबर 104 पर फोन कर सकते हैं।
0: हाँ तो प्यारे श्रोता भाई बहन, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें दीजिए विदा, जोहार।

0: झारखंड स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सहिया, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। एक आवश्यक सूचना है, रिश्वत लेना और देना अपराध है। केंद्र सरकार के उपक्रम रेलवे, बैंक, पोस्ट ऑफिस, आयकर, जीएसटी इत्यादि के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने की मांग करने पर उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु सीबीआई धनबाद के दूरभाष नंबर 0326-220-4455 या 898-779-0840 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब

0: से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी,
1: निश्चय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निश्चय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: झारखंड निश्चय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निश्चय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है, तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

फिल्म संगीत में आपका स्वागत है। लव मैरिज फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र की है शब्द रचना।

वो कौन थी, ये अगला गाना है इसी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में, मदन मोहन का संगीत है और राजा मेहदी अली खां की है शब्द रचना।

फिल्म संगीत में आज इतना ही। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं।

0: विशेष कार्यक्रम विकास जन कल्याण।
1: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
2: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
2: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
3: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाते हैं तो इस कन्वेंशन के बाद के इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000

0: संपत्ति एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं, और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है, और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्न एज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर के कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज़ एविज़

0: सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है। उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है। इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड
1: सब्जी लेते वक्त भाव करते हो ना, और क्लोथ्स लेते वक्त बार्गेनिंग भी, फिर मेडिसिन पे सिर्फ 10% पे सेटल क्यों? नेट मेट्स पे रोज मिलता है 24% डिस्काउंट ऑन मेडिसिन, वो भी जीरो प्लेटफॉर्म चार्जेस और हैंडलिंग फी के साथ। तो फिर समझदारी दिखाओ, नेट मेट्स पे आओ।
0: तो ये जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कॉन्ट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
2: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे, जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
2: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए, और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने, और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी, और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने शब्द सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है, और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे, और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके

0: अपने ग्रंथ लिख रहे थे, हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी, और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा, और न केवल भारत के प्रति अपितु तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोलू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया, जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर का की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश

0: को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है, और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है, और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर।
2: सोचो, बाइक चलाते हुए अगर एक छोटा सा एक्सीडेंट या ब्रेकडाउन हो जाए, क्लेम प्रोसेस, पेपर वर्क, इसलिए दीजिए अपने बाइक को स्मार्ट प्रोटेक्शन। ICICI लोम्बार्ड टू व्हीलर इंश्योरेंस ऑन आइल टेक केयर, ताकि आपकी हर राइड रहे टेंशन फ्री। और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए एडॉन्स जैसे जीरो डेप्रिसिएशन और रोड साइड असिस्टेंस, इंश्योरेंस को बनाए एफर्टलेस। डाउनलोड आइल टेक केयर ऐप नाउ।
0: वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिये, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसे जब भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण

0: कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की नीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूंगा। ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग

0: गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
3: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
2: Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the centre. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving fair price, West Bengal government is taking the lands from common people and handing it over to the BCF. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
4: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
5: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India first supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka in November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced, and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army, and disaster response team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance, and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation, Janith Ruwan Kodithuwakku, stated that India had shown immense warmth and solidarity.

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का सुनहरी यादें में। श्रोताओं, फिल्मी गीत मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे बीते हुए समय, भावनाओं और इतिहास का एक अनमोल दस्तावेज है। पुराने गीत सुकून और शांति देने वाले होते हैं। इनमें एक ठहराव होता है जो आज के भाग दौड़ भरे जिंदगी में भी हमें एक मानसिक शांति देते हैं। दिल को छू लेने वाले ये सदाबहार और रोमांटिक गाने जो पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं। और श्रोताओं, लता जी की गायकी की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी खासियत शब्दों के साथ भाव का समावेश था इनके गीतों में। उनके गाए गीतों की गहराई से हम सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं। सुनते हैं कुछ खूबसूरत नगमे पुरानी फिल्मों से।

संग किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आँखों में बसा के आँखें मीट लूं।

लता मंगेशकर की आवाज में जुगनू फिल्म का ये गाना था, एसडी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के थे बोल। और अब अगला नगमा है आंखें फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना।

अगला गीत है आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम राजा जानी।

खानदान फिल्म का ये नगमा था लता मंगेशकर की आवाज़ में, खयाम का संगीत और नक्श लयालपुरी के थे बोल। आप सुन रहे हैं सुनहरी यादें। अगला गीत है जूली फिल्म से, राजेश रोशन का संगीत है, आनंद बख्शी की शब्द रचना, आवाज़ लता मंगेशकर की।

और ये है सुनहरी यादें कार्यक्रम का आखिरी नगमा, कोहरा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़, हिमंता कुमार का संगीत है और शब्द रचना है कैफी आजमी की।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं चिर सत्य ठाकुर। आप सुनेंगे सितार पर राग बागेश्री में आलाप और जोड़ के पश्चात दो गतें। विलंबित गत और द्रुत गत दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं श्रीजीत चटर्जी।

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सितार पर राग बागेश्वरी। कलाकार थे चिर सत्य ठाकुर। तबले पर संगत कर रहे थे सृजीत चटर्जी। शास्त्रीय संगीत इसी के साथ संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले

0: विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education